90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जयंती है, साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जयंती है। रेडियो आजाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। और आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग, जो केंद्रित है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पर। 8:30 बजे सुनो कहानी, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है मंदिर। सुबह 9 बजे कला कल्लोलिनी, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। 9:30 बजे सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसका पुनः प्रसारण किया जा रहा है। विषय है विश्व खेल पत्रकार दिवस। दस बजे सुनिएगा रेडियो रिपोर्ट, आज सुनिएगा गायन पर्व के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट। 10:30 बजे याद करो कुर्बानी, जो केंद्रित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। 11 बजे शब्दों के शिल्पकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है विष्णु प्रभाकर पर। और 11:30 बजे सुनना न भूलेगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ। एक मनोचिकित्सक प्रेम और घृणा पर शोध कर रहा था। उसने एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों से कहा कि वे आपस में ऐसे विद्यार्थियों का नाम लिखें जिनसे वो घृणा करते हैं। 30 सेकंड का समय दिया गया। कुछ विद्यार्थियों ने 4-5 नाम लिखे, एक ने अधिकतम 13 नाम लिखे, लेकिन एक युवक था जो किसी का नाम नहीं लिख सका। और जो तथ्य सामने आया वो बहुत आश्चर्यजनक था। जिन छात्रों को अधिकतम लोगों से घृणा थी, वो स्वयं भी अधिकतम छात्रों द्वारा घृणा के पात्र माने गए थे। और सबसे अद्भुत और रहस्य की बात तो ये थी कि जो युवक किसी का नाम नहीं लिख सका था, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। सच है, हमारी भावनाएं हमारे अंतर मन का प्रतिबिंब हैं। किसी व्यक्ति से अगर हम घृणा करते हैं तो वो घृणा उस व्यक्ति के भीतर नहीं है, वो घृणा हमारे भीतर है। जीवन में जो भी मनुष्य हमें मिलते हैं वो एक दर्पण की तरह होते हैं। इस दर्पण में हम अपने वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिंब देख सकते हैं।
2: जीवन सौरभ।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अस्य वामस्य पालितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम। इन सुंदर एवं जगपालक होता सूर्यदेव को हमने सात पुत्रों सप्तवर्णी किरणों सहित देखा है। इन सूर्यदेव के मध्यम भाई सर्वव्यापी वायुदेव हैं। उनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ वाले अग्निदेव हैं। सप्त युञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः। एक चक्र वाले रथ से ये सातों जुड़े हैं। सात नामों वाला एक अश्व इस चक्र को चलाता है। तीन द्युलोक अंतरिक्ष एवं पृथ्वी नाभियों अथवा धुरियों वाला यह कालचक्र सतत गतिशील अविनाशी और शिथिलता रहित है। इसी चक्र के अंदर समस्त लोक विद्यमान है। इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्रम सप्त वहन्त्यश्वाः सप्त स्वसारो अभिसं नवन्ते यत्र गवाम निहिता सप्त नाम। इस सूर्य देव के पोषण चक्र से जुड़े यह जो सात अयन ऋतु मास पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त हैं, यही सात चक्र अथवा सात अश्वों के रूप में इस रथ को चलाते हैं। जहां वाणी में सात नाम सात स्वर छिपे हैं, ऐसी सात बहनें स्तुतियां इसकी वंदना करती हैं। को ददर्श प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुप गात प्रष्टुमेतत्। जो अस्थि रहित होते हुए भी अस्थि युक्त का पालन पोषण करते हैं, उन स्वयंभू को किसने देखा। भूमि में प्राण रक्त एवं आत्मा कहां से आए, इस संबंध में पूछने के लिए कौन किसके पास जाता है। पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्देवाना मेना निहिता पदानि वत्से बश्कयेधि सप्त तन्तून्वि तत्निरे कवय कोतवा उ। अपरिपक्व बुद्धि वाले हम देवताओं के इन गुप्त पदों के संबंध में जानने के लिए मनोयोग पूर्वक पूछते हैं। सुंदर युवा गोवत्स के लिए ये विज्ञ सप्त तंतुओं को कैसे फैलाते हैं। अचिकित्वांचि कितुषश्चिदत्र कवीन पृच्छामि विद्मने न विद्वान् वि यस्तस्तंभ षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। जिसके द्वारा इन छहों लोकों को स्थिर किया गया है वह अजन्मा प्रजापति रूपी तत्व कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हम तत्ववेत्ताओं से निश्चित स्वरूप की जानकारी के लिए यह पूछते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, शिव आदि देव हैं, वे महादेव हैं। सभी देवों में सर्वोच्च और महानतम में शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। न दिन न रात न सतत न असत, तब केवल निर्विकार शिव रुद्र ही थे। शिव पुराण में भी इसी तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

प्रार्थना कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करने के लिए होना चाहिए।

हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले।

सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं।

श्रोताओं, घर से जब भी बाहर जाएं, तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में ये नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास दो घड़ी खड़े रहकर प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है ऐसा बोल कर ही निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है।

कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
2: गली में मार फेरे पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन, अनुशीलन और विश्लेषण के लिए वहां की पुरा संपदा और प्राचीन पौराणिक ग्रंथ व साहित्य आधारभूत सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसमें साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को उसके ऐतिहासिक संदर्भों और मूल रूप में जांच परख कर सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की शुद्धता उसकी भाषा पर गंभीर विवेचन होता है कि नकल के दौरान कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। प्राच्य विद्या के ऐसे ही एक गंभीर अध्येता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो प्राच्य विद्या के एक युगांतरकारी विद्वान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी चिंतकों से अप्रभावित रहकर उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा के बल पर स्थापनाएं प्रस्तुत की। 6 जुलाई सन 1837 को पश्चिमी भारत के रत्नागिरी जिले में स्थित मालवण में उनका जन्म हुआ। अरब सागर की लहरों से किलोलित ये समुद्री तट अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके पिता मालवण के तहसीलदार के यहाँ मुंशी थे। उन दिनों मालवण में अधिक स्कूल नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनकी आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। सौभाग्य से उनके पिता गोपाल भंडारकर का तबादला रत्नागिरी के राजस्व विभाग में हो गया। रत्नागिरी में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1853 में रामकृष्ण भंडारकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। यहां उन्हें दादा भाई नौरोजी जैसे प्रतिभावान शिक्षक मिले, जिन्होंने उनके सोच और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को जागृत और पोषित किया। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि होते हुए भी संस्कृत और पाली भाषा में विशेष अध्ययन किया। इसके कारण उन्हें भारत के गौरवमयी अतीत के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। सन 1862 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पहले बैच के छात्र के रूप में पास की, फिर वहीं से एमए की परीक्षा भी पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम आए थे। कुछ समय तक सिंध के हैदराबाद और रत्नागिरी के राजकीय विद्यालय में वो हेडमास्टर रहे। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में व्याख्याता के पद को सुशोभित किया। आगे चलकर पूना के डेकन कॉलेज में संस्कृत के पहले भारतीय प्रोफेसर बने। अब पूना ही उनके अध्ययन और गवेषणा का केंद्र बना, जहां उन्होंने अपने सपने साकार किए और इतिहास में शोध की उच्चतम परंपराएं स्थापित कीं।

15 जनवरी सन 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसके माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार पर विधिवत अध्ययन प्रारंभ किए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। इन संस्थाओं ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संग्रहण और संरक्षण का काम शुरू किया। 1821 को पूना में डेक्कन कॉलेज की शुरुआत हुई। इस संस्था को पेशवा द्वारा प्रदत्त धनराशि से संचालित किया जाता था। मूलतः संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए स्थापित इस संस्था में बाद में अंग्रेजी, पुरातत्व, समाज विज्ञान और इंडोलॉजी विषय जोड़े गए। डेक्कन कॉलेज में रामकृष्ण भंडारकर लगभग 13 वर्ष तक प्रोफेसर रहे। यहीं से उन्होंने भारतीय पौराणिक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया। पुरातत्व विषय में उन दिनों विद्वानों को अधिक रुचि नहीं थी। ऐसे में रामकृष्ण ने पाली, मागधी, प्राकृत आदि भाषाओं का विधिवत अध्ययन करके उनके प्राचीन ग्रंथों की खोज और अनुसंधान का काम शुरू किया। प्राकृत भाषाओं की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर शिलालेख, ताम्रपत्र और ताड़पत्रों पर उपलब्ध साहित्य पर काम आरंभ किया। वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े यूरोपीय विद्वान साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत की ज्ञान संपदा का आकलन कर रहे थे। इसके उलट रामकृष्ण भंडारकर ने संस्कृत और पाली भाषा के ज्ञान के सहारे 4000 वर्षों के भारत के गौरव साहित्य के हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित करता था, जो आगे गवेषणा के काम में आते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संकलन का महत् कार्य रामकृष्ण भंडारकर को सौंपा। उन्होंने गहन शोध और परिश्रम से 5 विशाल खंडों में ये कार्य पूरा किया। ये ग्रंथ पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं। 1883 में रामकृष्ण भंडारकर को वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके अध्ययन की गंभीरता और विश्लेषण से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें CIE के सम्मान से विभूषित किया गया। ये फ्रेंच सम्मान विश्वव्यापी सहकारिता तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और योगदान के लिए दिया जाता है। लंदन में आयोजित ओरिएंटल स्टडीज के सम्मेलन में भी पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अध्ययन और स्थापनाओं की बहुत प्रशंसा की। एक शिक्षाविद के रूप में सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य के रूप में नामित किया। सन 1911 में भी उन्हें सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया।

रामकृष्ण भंडारकर एक पुरातत्ववेत्ता और शिक्षाविद के साथ साथ उच्च कोटि के चिंतक और समाज सुधारक भी थे। बंगाल के ब्रह्म समाज की तर्ज पर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के आधार रूप में धार्मिक सुधारों की वकालत की। अपने विशद अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही सुधारों का विरोध करते हैं, ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। सन 1885 में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक वामन अबजी मोडक और न्यायमूर्ति राणा डे के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने पूना में लड़कियों के लिए पहला देसी हाई स्कूल खोला। हुजूर पगा के नाम से ख्यात इस स्कूल का पाठ्यक्रम प्रगतिशील सोच पर केंद्रित था। रामकृष्ण भंडारकर कई उल्लेखनीय ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने हेतु उन्होंने 2 पाठ्य पुस्तक रची। बॉम्बे गजेटियर के लिए उनका योगदान दक्षिण भारत का इतिहास बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सन 1876 में उन्होंने भवभूति के मालती माधव पर टीका लिखी, जो बहुत सराही गई। अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तरीके से अन्वेषित दक्षिण के सातवाहन के अलावा वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का उन्होंने पुनर्लेखन भी किया। वे ऐसे स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के आलोक में हिंदू धर्म और दर्शन को परिभाषित किया। सन 1872 में आरंभ हुई भारतीय पुरावेत्ता शोध पत्रिका में उन्होंने कई निबंध लिखे, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के लिए किया गया उनका काम भी महत्वपूर्ण है। वे इसके आरंभिक सदस्य थे। अपनी बौद्धिक यात्राओं में वे कई बार पश्चिम के विद्वानों से सैद्धांतिक बहस में उलझे और अपनी मान्यताओं को सही ठहराया। महाभारत और पतंजलि का काल निर्धारण भी उन्होंने ही किया। महाभारत के 1.5 लाख शब्दों का विवेचन और व्याख्या भी उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इतिहासकार के भीतर वकील जैसी जिरह करने की प्रवृत्ति का विरोध किया और न्यायाधीश जैसी निष्पक्ष कठोरता पर बल दिया। उनका मानना था कि इतिहास का वर्णन उसी रूप में होना चाहिए जैसा वो वस्तुतः था। भारतीय प्राच्य साहित्य के इस महान विद्वान का 24 अगस्त सन 1925 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में पुणे में स्थापित भंडारकर शोध संस्थान आज भी ज्ञान का पथ आलोकित कर रहा है। प्राच्य विद्या के ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सत्ता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी।
4: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूँ आपके साथ भारती। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंदिर आज हम सुनेंगे।

मातृ प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है वो सब मिथ्या है, निसार है। मातृ प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माँ का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें नहीं खोली थी। कभी वो उसे गोद में उठा लेती तो कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये कोई नहीं बता रहा था। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ होती है। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे नहीं ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का पारवार नहीं था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ था बस यही बालक था। हाय रे नियति, क्या ईश्वर ने इसे भी इसकी गोद से छीन लेना चाहा है? ये कल्पना करते ही माँ की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। इस बालक को वो क्षण भर के लिए भी अकेले न छोड़ती। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद नहीं होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सारी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठे रहना, अम्मा मैं घास बेच आऊंगा। तब माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सारा गुड़ लाना चाहता था। बस वो ही भोली भाली बातें याद कर करके माता के हृदय शूल हो रहे थे। जो भी बालक को देखता यही कहता, किसी की ढीठ नजर लग गई है। पर किसकी ढीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई बैरी हो सकता है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पे गिर जाती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से नहीं पिघल जाता? पर नाम तो कोई नहीं बताता ना, अब किससे पूछे वो? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनोती करे? इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है? उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर

हे भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो प्रभु। और उसी समय जियावन की आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा। माँ ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पिया और धीरे से कहा, अम्मा, रात है कि दिन है? सुखिया बोली, बेटा, अभी तो रात है, तेरा जी कैसा है? जियावन ने कहा, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। सुखिया बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है, कुछ लाऊं? जियावन ने कहा, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। गुड़ मत खा भैया, अवगुण करेगा, कह तो खिचड़ी बना दूं? सुखिया ने बड़े प्यार से कहा। जियावन ने कहा, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दे, तेरे पैर पड़ूं। माता इस आग्रह को नहीं टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी छोड़कर वो किवाड़ खोलने गई। जियावन ने गुड़ की दो पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, दो एक बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमचोलियों के साथ उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा, बच्चा अच्छा हो गया है, दो एक दिन में जब पैसे हाथ आ जाएंगे तो एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारी, नहाने धोने, खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तो सुखिया घबरा गई। तुरंत मन में शंका हुई, पूजा में विलंब करने से ही लगता है मेरा बालक मुरझा गया। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लिटा कर वो पूजा की तैयारी करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए, तुलसी दल द्वार पर था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान चाहिए था, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए था ना? सारा गांव छान आए, किसी ने पैसे नहीं दिए, उधार तो दिए ही नहीं। अब वो हताश हो गई, हाय रे अदिन, कोई चार आने देने को तैयार नहीं। आखिरकार उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ पड़ी बनिए की दुकान पर। कड़े गिरवी रख दिए, बतासे लिए और दौड़ी दौड़ी घर आ गई। पूजा का सामान तैयार हो गया था। बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में अभी भी आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने आवाज लगाई, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदारों के आसामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे, मंदिर में ही भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तकारी काली पड़ रही थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी नहीं डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो उसमें उनका कोई दोष नहीं था। पुजारी जी बोले, तो क्या भीतर चली जाएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर परभ्रष्ट मत कर। तब एक भक्त जन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी जी ने कहा, कैसी बेसमझी की बात कर रही है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है तू? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर नहीं मिला था और वो आश्चर्य से बोली, सरकार, वो तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जात हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी ने जोर से कहा, अरे तू चर्मकार है। तो सुखिया ने भी कहा, तो क्या भगवान ने चर्मकारों को नहीं सिरजा है? चर्मकारों का भगवान कोई और है क्या? इस बच्चे की मनौती है सरकार, मुझे करनी है। इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपट कर बोले, मार के भगा दो इसको, भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो इसकी थाली वाली,
संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चर्मकार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी, रसातल में चली जाएगी। दूसरे भक्त ने भी ईश्वर में स्वर मिला लिया। अब बेचारे ठाकुर जी को भी चर्मकारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब तो प्रलय होने में कोई कसर नहीं।

ठंड पड़ रही थी। सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जा रहा था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि दोनों पांव भूमि में पड़ गए हों, गड़ गए हों। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर जाए। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का इनसे कोई नाता नहीं, ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर यह भय होता कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली फेंक दी तो क्या करूंगी, दिल में ऐठ कर रह जाती। अचानक उसे एक बात सूझी। वो वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के बाद भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठकर हूं हूं करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियां भी कर रहे थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्तों ने राह ले ली, पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुद्धा वर्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई, देखा सुखिया खड़ी है। चिढ़कर बोल दिए, क्यों तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज मैं अभागिन, यही बालक मेरे जीवन का आलम है, दया करो प्रभु, 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज। और ये कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु थे, पर चर्मकार को ठाकुर जी के सामने जाने का घोर वातक वो कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें, आखिरकार उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश न कर दें। तो उन्होंने बोला, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, मैं तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब भला होगा। सुखिया ने कहा, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने नहीं दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया हूँ, उधार लेकर पूजा की सामग्री जुटाई है, मैंने कल सपना देखा था, ठाकुर जी की पूजा कर ले तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, दौड़ी दौड़ी आई हूँ प्रभु, मेरे पास 1 रुपया है, वो मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों में गिर जाने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में अभी भी बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना नहीं देखते, सुना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन में भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पे गिरे कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपए में दूंगा, उसे तू ना अपने बच्चे के गले में बांध देना, बस देखना फिर कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया अपनी बात पर अड़ी रही, मतलब ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? पुजारी ने कहा, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है, जो बात है कभी नहीं हुई, वो आज मैं कर दूं और गांव पर कोई आफत विपत हो गई तो क्या करूंगा, तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में बच्चे का क्लेश कट जाएगा, किसी की ढीठ पड़ गई है भी तो चोचला सा, मालूम होता है छत्री बंस है। सुखिया ने कहा, जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नहीं है, क्या करूं? तब पुजारी ने कहा, बड़ा होनहार बालक है तेरा, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा, यहाँ तो बहुत खेलने आता था, बस 1-2 दिन से नहीं देखा था, तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना, अब तो इस बेला में नवीन वस्त्र कहाँ खोजने जाएगी। सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरवी रखे थे, 1 पहले ही भन चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया। जैसे जैसे रात गुजरती उसका ज्वर बढ़ता जाता, यहाँ तक कि 3 बजते-बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। वो घबरा उठी, हाय मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई, अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों में गिर जाती तो कोई मेरा क्या कर लेता,
यही ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा तो मनोरथ पूरा होता ना। अगर मैं ठाकुर जी को अपने आंसुओं में भिगो देती तो बच्चे को जिला लेती। वो तो दयामय भगवान है ना, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पे दया नहीं करेंगे? ये सोचकर सुखिया का मन अधीर हो गया। उसने सोचा अभी भी विलंब नहीं हुआ है, वो जरूर जाएगी और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोएगी। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढाक कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कप गया, शीत से पांव शिथिल हो रहे थे, चारों ओर अंधकार था, रास्ता 2 फरलांग से कम नहीं था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखर था और कुछ दूर बांस की कोठियां, बाईं ओर हरे भरे खेत थे, चारों ओर सन सन हो रही थी, अंधकार साए साए हो रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद करे सो रहे थे। सुखिया चबूतरे के नीचे से ईंटा उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। 2 ही 3 चोट में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाकर बाहर निकल आया और चोर चोर करके शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लेकर निकल कर आ गए। कहाँ है, कहाँ है चोर, कहाँ है? पुजारी जी ने बोला, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी थी। सहसा देखा कि सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर गई भी नहीं, हल्ला मचाए पड़े हो। पुजारी ने कहा, अरे बाप रे, सब अनर्थ हो गया, सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई है। कई आदमी झल्लाए लपके सुखिया पर लात घूसों की मार पड़ी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़ी थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वो रोया नहीं, न बोला और न सांस ली। सुखिया भी गिर गई, संभलकर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वो खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। क्रोध की ज्वाला से वो तमतमा उठी, आंखों से अंगारे बरसने लगे और दोनों मुट्ठियां बंध गईं। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चों के प्राण लेकर दूर खड़े हो, मुझे भी क्यों नहीं उसी तरह मार डालते? मेरे छून लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, पारस लोहा नहीं हो जाता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे, मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। लो, कभी ठाकुर जी को छूने नहीं जाऊंगी, ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। किसी ने चू तक नहीं की, कोई मिनमिनाया तक नहीं, पाषाण मूर्तियों की भांति सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा और मुंह से निकला, हाय रे मेरे लाल, और मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। बच्चे के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। सच, माता तू धन्य है, तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा और तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंदिर। और अब दीजिए मुझे अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर।
2: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। मैं हूँ आपका रेडियो मित्र विजयकांत नायक।
3: और मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की।

0: कला कल्लोलिनी में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक साज का ही पर्याय बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने एक वाद्य को शादियों के मंडप से निकालकर शास्त्रीयता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: सुना आपने श्रोताओं, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये बनारस की सुबह की पहली अंगड़ाई है। ये उस शख्स की फूंक है जिसने पत्थर के बुतों में भी जान डाल दी। आज हम किसी इंसान की नहीं, जैसे एक इबादत की बात कर रहे हैं। आज जिक्र है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का।
0: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उन्होंने एक ऐसे वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया जिसे कभी केवल मांगलिक कार्यों या शादियों तक सीमित समझा जाता था। शहनाई, जो कभी महलों की द्योड़ी पर बजने वाला एक मामूली सा साज हुआ करता था, उस्ताद की जादुई फूंक से वह शास्त्रीय संगीत की रानी बन गया।
1: जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान महज एक संगीतकार नहीं थे, वे भारत की उस मिली जुली संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे, जहां मजहब की दीवारें संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले शहनाई सिर्फ शादियों में या महलों के गलियारों में ही बजती थी, लेकिन इस जादूगर ने उसे महलों की ड्योढ़ी से उठाकर सात समंदर पार ओपेरा हाउस तक पहुंचा दिया।
0: तो चलिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर सुरों की स्याही बिखरी है। बात करते हैं उस फकीर की जिसकी फूंक में खुदा का नूर था, एक ऐसा कलाकार जिसने शहनाई को शादियों के शोर से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल की इबादत बना दिया।
1: आज हम सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं कर रहे, आज हम भारत की उस साझी तहजीब की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जिसने नमाज भी पढ़ी और माँ सरस्वती की आराधना भी की।
0: श्रोताओं, अक्सर लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बनारस का समझते हैं, हालांकि बनारस में उनकी रूह जैसे बस्ती थी, पर उनकी जड़ें बिहार के डुमराव की मिट्टी में हैं। 21 मार्च 1916 के दिन पैगंबर बख्श खान के घर खुशियां आईं। जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का।
1: हाँ, और नाम का किस्सा तो इतना मशहूर है कि आज भी लोग उसे चाव से सुनते हैं। उनका नाम तो कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उस मासूम को देखा तो उनके कानों में जैसे कुदरत ने कुछ कहा। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह,
0: और बस वो लफ्ज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। श्रोताओं, मानती भी है और पूछती भी है। उनके पूर्वज भोजपुर की रियासत के दरबारी संगीतकार थे, यानी शहनाई उनके पालने में ही रख दी गई थी। संगीत उनके लिए कोई शौक नहीं बल्कि विरासत था। उनकी माँ मिठन बाई ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनके पिता पैगंबर बख्श खान और दादा रसूल बख्श खान दोनों ही डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी संगीतकार थे, तो उनके दादा और पिता ने उनका परिचय संगीत के स्वरों से कराया और बिस्मिल्लाह हुआ जैसे एक महानता के सफर का।
1: लेकिन वो विरासत, वो तालीम निखरी बनारस के घाटों में और मंदिरों में, और जहां वो महज 6 साल की उम्र में अपने मामा के पास चले आए। उनके मामा थे अली बख्श विलायती, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह को उस्ताद बिस्मिल्लाह बनाया। उनकी तालीम महज स्वरों की पहचान नहीं थी, एक तपस्या थी। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश, माँ उन्हें गंगा किनारे बालाजी मंदिर के पास ले जाकर बैठा देती। वहां घंटों तक सा का रियाज होता, यानी घंटों तक सिर्फ एक ही सुर का अभ्यास।
0: जी हाँ, आज भी संगीत में यही तो कहते हैं उच्च कोटि के गुरु, एक सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं। और फिर वो बंदिश भी तो शास्त्रीय संगीत में आज भी बहुत गाई जाती है, साधे प्रथम सुर। उनके मामा का कहना था सुर को गले से नहीं रूह से निकालो। मामा का सख्त निर्देश था, बेटा जब तक तुम्हारी शहनाई से निकलने वाला सुर पत्थर को ना पिघला दे तब तक रियाज मत छोड़ना। श्रोताओं, वो अक्सर कहते थे कि रियाज के दौरान उन्हें बालाजी मंदिर में एक अजीब सी खुशबू आती थी, उन्हें महसूस होता था कि साक्षात भगवान उनके सुरों को सुन रहे हैं। इसी सादगी और यकीन ने उन्हें एक कलाकार से उठाकर एक सूफी बना दिया। वो मंदिर की शांति और गंगा की लहरों के बीच बस संगीत के व्याकरण को नहीं, संगीत की रूह को आत्मसात कर रहे थे।
1: लेकिन श्रोताओं, वो सिर्फ एक गंभीर शिष्य नहीं थे, एक चंचल बच्चे भी थे। डुमराव के बिहारी जी मंदिर में वो चेता गाते थे, और पता है इनाम क्या मिलता था? 1.25 किलो का लड्डू। वो अक्सर फक्र से कहा करते थे कि उस 1.25 किलो के लड्डू की मिठास के आगे उन्हें दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड फीके लगते हैं। और कई बार तो वो सोन नदी के किनारे जाकर कानों में कंकड़ डाल लेते थे ताकि बाहर का शोर बंद हो जाए और सिर्फ अंदर की धुन सुनाई दे। वाकई क्या कमाल का इश्क था खान साहब को संगीत से।
0: 1937 में कोलकाता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शहनाई बजाई तो संगीत जगत के दिग्गज दंग रह गए। उससे पहले शहनाई को शास्त्रीय संगीत के योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन बिस्मिल्ला खान ने अपनी कठिन साधना से साबित कर दिया कि शहनाई में भी वे सभी बारीकियां और जटिलताएं पैदा की जा सकती हैं जो सितार या सरोद में होती हैं। उन्होंने राग रागनियों को शहनाई पर उतारा और उसे एक नया गौरव प्रदान किया।
1: आइए अब हम उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के जीवन के उन गहरे पहलुओं को विस्तार देते हैं जो उन्हें एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक युग पुरुष बनाते हैं। यहां जानते हैं उनके रागों की विशेषता, उनके प्रमुख शिष्यों और उनके जीवन के अनछुए बनारसी रंगों को। खान साहब की शहनाई में जो बात सबसे अलग थी वह थी उनकी मीड़, एक सुर से दूसरे सुर तक बिना टूटे पहुंचना और गमक। शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक कठोर वाद्य माना जाता था, लेकिन खान साहब ने उसे मानव कंठ जैसी कोमलता दी।
0: वे हर राग में निपुण थे, लेकिन राग भैरवी उनका प्राण था। कहा जाता है कि जब वे भैरवी बजाते थे तो सुनने वालों की आंखों से आंसू छलक आते थे। इसके अलावा राग बागेश्वरी, राग केदार, राग यमन और राग दरबारी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
1: खान साहब ने केवल शुद्ध शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि बनारस की लोक गायकी, ठुमरी, कजरी और चेता को भी शहनाई पर उतारा। उनके द्वारा बजाई गई चेता सुनकर ऐसा लगता था जैसे बनारस के किसी घाट पर साक्षात वसंत उतर आया हो। इसके साथ ही खान साहब को सर्कुलर ब्रीदिंग में महारत हासिल थी।
0: ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वे नाक से सांस लेते थे और मुंह से शहनाई में फूंक मारते थे। इससे संगीत का प्रवाह कभी टूटता नहीं था। वे बिना रुके कई मिनटों तक एक ही तान खींच सकते थे, जो फेफड़ों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण था।
1: जी हाँ, तभी तो वो रच पाए इतिहास, आजाद भारत की पहली आवाज बनने का। दोस्तों, इतिहास का वो पन्ना कोई कैसे भूल सकता है जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। पंडित नेहरू ने खास तौर पर खान साहब को दिल्ली बुलाया।
0: बिस्मिल्ला खान साहब द्वारा लाल किले पर शहनाई वादन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी। तब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर आजादी का स्वागत किया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये इच्छा जताई थी कि बिस्मिल्ला खान इस शुभ अवसर पर अपनी शहनाई बजाएं।
1: और इसके लिए बिस्मिल्ला खान साहब को विशेष रूप से मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। बिस्मिल्ला खान ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह घटना न केवल उनके संगीत करियर के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए भी एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने शहनाई को राष्ट्र की आवाज बना दिया।
0: बिल्कुल, आजाद भारत की सुबह का स्वागत किसी भाषण से नहीं बल्कि खान साहब की शहनाई से हुआ था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी छेड़ा था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना कि भारत की आजादी की गूंज शहनाई में बसी है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई दूरदर्शन पर गूंजती रहती है।
1: श्रोताओं, जब उनकी शोहरत बढ़ी तो फिल्मों के दरवाजे भी खुले। 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। निर्देशक विजय भट्ट तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने फिल्म का पूरा प्लॉट ही शहनाई के इर्द गिर्द बुना। उनका बजाया गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया आज भी लोगों को रुला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी खान साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की, जिनमें से एक दक्षिण भारत की थी, कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे फिल्मों की बनावटी दुनिया पसंद नहीं, वहां संगीत बिकता है और यहां संगीत जिया जाता है। उन्हें स्टूडियो की बंद दीवारों से ज्यादा गंगा का किनारा और खुला आसमान पसंद था। उनके लिए संगीत व्यापार नहीं बल्कि खुदा की इबादत थी। उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए सिर्फ अपनी सादगी और सुकून के लिए। तभी तो वो शहनाई के शहंशाह कहलाए।
0: उनकी सादगी का एक मशहूर किस्सा है कि वे अक्सर फटी हुई लुंगी पहन लेते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा आप इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पगलो मालिक से सुर मांगो, कपड़े नहीं, ये लुंगी तो रफू हो जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो उसे कोई रफू नहीं कर पाएगा। यह उनकी महानता का परिचायक था।
1: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उनके बनारसी मिजाज की। उस्ताद का व्यक्तित्व पूरी तरह से बनारसी था। उनके जीवन में दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था।
0: उन्हें बनारस की कचौरी, जलेबी और खास तौर पर मलाई और बनारस की एक खास मिठाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर अपने घर के पास वाली दुकान से खुद नाश्ता मंगाते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। वे सुबह गंगा में स्नान करते थे, सरस्वती मंदिर में माथा टेकते थे और फिर मस्जिद जाकर नमाज अदा करते थे। वे कहते थे, सुर ही मेरा अल्लाह है और सुर ही मेरी सरस्वती।
1: और श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा अवस्था में खान साहब को कुश्ती का भी बहुत शौक था। वे पहलवानों का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अखाड़ों में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। खान साहब शुरू में विदेश जाने से बहुत डरते थे, उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए कहा तो उन्होंने कई बहाने बनाए। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे और मेरी पूरी टीम को सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने शर्त मान ली और जब वो एडिनबर्ग पहुंचे तो वहां के अखबारों ने लिखा, ये संगीत नहीं खुदा की आवाज है।
0: और फिर इसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो 1967, कांस आर्ट फेस्टिवल 1969 और ओसाका ट्रेड फेयर 1970 जैसे बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में तो आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन इतनी शोहरत और धन मिलने के बावजूद उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। वे ताउम्र बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से मकान में रहे। खान साहब शायद भारत में अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चारों शीर्ष नागरिक सम्मान प्राप्त किए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंत में 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।
1: लेकिन इतने पुरस्कारों के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो अक्सर बनारस में साइकिल रिक्शा पर घूमते हुए मिल जाते थे। एक बार एक विदेशी फैन ने उनसे कहा, खान साहब आप अमेरिका चलिए, मैं आपके लिए वहां पूरा बनारस बना दूंगा। और खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब सब तो ले आओगे पर मेरी गंगा मैया को वहां कैसे लाओगे? उनके लिए गंगा का पानी और बनारस की मिट्टी किसी स्वर्ग से बढ़कर थी।
0: अक्सर कहा जाता है श्रोताओं की एक कलाकार की असली पहचान वो नहीं जो वो खुद कहे, बल्कि वो है जो उसके समकालीन दिग्गज उसके बारे में कहें। और खान साहब के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले थे। सितार सरताज पंडित रविशंकर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शहनाई को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक लाने का पूरा श्रेय सिर्फ बिस्मिल्ला खान को जाता है। उन्होंने इस साज को एक नई इज्जत बख्शी है।
1: और सिर्फ संगीतकार ही नहीं, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी तो उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खान साहब की शहनाई में जो दर्द और मिठास है वो किसी इंसान की फूंक नहीं बल्कि खुदा का नूर लगता है। और आपको पता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं, खान साहब का संगीत व्याकरण नहीं बल्कि कविता है, वे सुरों से चित्र बना देते हैं।
0: जी हाँ, पश्चिमी दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन उनकी मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि वे अपने गिटार से वैसी ही कशिश पैदा करने की कोशिश करते हैं जैसी खान साहब की शहनाई में होती थी। यही उनकी महानता थी, चाहे वो पंडित नेहरू हों या बनारस की गलियों का कोई आम रिक्शे वाला। खान साहब सबके लिए एक समान थे। वे अक्सर कहते थे, सुर सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, लेकिन साथ ही वे माँ सरस्वती के परम भक्त भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की देवड़ी पर बैठकर शहनाई बजाना उनकी रोज की इबादत हुआ करती थी। वे कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया और सुर और ताल किसी सीमा या मजहब में नहीं बंधे होते ये भी बताया।
1: उस्ताद साहब के रिलीज संगीत एल्बम्स की अगर हम बात करें तो द मैजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान 1962, बिस्मिल्ला खान पंडित वी जी जोग के साथ 1962, राग बागेश्वरी राग सोहनी 1963, शहनाई रिसाइटल 1963, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेरियस रागास 1987 और मेघ मल्हार वॉल्यूम 1 1991 शामिल हैं।
0: इसके साथ ही उनके लोकप्रिय संग्रह द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान, प्लेटिनम वॉल्यूम 1 कजरी, द रेन राग 2016, शादी की शहनाई वॉल्यूम 1 एंड 2 1995, रूबरू वॉल्यूम 1 एंड 2 2004, इबादत रागिनी यामिनी लाइव एट द बार्बिकन सेंटर 1994। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए गए रागों में श्याम कल्याण और शंकरा बेहद शांत और आध्यात्मिक माने जाते हैं। उस्ताद के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनके घर में अक्सर 40 से 50 लोग एक साथ खाना खाया करते थे। वे एक संयुक्त परिवार के स्तंभ थे।
1: 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में इस महान संगीत साधक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बनारस में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रिय शहनाई को भी उनके साथ ही दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो आमतौर पर केवल बड़े राजनेताओं के लिए होता है। यह इस बात का प्रमाण था, वे एक संगीतकार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा थे।
0: बिस्मिल्ला खान साहब ने हमें सिखाया कि सच्ची कला बाजार में नहीं बिकती, वे साधना की कोख से जन्म लेती है। उनके शहनाई की गूंज आज भी हर भारतीय शादी की सुबह, हर मंदिर की आरती और हर मस्जिद की अजान के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। श्रोताओं, वे शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी दास्तां है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
1: शहनाई को अपनी बेगम कहने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की तान आज भी हवाओं में तैरती हुई महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने संगीत को इबादत बनाया और इबादत को संगीत। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि कला महज प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब तक गंगा की लहरें काशी के घाटों से टकराती रहेंगी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी गूंजती रहेगी।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जो आज केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाठक, आलेख संदीप शर्मा का था, वाचन स्वर विजयकांत नायक
1: और मैं डॉक्टर गौसिया।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है विश्व खेल पत्रकार दिवस पर।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आपको आज आपके बचपन की यादें ताजा जो होने वाली हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए कि आपको गली में पिट्ठू की आवाज आ रही है। लंगड़ी टांग खेलते हुए गिरने की हंसी, कंचे, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, बाप रे कितने सारे खेल हम बचपन में खेला करते थे, बिना स्क्रीन के, बिना पैसों के, सिर्फ दोस्ती और धूल मिट्टी से ये खेल खेले जाते थे। वास्तव में श्रोताओं, ये खेल सिर्फ खेल नहीं थे, हमारी पहली टीम थी, पहली हार थी, पहली जीत थी, और यहीं से हमने सीखा नियम मानना, गिरकर उठना, टीम के लिए लड़ना। और आज उन्हीं मैदानों से निकले हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे सफल खिलाड़ी। लेकिन इन सफल खिलाड़ियों को आखिर हम कब से और कैसे जानते हैं? सोचिए, जिस तरह बचपन में गली का कमेंटेटर होता था जो चिल्लाता था आउटे आउटे और हमें मानना पड़ता था, ठीक वैसे ही आज के खेल पत्रकार हैं। श्रोताओं, हर साल 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं, ताकि हम उन सभी लोगों को सलाम कर सकें जो धूप में खड़े होकर रात रात भर जागकर हमारे लिए स्कोर तैयार करते हैं, खिलाड़ियों की कहानियां हमें सुनाते हैं। बचपन के खेलों ने हमें खिलाड़ी बनाया और खेल पत्रकारों ने उन खेलों को त्योहार बना दिया। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम भी हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं कलम के एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिना बैट बॉल के भी हर मैच खेलते हैं, प्रशांत सेंगर जी। आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार आपके श्रोताओं को और बहुत सारा धन्यवाद आपको जो आपने याद किया, आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में।
2: सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है तो हम इसे कब से मना रहे हैं?
3: इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन है
2: जी,
3: जो दुनिया भर के पत्रकारों को एक मंच दिया करते हैं
2: जी।
3: उसने लगभग 3 दशक पहले 1994 में डिसाइड किया कि विश्व पत्रकार दिवस या विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। दरअसल जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए हुआ करता है
2: जी। जी,
3: बहुत लिमिटेड पाठक हुआ करते हैं। आप हर जगह देखिएगा, बट जाएगा। आप अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन उठाएं, स्पोर्ट्स की मैगजीन उठाएं, तो उसके पाठक बहुत कम संख्या में होंगे
2: जी। जी,
3: बाकी पत्र मैगजीन्स जो रहेंगी उसमें पाठक बहुत सारे होंगे
2: जी।
3: तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको 1-2 मिलेंगे किसी भी मैगजीन में, जबकि बाकी जर्नलिस्टों के लिए बहुत खुला आसमान रहा करता है। तो उनके लिए चैलेंज रहा करता है
2: जी।
3: उनको क्या सुविधाएं दी जाए, उनको क्या समझाइश दी जाए, उनके लिए कैसे मंच तैयार किए जाए, इसको लेकर इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन ने फाइनली डिसाइड किया 1994 में कि 2 जुलाई को इनके लिए ये विशेष दिन मनाया जाएगा।
2: सर, आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी के लिए आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?
3: देखिए, कोई भी दिन विशेष आपको ये तो महसूस कराता है कि ये कुछ खास चीज है, कुछ खास किस्सा है जिसको हम आज याद करेंगे
2: जी। जी,
3: बहुत सारे दिन हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं कि बताएं आप मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन याद कर लेते हैं। नहीं, उस दिन विशेष तौर पर आप सेलिब्रेट करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो खेल पत्रकारिता दिवस भी बाकी दिवस की तरह ही जताता है कि हम और ज्यादा संकल्पित हों खेल पत्रकारों के लिए, खेल पत्रकारिता के लिए, इस बड़े मंच के लिए और ज्यादा समर्पित हों। ये जताता है और उनकी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।
4: जी जी।
3: अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन बड़े आयोजन हुआ करते हैं जहाँ खेल पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है
4: जी।
3: उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है।
4: सर आप एक खेल पत्रकार हैं तो आप अपनी आंखों से देखें तो आने वाले समय में कौन से खेल को आप एक बिग स्पोर्ट्स के रूप में भविष्य में देखते हैं?
3: बहुत सारे खेल हैं जो बड़ी जगह पाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण खेल बन गया है पिछले कुछ दिनों से
4: जी,
3: वो है योग।
4: जी जी।
3: आने वाले समय में ये दुनिया भर को चकित करने वाला है। योगासन को, योग को अपनाने के लिए 200 से ज्यादा देश आ गए हैं।
4: जी जी।
3: आप सभी जानते हैं 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया।
4: जी जी।
3: बहुत साधारण सी कोशिशें थी लेकिन असाधारण परिणाम सामने आए हैं। योग को हाथों हाथ लिया गया है।
4: बिल्कुल।
3: दरअसल ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है।
4: बिल्कुल।
3: आपकी जीवन शैली को, आपके जीवन के भविष्य को बेहतर बनाता है।
4: जी जी।
3: और हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम है, ये सपना है।
4: जी।
3: बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है।
4: जी जी।
3: और बहुत सारी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं योग कवर करता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप हुई थी।
4: जी जी।
3: दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई गुजरात में। ये भारत में ही नहीं, अब बाकी देशों में भी आयोजित होने जा रहा है।
4: जी जी।
3: हॉकी,

0: पूछे तो।
1: हाँ, अंतर तो आता है, लेकिन चूंकि जरूरतें अब बहुत अलग हो गई हैं। पहले हम लोग अगर वर्ल्ड कप कवर करने की सोचते थे तो हमें पर्टिकुलर उस कंट्री में जाना होता था, लेकिन कैसे आप इतने सारे संसाधन पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए आप खर्च करेंगे, जुटाएंगे। उससे बेटर ये होगा कि अब जैसे ऑफ ट्यूब कमेंट्री शुरू हो गई है,
0: जी जी,
1: अब आप दिल्ली में बैठकर लंदन की कमेंट्री किया करते हैं, वहां की रिपोर्टिंग किया करते हैं
0: जी।
1: कोशिशें बढ़ानी पड़ती हैं, वहां से आप चीजें हासिल कीजिए, वहां के रिपोर्टर्स की मदद लीजिए, वहां मौजूद जो संवाददाता है उनकी मदद लीजिए, खिलाड़ियों की डिटेल निकालिए। अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, पर्टिकुलर उनकी साइट्स चला करती हैं। अगर आप अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप चल रहा है
0: जी जी,
1: महिला वर्ल्ड कप में देखेंगे कि किसके बीच कौन सा मैच है
0: जी,
1: कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने घर बैठे अपने स्टूडियो में बैठकर सिंपली एक लाखों का काम सैकड़ों रुपए में संपन्न कर सकते हैं
0: जी जी।
1: तो देश के संसाधनों के लिए, आपके चैनल के संसाधनों के लिए
0: जी,
1: बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशें बढ़ा दें, आप अपने स्टूडियो से बड़े मैच बड़े इवेंट कवर कर सकते हैं।
0: अच्छा सर, बचपन के खेलों को और आज का जो आईपीएल है या वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो आपकी नजर में इन दोनों खेलों में एक जैसा क्या आपको लगता है जो अभी भी एक जैसा है, बचपन के खेल में और आज के वर्ल्ड कप में?
1: आनंद बहुत छुपा है।
0: आनंद है, क्या बात है।
1: दरअसल खेल जो है ना
0: जी,
1: हम शुरू से ये मानते आए हैं कि बच्चे को बिजी रखना है तो हम बोलते थे जाओ खेलो, जाके बाहर खेलो।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को आपको खुश करना है तो चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं।
0: हाँ।
1: खेल आपके मन की खुशी से जुड़े होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, वो खूबसूरत ज्यादा होता है, तो मन को बड़ा आनंद दिया करता है। क्रिकेट बहुत जेंटलमैन गेम है
0: जी जी।
1: पांच पांच दिन के मैच हुआ करते थे, पांच पांच दिन लोग खेला करते थे, पहले एक दिन का गैप भी हुआ करता था, एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, विश्राम का दिन हुआ करता था, पांच दिन के मैच में मतलब छह दिन का मैच हुआ करता था क्रिकेट का। बहुत शिद्दत से लोग देखते थे उसको, लेकिन देखने वाले कम थे। आज एक नन्ना बच्चा और किचन में रोटी बनाने वाली गृहिणी भी बार बार पलट कर आती है कि रोहित का स्कोर कितना हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आनंद छुप गया उसमें, वो जो छुपा आनंद था दरअसल, वो आनंद उसमें पैदा हो गया है। जो जेंटलमैन गेम लिमिटेड लोगों के लिए था, फुटबॉल पहले कहाँ होता था, कहाँ जाते थे, टीवी पे कभी आता भी था तो सेमीफाइनल फाइनल मैच दिखा दिया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एटलीस्ट पहले तो टीवी भी नहीं था।
0: आज
1: टेलीविजन है, आज सैटेलाइट व्यवस्था है, आज सारी चीजें हैं, हमने उनमें रंग बहुत ज्यादा भर दिए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तो और अगर आप विज्ञापन देखेंगे तमाम सारे चीजों के, विज्ञापन भी इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि कुछ लोग मैच के साथ साथ विज्ञापन देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इतना खूबसूरत इन सारी चीजों को बना दिया गया है। मैं शिकायत करने वालों से ये चीज जरूर कहूंगा कि किसी भी चीज को कलरफुल बनाने के लिए की गई जो कोशिशें हैं ना, उनको आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से शिकायत ना करें कि यार खेल को अलग कर दिया है, रंग ज्यादा भर दिए हैं, विज्ञापन ज्यादा भर दिए हैं। खेल को वही कलरफुल बनाते हैं, और जितना खूबसूरत कलर होंगे, जितना सारा रोमांच होगा, उतना खेल में आनंद छुपा होगा।
0: बिल्कुल,
1: और आनंद तो ही चाहिए।
0: वो जो आनंद है खेलों का, वो अब आम जन में आ गया है कि जैसे आपने कहा कि गृहिणी में, छोटे बच्चे में।
1: आप विश्वास कीजिए, आप ऐसी कोई महिला देख के बताइए, एटलीस्ट आप गांव में जाएंगे, क्योंकि टीवी वहां पर भी है।
0: बिल्कुल,
1: वहां भी जाएंगे तो आपको विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में लोग पूछने लगेंगे। अगर आप दिल्ली से आए हैं तो पूछ लेंगे आपने विराट कोहली का देखा है क्या।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो चीजें अब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि जो चीज हमें गिल्ली डंडा में मजा दिलाती थी चार पांच साल की उम्र में, आज आईपीएल, वर्ल्ड कप क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के मैचेस,
0: जी जी,
1: मतलब गजब का एक जो प्रचार तंत्र है, जो टीवी है, इसने बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। नो डाउट कमेंट्री हम लोग किया करते हैं, बहुत रोमांच पैदा किया करती है, लेकिन उसमें चार चांद लगा दिए हैं आज के प्रसारण ने, आज के एफर्ट्स ने।
0: अच्छा सर, जैसे खेल पत्रकारिता का अपना एक महत्व है जो हम अपने स्तर पर समझ सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि खेल जो है वो अब आम जन तक अपना प्रसार प्रचार कर चुका है और अपना एक रोमांच होता है खेल का, आपकी दृष्टि में खेल पत्रकारिता का क्या महत्व है?
1: बहुत ज्यादा महत्व, बिल्कुल यही है कि आपने गीली मिट्टी जो है उससे एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दी
0: जी,
1: और उसको बेहतर कर दिया जाए तो आपने एक साधारण से खिलाड़ी को उसकी क्वालिटी के कारण एक बड़ा स्वरूप प्रदान कर दिया। ये पत्रकार किया करता है, लेकिन पत्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में पत्रकार को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि पत्रकार खबर खोजने के प्रयास में जो कंटेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, जो विषय होता है, उससे थोड़ी सी कहीं खिलवाड़ कर जाता है। उससे बचना चाहिए। स्पोर्ट्स लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा देखिएगा कि किसी ने मेडल जीता, सारे पत्रकार एकदम उसके पास पहुंच गए, उसे सांस लेने का मौका दिया नहीं है, एटलीस्ट बाकी जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगला जो इवेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, खेल का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं से मुश्किलों में आता है। तो पत्रकारों को ये सोचना चाहिए, खेल का अभ्यास, खेल का माहौल, खेल की जरूरत, इनको विचलित किए बगैर अपने काम को इस तरीके से करें कि खेल भी आगे बढ़े और उनका काम भी पूरा हो जाए। एक किस्सा आपको बताता हूँ। पटियाला में एक इवेंट कर रहा था मैं, नेशनल इवेंट थे एथलेटिक्स के, उसमें 400 मीटर का एक विनर था, पंजाब का ही था मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, 400 मीटर का विनर था। तो मेरे पास, चूंकि मैं टीवी के लिए कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे पास ऊपर से मैसेज आया, इसको लाइन अप कीजिए, लाइव लेते हैं इनको, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था उसने। मैं पहुंचा उसके पास तो उसको सीने में दर्द हो रहा था, तो उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही थी, डॉक्टर्स वगैरह पास में थे। तो वो बोले, सर प्लीज सर हमें 2-4 मिनट दे दीजिए। मैंने डन यार, 2-4 नहीं 20 मिनट लीजिए, हमारा प्रसारण सेकंड है, हमारा इंटरव्यू सेकंड है, जिनका स्वास्थ्य सबसे मस्ट है। तो वो मुझे दिमाग में, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फिर बोला कि प्रशांत जी आप कर नहीं रहे इंटरव्यू, डिले हो जाएगा, फिर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का स्प्रिंट आने वाला था, 200 मीटर के विनर को हम देखेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि सर हम खिलाड़ियों के लिए आए हैं, खिलाड़ी परेशान है, उसको तकलीफ है, वो अस्वस्थ है, ऐसे समय में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये हर एक की जवाबदारी बनती है, कोई खिलाड़ी कोई खेल अगर कहीं परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि उसको विचलित करना है।
0: क्या बात है सर, बहुत अच्छा किस्सा आपने हम सबके साथ साझा किया है। कहीं ना कहीं एक इंसानियत का भी स्वरूप दिखाता है हमें कि खेल के साथ में मानवीयता जो है वो भी साथ साथ चलती है, और पत्रकारिता के महत्व को, पत्रकार के व्यक्तित्व को ये और ज्यादा उभारती है। सर भारत की बात करें तो भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कौन सा संगठन करता है?
1: राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर प्रदेश में, हर शहर में पत्रकारों का अपना एसोसिएशन है। लेकिन इसकी जरूरत अब और बढ़ती दिखाई देती है। मुझे लगता है खेल पत्रकारों के लिए थोड़े और प्रयास होने चाहिए।
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकार होने के नाते क्या कुछ चुनौतियां होती हैं आपके लिए? खेल पत्रकारिता सिर्फ ग्लैमर है या ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है?
1: हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जितने शक्कर डालेंगे उतनी मिठास मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जितनी मेहनत करेंगे उतनी बेहतर रिपोर्टिंग होगी, उतना बेहतर आपका काम होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, खेल पत्रकार की जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आप उस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहां पर बहुत मेहनत होती है। एक सिंपल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है, वहाँ एक कलाकार आएगा, अपना परफॉर्मेंस देकर चला जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स आपको फ्री मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: बहुत सारे लोग और भी जानकारी देने वाले मिलेंगे। पर आप एक होते हुए खेल को, खिलाड़ी को बगैर डिस्टर्ब किए हुए वहां से बेहतर मटेरियल निकाल लें, वहां की सारी जानकारियां ले लें, पर्टिकुलर उस डे विशेष में क्या हो रहा है। जैसे अभी इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी भुवनेश्वर में, डेली की रिपोर्टिंग, और वहां 5 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का 2003 का रिकॉर्ड टूटा है, तमाम सारे ऐसे रिकॉर्ड, तो वो सारी जानकारी इकट्ठी करना बगैर खिलाड़ियों को परेशान किए हुए, बगैर इवेंट को विचलित किए हुए आपको करनी है। ग्लैमर तो इतना है कि आप जब, सीधी सी बात है, अगर आप स्वयं इंटरव्यू अगर विराट का कर रहे हैं तो विराट का इंटरव्यू करना आपके लिए गर्व की बात तो होगी होगी, आपके संस्थान के लिए, आपके पेपर्स के लिए, आपके चैनल के लिए, अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। लियोनेल मेसी आए थे हिंदुस्तान, हर पत्रकार उनके पास था, पिछले साल आए थे वो। खिलाड़ियों से जुड़ना, खेल से जुड़ना, जो दुनिया भर में पॉपुलर है, ग्लैमर तो दिलवाते हैं, आपको बड़ा सम्मान दिलवाते हैं।
0: सर आपको क्या लगता है, खेल पत्रकार सिर्फ स्कोर ही बताते हैं या खेल की संस्कृति भी बनाते हैं?
1: खेल पत्रकार दरअसल एक तरह से समीक्षक हुआ करता है। हम जो डेली जो खबर पढ़ते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है। खेल समीक्षक एक अलग चीज हुआ करता है। दोनों की शैली अलग होती है, जो हुआ है उसे बता देना तो वो रिपोर्टिंग कहलाएगा, लेकिन समीक्षक समीक्षा लिखेगा। जैसे भारत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। आपको दूसरे दिन खबर मिल जाएगी कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए, इतने रन कम रह गए और इतने रनों से फलानी टीम जीत गई। लेकिन उसके ऊपर दूसरा कॉलम साइड में आपको लिखा मिलेगा, वो समीक्षक का होगा।
0: जी जी।
1: उसको खेल किस तरीके से आगे बढ़ा, कहाँ टर्निंग पॉइंट था, कहाँ मिसिंग हो गया, क्या जरूरत थी, क्या पूर्ति नहीं हो पाई और क्या होना चाहिए,
0: जी जी,
1: ये सारी चीज एक समीक्षक लिखा करता है। तो दो तरीके का खेल पत्रकार का दायित्व हुआ करता है, एक सिंपल रिपोर्टिंग हुआ करते है खेल में क्या घटा,
0: जी जी,
1: और ऐसा क्यों घटा ये बताने वाला समीक्षक हुआ करता है। तो दोनों की अलग अलग जवाबदारियां रहा करते हैं, लेकिन सच्चाई है दोनों बड़ी चैलेंजिंग हुआ करते हैं। एक भी गलती, अगर आपने किसी व्यक्ति ने 101 स्कोर किया है और आपने टाइपिंग में वो जीरो हटा दिया,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
1: तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाहर से सब वेबसाइट से आता है, आप तो इजी भी है थोड़ा सा आज के दौर में। बीते दिनों में आज से अगर 40 साल पहले की पत्रकारिता देखें तो एक एक चीज हाथ से लिखी जाती थी।
0: हाँ।
1: अगर उसको टाइप भी कर रहे हैं तो आपका टाइपराइटर है उससे खबर जाती थी, तो कई बार वो जो शतक है ना
0: जी,
1: वो 10 रन में तब्दील हो जाता था।
0: जी जी जी।
1: या विकेट उसने 5 लिए हैं या कोई ऐसा अंक है जो एक जैसा दिखाई देता है, तो गलती हो सकती है।
0: अच्छा सर, आपने बात की है तो हम आपसे अब खेल पत्रकारिता का इतिहास समझना चाहेंगे कि पहले क्या कुछ हुआ करता है तो जो अब नहीं होता है, या भी क्या कुछ नया बनाया है।
1: इतिहास तो हर चीज का बहुत पुराना है, जब से इंसान अपने कामकाज में जुटा है तब से बात होने लगी। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि खबर अपने आप में क्या है।
0: जी।
1: एक दूसरे की बात एक दूसरे से करना, जिसे हम चुगली भी कहा करते हैं, वो भी तो एक चल में खबर है।
0: बिल्कुल।
1: कहीं कोई घटना घटी है, हम उस घटना को दूसरे को बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। उस घटना को बताने वाले कई बार बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिसको हम बोला करते थे ये तो बहुत अच्छा बोलता है कि हम वहां से जा रहे थे, वहां से दो गाड़ियां आ रही थी, एक ने ब्रेक लगाया, एक ने साइड लिया, दोनों टकरा गई, उसमें एक आदमी घायल हो गया, दूसरे ने उसको उठाया, ये पूरी की पूरी उसने रिपोर्टिंग की।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसी तरह की चीजें हुआ करती हैं। अब ये धीरे धीरे जब आई है सारी चीज, अब चूंकि अब 1994 एक ऐसा सन दिखाई देता है जहां से ये दिवस प्रारंभ हुआ है, इस तरह की तारीखें तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है मानव जब भी अपने कार्यकलापों में सामने आया है, वास्तव में वो रिपोर्टिंग होती रही, उसकी जानकारी मिलती रही, तो वो भी अपने आप में एक पत्रकारिता ही थी। हमारे जो सबसे बड़े पत्रकार कौन कहलाते हैं, नारद मुनि।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमारे जो सफल खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनकी कहानियां आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा रोचक रहेगा।
1: दरअसल इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है।
0: अच्छा।
1: ये आसान नहीं होता।
0: जी जी।
1: आपने बड़े बड़े एंकर्स देखे होंगे, बड़े समीक्षक देखे होंगे जो खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं।
0: जी जी।
1: खेलों के बारे में बताते हैं, तो आपको रिसर्च करना होता है।
0: जी।
1: हाँ, आजकल इंटरनेट बहुत मदद करता है, लेकिन सच्चाई आपको जांचने की बहुत जरूरत हुआ करती है। मुझे ध्यान है कि माही के ऊपर एक मैं स्टोरी कर रहा था, माही यानी MS धोनी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मैं जिस मैगजीन के लिए लिखा करता था, ये 2012-13 की बात है।
0: जी।
1: तो बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी पूछी, चूंकि रांची में मेरे मित्र भी रहते हैं, मैं वहां जाता रहता हूं कमेंट्री के लिए, तो उनसे पूछा, तो ऐसी चीजें मालूम पड़ी, जैसे माही को गुड़ की चाय बहुत पसंद है।
0: जी जी।
1: माही किस तरीके से आगे बढ़े, कहां कहां उन्होंने मेहनत की, अब बाद में तो फिल्म आ गई, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में मैंने उनकी जब जीवन परिचय लिखा था, उसमें लिखा था कि MS धोनी की जो कहानी है ना, वो किसी फिल्मी नायक की कहानी के समान प्रतीत होती है। जैसे एक फिल्मी नायक संघर्ष से गुजरा है, उसका बचपन मुश्किलों में बीता है, फिर संकल्पित हुआ, मेहनत की, आगे बढ़ा। तो MS धोनी की कहानी ऐसी समझ में आती है कि इस पे तो एक फिल्म बन सकती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि 2 साल बाद
0: फिल्म आ गई।
1: फिल्म आ गई।
0: जी जी।
1: और तब मैंने एक दोबारा आर्टिकल लिखा, पर्टिकुलर उस कॉलम को मैंने उस आर्टिकल में डाला। 2.5 साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी थी और नीरज पांडे ने उन लाइनों को जैसे महसूस कर लिया। तो वो जो आप रिसर्च करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर आगे आपको बड़ा सम्मान दिलाती है।
0: बिल्कुल।
1: रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होता, ना आप लिख सकते हो ना कमेंट्री कर सकते हो।
0: बिल्कुल।
1: आप कैसे बता सकते हो कि गावस्कर इतने बड़े बैट्समैन कैसे हुए? 1971 में गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन मारे थे, ये उनकी शुरुआती श्रृंखला थी।
0: जी जी।
1: दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया। पहले 4 टेस्टों में 774 मारना, पहली सीरीज में दोहरा शतक मारना, 4 शतक मारना, अब ये रिसर्च करोगे तभी मालूम पड़ेगा।
0: बिल्कुल सर, एक पत्रकार होने के नाते हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव कस्बे के छोटे छोटे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने में खेल पत्रकार का क्या रोल होता है?
1: बड़ी भूमिका रहा करते हैं। देखिए, खेल पत्रकार सिर्फ ये समझें कि वो खेल पत्रकार ही है, ये पर्याप्त नहीं है। वो एक इंसान भी है, वो बच्चों को देखता है
0: जी,
1: वो प्रतिभाओं को देखता है। अगर उसके मन में मंशा है, इच्छा है
0: जी,
1: तो वो कोशिश करेगा। और मुझे तो लगता है खेल पत्रकारों को जवाबदारी उठानी चाहिए। जो खेलों की जानकारी रखते हैं, थोड़ा संबंध रखते हैं, थोड़े मंचों के बारे में जानते हैं, वो प्रतिभाओं को मंच दें। मैं चूंकि रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों को सबसे पहले बोलता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप रेडियो के स्टूडियो में जाएं, आकाशवाणी के स्टूडियो में जाएं, दूरदर्शन के स्टूडियो में जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बोलने का काम है
0: जी जी।
1: जब बच्चे दिखते हैं गली में खेलते हुए, मैं उनको बोलता हूँ आप स्टेडियम जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको जो स्टेडियम का मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर है, मैं उनसे बात कराऊंगा। ये हर पत्रकार की जवाबदारी होती है और ये करना चाहिए उनको, तभी गाँव कस्बे के लोग बाहर आएंगे। MS कहाँ से निकल के आए हैं, है ना? अगर वो आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बैक किया होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पत्रकारों को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका और अदा कर सकते हैं।
0: सर, आपने अभी तक 4 ओलंपिक, 4 एशियन गेम्स, 4 कॉमनवेल्थ और साथ साथ हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर अप किए हैं, तो अब तक का कवर किया हुआ सबसे इमोशनल मैच कौन सा रहा आपका, और क्या कुछ चुनौती भी रही इस मैच को कवर करते वक्त?
1: मुझे ध्यान है नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप में कर रहा था, एक मैच था जहां इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया
0: जी।
1: किसी को ये आइडिया नहीं था, एटलीस्ट मेरे प्रोड्यूसर को भी ये नहीं मालूम था कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चले जाएगा। और ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था
0: जी जी।
1: भारत सेमीफाइनल में 1975 से पहुंचा ही नहीं था। और उस मैच में सब कुछ अनोखा घट रहा था
0: जी।
1: हमारा कमेंट्री बॉक्स जहाँ था उसके ऊपर जो छज्जा लगा हुआ था काफी आगे था, लेकिन इतना आगे नहीं था कि वहां से अगर पानी आए तो हम बच जाएं। इत्तेफाक से पानी आना शुरू हुआ, लाइव प्रसारण चल रहा था, पूरा देश सुन रहा था
0: जी।
1: इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, पानी जब बरसा तो वहां टेम्परेचर था उस समय 6-7 डिग्री, हम भीग रहे थे, लेकिन कमेंट्री करनी थी, हम खड़े हो गए उसके बावजूद हम भीग रहे थे।
0: क्या बात है,
1: वो कमेंट्री हमें करनी थी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मेहनत कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने सब टीमों के खिलाफ आधा दर्जन गोल मारे थे, तो भारत के खिलाफ पहला गोल हुआ था सेकंड हाफ में
0: जी।
1: पहले हाफ में हमने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका था, शुरू के 35 मिनट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 35 मिनट तक रोक लेना, और मेरे दिमाग में जो था वो मैंने बोला, तो बाद में बहुत सारे श्रोता है जानकार तो बोले ऐसा कैसे संभव है, भारत अपने मैच पहले ही हार चुका था, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशन भी उनको बताया मैंने कि इस तरीके से भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हराना असंभव जैसा था, बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, लेकिन बरसते पानी में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला हाफ बराबरी पर रुक गया ऑस्ट्रेलिया को, मेरे लिए वो यादगार मैच था क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था
0: जी जी।
1: और भारत के लिए बरसते पानी में कमेंट्री कर रहा था
0: जी जी।
1: 6 डिग्री टेम्परेचर में, मैं अभी भी जब आपसे बात कह रहा हूँ तो वो समय याद आ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: भारत ने पूरी जान लगाई, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से वो मैच जीता, लेकिन वो सारे जो गोल हुए थे वो सेकंड हाफ में हुए थे, भारत ने कड़ी टक्कर दी थी।
0: क्या बात है, आपसे बात करके खुद हमें भी रोमांच सा हो आया है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो है वहाँ इतने बड़े मंच पर साक्षी है उस मैच का। सर, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बच्चे बहुत समझदार हैं
0: जी,
1: बच्चे जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है
0: जी।
1: इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जानकारी रखें। पत्रकारिता एक साधारण जॉब नहीं है, उस पर खेल पत्रकारिता जो डेटा के ऊपर, जो आंकड़ों के ऊपर, जो खिलाड़ी के या खेल के पूरे करियर के ऊपर आपके काम को सामने लाता है, तो वहां आप गलत या भ्रामक या अतिशयोक्ति नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: अगर सामने वाले ने 6 विकेट लिए हैं 19 रन देकर, तो आपको 19 रन देकर 6 विकेट ही लिखने होंगे। आप ये नहीं लिख सकते आम पत्रकार की तरीके से कि उन्होंने बहुत सारे विकेट ले लिए। जैसे हमारे यहाँ आता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहाँ तो तादाद तय है, संख्या तय है। आपके डेटा जो है वो सही हो, सही आकलन हो, हवा में बात ना हो, ये खेल पत्रकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है। ईमानदारी से काम करे, नो डाउट ये मंच आपको खूब सारा सम्मान देगा, और कहते ना अब तो खूब सारा पैसा भी दिया करता है।
0: सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि कुछ और हम बहुत सारा आपसे जानें, लेकिन अब समय जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो श्रोताओं, आज का दिन है उनके नाम जो हमारे जज्बातों को शब्द देते हैं, दुनिया भर के खेल पत्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। प्रशांत सिंगर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आज के दिन की हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं।
1: बहुत सारा धन्यवाद आपको, आपके संस्थान को, और बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में तमाम सारी ऊंचाइयां लेकर आए, आपके जीवन में एक नया संकल्प पैदा हो, ऐसे हम आपको बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: धन्यवाद सर, और आपने भी आज हमें इतनी सारी रोचक जानकारियां दी हैं, जो अनुभव हमसे साझा किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते हैं आमजन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के अतिथि प्रशांत सिंगर सर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है उसको, गेंद सीमा रेखा के पास।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम, जो केंद्रित था विश्व खेल पत्रकार दिवस पर। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, पद्म विभूषण पंडवानी की अप्रतिम लोक गायिका तीजन बाई जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन भारतीय लोक कला जगत के लिए अत्यंत दुखद एवं अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपनी विलक्षण गायन शैली और अद्वितीय प्रस्तुति से पंडवानी लोक कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी कला साधना आने वाली पीढ़ियों को भी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का मार्ग दिखाती रहेंगी। रेडियो आजाद हिंद परिवार उनकी पावन स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्रोताओं, भारत भवन के संगीत केंद्र अनहद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गायन पर्व का रविवार की शाम समापन हुआ। बनारस घराने के युवा शास्त्रीय गायक डॉक्टर ऋषि मिश्र और गायिका मंजरी असनारी ने अपनी अभिव्यक्ति से संगीत प्रेमियों को रस विभोर कर दिया।

लिखंद्रा चित्र प्रदर्शनी दीर्घा में 75वीं शलाखा जनजातीय चित्र प्रदर्शनी में आदिवासी कलाकारों की कला नजर आ रही है। ये जनजातीय संग्रहालय में शुरू हुई है। ये कला दीवारों पर चित्रकारी के रूप में है। आयोजन 30 जुलाई तक रहेगा। ये उन कलाकारों के लिए है जो होनहार हैं लेकिन कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जनजातीय संग्रहालय द्वारा स्थानीय कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से हर माह इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

अभिनय केवल कला नहीं बल्कि खुद को दुनिया के सामने जाहिर करने का तरीका भी है। रंगमंच के कलाकारों ने ये बात कही। मौका था कला की बारीकियां सिखाने के लिए सेशन का। द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल ने ये आयोजन किया था। जनजातीय संग्रहालय में कला और संस्कृति पर केंद्रित साप्ताहिक गतिविधि संभावना के तहत रविवार को विविध लोक व जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां हुई। और अब मौसम पर एक नज़र। बंगाल की खाड़ी में बना सीजन का पहला बड़ा मानसूनी सिस्टम डिप्रेशन में बदलकर उड़ीसा पहुंच गया है। ये सामान्य ट्रैक पर आगे बढ़ा तो अगले हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार के बीच प्रदेश में 3 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट सागर, दमोह, बैतूल, अलीराजपुर और अनूपपुर में है। येलो अलर्ट छिंदवाड़ा, पंडुरना, सिवनी, उमरिया, उज्जैन, धार, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी और पन्ना में है। भोपाल सहित शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो इस मौसम में रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दे अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार खरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां गायन पर्व में 4 जुलाई को गायन की जुगलबंदी हुई। कलाकार थीं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।
1: बनारस घराने की कुछ खास कजरी, सावन, झूला, हिंडोला, ये सारी चीजें आप

0: ये सारी रचनाएं काव्यात्मक दृष्टि से इतनी सुंदर होती हैं, बहुत अलग अलग भाव इसमें पाए जाते हैं। ये सारा हमारे क्या कहते हैं, फोक म्यूजिक से आई हुई चीज़ें हैं जिनको उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत में अपनाया है हम लोग ने। पर इसका मुख्य जो कहते हैं मुख्य गर्भ भाव जो है वो इसका काव्य है। तो राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है कि कहनवा मानो राधा रानी, बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप अंधेरी रहें, कृपया बाहर ना जाएं। ये सारे भाव चिरकालीन है, ये आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं ये। तो भले ही राधा रानी हो या मेरी 10 साल की बेटी हो, भाव वही रहेंगे कि बारिश में ना खेलो, जल्दी से घर आओ।
1: तो राधा रानी से दोनों प्रकार के निवेदन किए जाते हैं। एक हमारे ब्रज में एक रचना गाई जाती है, राधे झोली में पधारो झुकी आई बदरा। तो एक तरफ ये भी निवेदन है कि आ जाओ, बादल आ गए हैं, तुम झूलने को श्री राधे रानी को पधारो, किंतु यहाँ पे निवेदन है कि बाहर मत जाओ क्योंकि बिजली चमक रही है। तो दोनों प्रकार के निवेदन है, जाने का भी और न जाने का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर।
0: याद करो कुर्बानी। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक महान विचारक, चिंतक, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्रोताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग राजनेताओं से अधिक राष्ट्र पुरुषों का युग था। इन विभूतियों में दलगत राजनीति और व्यक्तिगत कार्य सूचियों से ऊपर उठकर राष्ट्र के बृहत्तर हित में क्रियाशील रहने की अद्वितीय और अनुकरणीय क्षमता थी। जब भारत की संसद में स्वाधीनता संग्राम के महानायक और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तब उस पर अंकुश लगाने वाले महान नेता तीन ही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य जे बी कृपलानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किंतु इन तीनों में हर प्रकार से अग्रण्य थे डॉक्टर मुखर्जी। जहां उनके भाषण सदन में सूचना समृद्ध और प्रमाण प्रष्ट होते थे, वहीं उनकी अभिव्यक्ति में चुंबकीय सहजता रहा करती थी। श्रोताओं, हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोकसभा में प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक पारित किया तो उसका तथ्यात्मक और भावनात्मक विरोध दर्ज कराने वालों में सबसे सशक्त वक्ता थे डॉक्टर मुखर्जी। उन्होंने सरकार पर निरंकुश दमन का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि ऐसा भीषण दमनकारी कानून तो केवल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के नाम से बनाया था। पंडित नेहरू ने उनके भाषण पर आपत्ति करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिवेश की तुलना पराधीन भारत से करना कहां तक उचित है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैंने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के विरोध में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो पराधीन भारत की केंद्रीय असेंबली में रॉलेट एक्ट के विरोध में ना कहा गया हो, जिसमें न वकील, न दलील और न ही अपील वाली उक्ति शामिल थी। और इतना कहकर फिर डॉक्टर मुखर्जी ने सदन से कहा कि क्या उस महान देशभक्त राष्ट्र पुरुष का नाम बताऊं जिसने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और जिसका तत्कालीन भाषण मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक के विरोध में पढ़ा था। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि उस महान नेता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर मुखर्जी की इस प्रमाण पुष्टि पर पंडित नेहरू आवक रह गए। श्रोताओं, हम आपको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आचार्य कृपलानी और डॉक्टर लोहिया का विरोध तो अपनी जगह था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी सही मायने में खरे नेता थे, क्योंकि वो देश के ऐसे विशाल समुदाय का सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व करते थे जो पंडित नेहरू की नीतियों से सहमत नहीं था। ज्ञातव है कि डॉक्टर मुखर्जी सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष में गए थे। भारत की स्वाधीनता के बदले पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विशेष अनुरोध पर नेहरू जी मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने थे, लेकिन जब धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर 1950 में नेहरू लियाकत फैक्ट हुआ तो उसे बंगाल के 11 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात निरूपित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया था। उन्हीं के साथ एक और बंगाली मंत्री केसी नियोगी थे, जिन्होंने उनके साथ में ही इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन करके सन 1952 का पहला आम चुनाव लड़ा और इस प्रकार देश में द्विदलीय यानी कि दो दलीय प्रजातंत्र का सुपात्र करने की दिशा में बुनियादी योगदान दिया। उनका जनसंघ ही बाद में सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना।

0: को है।
1: और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 20 वर्ष की आयु में स्नातक पश्चात सन 1923 में लॉ की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे। एक विचारक, चिंतक, शिक्षाविद और लोकप्रिय प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती ही गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1934 में जब ब्रिटिश शासन चरम पर था तब कलकत्ता कॉरपोरेशन के लॉर्ड मेयर बने। सन 1939 में मात्र 38 वर्ष की आयु में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्र से बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे। सन 1940 में हिंदू महासभा में शामिल हुए। जिन्ना की पाकिस्तान घोषणा तथा उनके प्रति कांग्रेस की नीति से असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, मगर वो बातें डॉक्टर मुखर्जी की महान देशभक्त और दूरदर्शी राजनायक व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सांप्रदायिकता छू तक नहीं गई थी। उन्होंने सन 1941 से 42 में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के बृहत्तर राष्ट्र हित में हिंदू प्रतिनिधि की हैसियत से हक मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, जिसके नेता फजलुल हक ने जिन्हा के प्राक प्रस्ताव का समर्थन किया था। एक दमन अलग नजरिया रखते हुए भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए नेहरू मंत्रिमंडल में शिरकत की। उनकी चरित्रीय उदारता और राष्ट्रीय भक्ति की विलक्षणता को समझने के लिए स्वयं उनकी डायरी पढ़ना चाहिए, जो 1993 में लीक्स फ्रॉम ए डायरी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। सन 1942 में उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी हिंदू महासभा से भी असहमति जताई थी, क्योंकि उसने सन 1942 के आंदोलन का साथ नहीं दिया था। कार्यक्रम में वक्त है एक देशभक्ति गीत का।

यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दुखद निधन के विषय में बात करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद से वहाँ कुछ संवैधानिक विडंबनाएं थीं। उदाहरणार्थ वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक का जम्मू कश्मीर पर कोई दखल नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी इसे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के हित में नहीं मानते थे। बताते चलें हम आपको कि उस समय कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट सिस्टम लागू था। डॉक्टर मुखर्जी ने इसके विरोध में अगस्त सन 1952 में जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, या तो मैं कश्मीर को भारत का संविधान दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी ने अपनी जीवनी माय कंट्री माय लाइफ में डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर प्रकाश डाला है। वो लिखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लिए कूच किया। चूंकि उनके पास प्रवेश परमिट नहीं था जिसके वो विरोधी थे, इसलिए उन्हें 11 मई सन 1953 को पठानकोट पुल पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें श्रीनगर के बाहर एक मकान में नजरबंद किया गया। वहां वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और 23 जून सन 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनके निधन की परिस्थितियों पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का ये परिणाम अवश्य हुआ कि परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत के चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक के

0: श्रोताओं, ऐसा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी महान क्रांतिकारी की गाथा लेकर, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे दी दीजिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी, जो केंद्रित था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक छोटी सी अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने टीम क्या है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। शब्दों के शिल्पकार लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा
3: और मैं वेणु बालन।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: शब्दों के शिल्पकार में दोस्तों आज के शिल्पकार हैं पद्मभूषण विष्णु प्रभाकर।
3: शब्दों के शिल्पकार वह व्यक्ति जो शब्दों को कलह की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है और जो एक युग गढ़ता है, वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के संक में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक, नाटककार और उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर जी की। एक बड़े कद का साहित्यकार जिसमें सरलता का आकाश है।
3: विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। किसी की रचना को समझने के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक होता है। लेखक के जीवन और उनके जीवन की परिस्थितियों को भी जानना जरूरी होता है, ताकि लेखक की दृष्टि और दृष्टिकोण के संबंध में जानकारी मिल सके और उनकी रचनाओं को आसानी से समझा जा सके।
2: श्रोताओं, पद्मभूषण विष्णु प्रभाकर ऐसे ही साहित्यकार थे जिन्होंने अपने शब्दों की शक्ति से साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। वो केवल लेखक नहीं बल्कि मानवता, संवेदना और सामाजिक चेतना के सशक्त प्रवक्ता थे। उनकी लेखनी में जीवन का यथार्थ, मानवीय करुणा, राष्ट्रीय चेतना और नैतिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और साहित्य जगत में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। इसी कारण उन्हें शब्दों का शिल्पकार कहा जाता है।
3: विष्णु प्रभाकर हिंदी के उन बड़े और मूर्धन्य लेखकों में से हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत खुला, खरा और उदार था, सबको अपना, एकदम अपना बना लेने वाला। उनमें एक बड़प्पन था, सामने वाले की लघुता के बावजूद उसे अपने प्रेम से भरकर गले लगा लेने वाला, और वैसा ही खुलापन उनके साहित्य में है जिसमें एक बेबनाव सादगी है तथा जीवन छल छल करता नजर आता है।
2: श्रोताओं, बहुत से लेखक इस भ्रम में जीते हैं कि कम लिखने में ही गौरव है, पर विष्णु जी उनमें से नहीं थे। लिखना उनके लिए आनंद भी था और जरूरत भी। लिखने से जो कुछ मिलता उसी से उनका जीवन निर्वाह भी होता था। प्रेमचंद की तरह उनकी लेखनी से भी मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी और वो अपने आसपास के जीवन की विसंगतियों और विरोधाभासों को जरूर देखते थे। जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसके अंगीकार के लिए उनकी लेखनी सदैव आगे रहती थी।
3: विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरपुर गांव में हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी धार्मिक विचारों से प्रेरित थे और उनकी माता महादेवी जी पढ़ी लिखी तथा आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध भी किया था। इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। वस्तुतः उनके नाम की भी एक कहानी है। बड़े भाई का नाम ब्रह्मा, उनका नाम विष्णु और उनके छोटे भाई का नाम महेश रखा गया।
2: प्यार से लोग इन्हें विष्णु दयाल या विष्णु कहकर पुकारते थे। प्राथमिक स्कूल में उनका यही नाम लिखाया गया था। जब वे अपने आर्य समाजी मामा जी के पास हिसार पढ़ाई के लिए भेजे गए तो आर्य समाजी स्कूल में नाम लिखाते समय अध्यापक ने उनका वर्ण पूछा और विष्णु प्रभाकर के वैश्य कहने पर अध्यापक ने कहा, तब तुम्हारा नाम विष्णु गुप्त होना चाहिए। 10वीं कक्षा तक उनका यही नाम रहा। आगे चलकर जब हिसार में 1929 के सरकारी दफ्तर में छोटे पद पर नौकरी शुरू करी तब उनका नाम विष्णु गुप्त से विष्णु दत्त कर दिया गया। बाद में एक सरकारी महकमे ने उनका नाम विष्णु प्रभाकर कर दिया। कालांतर में यही नाम स्थायी हो गया और वे इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए।
3: परिवार से मिले संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व और साहित्य दोनों को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही उनमें अध्ययन और लेखन के प्रति विशेष रुचि थी, लेकिन विष्णु प्रभाकर जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिससे वे आगे की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं कर पाए। अपनी घर की परेशानियों और जिम्मेदारियों के बोझ से उन्होंने स्वयं को मजबूत बना लिया। परिवार चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। उस समय उन्हें 18 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था।
2: नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी लगनशीलता और परिश्रम से शिक्षा जारी रखी और स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध बनाया। उन्होंने हिंदी प्रभाकर, हिंदी भूषण की उपाधियां तथा संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। प्रभाकर उपाधि के कारण वे विष्णु प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष्णु प्रभाकर जी ने जो डिग्रियां और उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया वो उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था।
3: विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका पहला नाटक हत्या के बाद था। हिसार में उन्होंने नाटक मंडली में भी काम किया। 1947 के बाद वे दिल्ली आ गए। सितंबर 1955 में उन्हें आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1957 तक कार्य किया। 26 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्रीमती सुशीला जी से हुआ।
2: विष्णु प्रभाकर केवल कर्मठ और संवेदनशील ही नहीं थे बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी प्रसिद्ध थे। वर्ष 2005 में उन्हें राष्ट्रपति भवन में देवेंद्रनाथ सत्यार्थी से संबंधित एक घटना के कारण गहरा आघात पहुंचा, जिसके विरोध में उन्होंने पद्म भूषण सम्मान लौटाने की घोषणा कर दी। उनका मानना था कि लेखक का स्वाभिमान और आत्ममर्यादा उसकी सृजनशीलता को प्रभावित करते हैं।
3: रचनाकार की संवेदना सामाजिक सरोकार से जुड़ी होती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने सृजन कर्म को अपना सारा समय दिया। नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृतांत, कविता और बाल साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने 7 दशक लंबे साहित्य सफर में सैकड़ों कहानियों की रचना की। उनकी प्रमुख कहानियों का संकलन विभिन्न प्रसिद्ध संग्रहों में प्रकाशित हुआ है। आइए हम उनकी कृतियों से परिचित होते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां हैं
2: उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, क्षमादान, अर्ध नारीश्वर, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, निशिकांत, स्वराज्य की कहानी। कहानी संग्रह हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, क्षमादान, अर्ध नारीश्वर, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, निशिकांत, स्वराज्य की कहानी। यही नहीं दोस्तों, अभी आगे भी सुनिए। मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक कहानी का जन्म, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, सफर के साथी, खंडित पूजा, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, आपकी कृपा, एक और कुंती, जिंदगी एक और रिहर्सल, एक आसमां के नीचे, अधूरी कहानी, कौन जीता कौन हारा, तपोवन की कहानियां, पाप का घड़ा, मोती किसके।
3: यही नहीं, इसके बाद है हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, बंदिनी, सत्ता के आर पार, केरल का क्रांतिकारी, सीमा रेखा, युगे युगे क्रांति, गंधार की भिक्षुणी, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, इंसान, संघर्ष के बाद क्या वह दोषी था? हमारा स्वाधीनता संग्राम, सांप और सीढ़ी, एक कविता संग्रह भी थी, चलता चला जाऊंगा।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी ने जीवनियां भी बहुत लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख हम आपको बता रहे हैं, आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काका कालेलकर, संस्मरण में कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस तरह हैं, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थयात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मील, समांतर रेखाएं, मेरे हम सफर, राह चलते चलते, निबंध में जन समाज और संस्कृति, एक समग्र दृष्टि, क्या खोया क्या पाया। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की बात करें तो ज्योति पुंज हिमालय, जमुना गंगा के नए हर में,
3: पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बाल साहित्य में थे मोटेलाल, कुंती के बेटे, राम की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी आदि। कुछ बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे, मोटेलाल, कुंती के बेटे, राम की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी आदि। इन्होंने बाल साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल कथा संग्रह में क्षमादान, गजनंदन लाल के कारनामे, घमंड का फल, दो मित्र, सुनो कहानी, हीरे की पहचान।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी को उनके साहित्य अवदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे मूर्ति देवी सम्मान, ये इन्हें अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, महापंडित, राहुल सांकृतायन पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे रचनाकारों के सहयोगी रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी पहली कहानी दिवाली की रात 1931 में हिंदी मिलाप में प्रकाशित हुई और यहीं से उनकी साहित्यिक सफर की शुरुआत भी हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपने सृजन कर्म में निरंतर सक्रिय रहे।
3: वे जीवन भर एक लेखक के सच्चे स्वाभिमान के साथ जिए। इसके कष्ट वे जानते थे, पर पूर्णकालिक लेखक के अलावा कुछ और उन्हें पसंद नहीं आया। सारी तकलीफें झेलते हुए भी वे लेखक थे, अपाद मस्तक लेखक। लेखक होने के लिए वे जन्मे थे। लेखक के रूप में वे हमेशा समाज में सार्थक हस्तक्षेप करते रहे और एक स्वाभिमानी लेखक के रूप में ही उनकी कीर्ति थी। वे जो कहते थे उसे कर दिखाते, केवल बातें करने वाले लेखक वे नहीं थे।
2: श्रोताओं, अपने साहित्य लेखन के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर कहते हैं, परिवेश से प्रभावित होकर भी मेरे सृजन का मूल स्वर मनुष्य की पहचान और शोषण से मुक्ति है। मैंने 4th दशक से लिखना शुरू किया था, जानबूझकर कोई प्रयत्न नहीं किया, पर जिस परिप्रेक्ष्य में मैं पला पनपा, वो मुझे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर ले जा सकता था, लेकिन मैं किसी दल या सिद्धांत का पक्षधर नहीं बन सका। स्वाधीनता से पूर्व स्वाधीनता से अवश्य जुड़ा था। मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, वो मूल्यों को परखता है और उनके आगे प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये उसकी नियति है। चूंकि वो संवेदनशील है और ये निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है, इसलिए वो किसी भी व्यवस्था का प्रचार मंत्री नहीं बन सकता।
3: विष्णु प्रभाकर के अनुसार साहित्य मानव आत्मा की बंधनहीन अभिव्यक्ति है। बंधन अगर है तो वह अपने विश्वासों का आंतरिक बंधन है, वह बाहर से आरोपित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की संवेदना जब मानव की संज्ञा में रूपायित होती है, तभी कोई रचना साहित्य की संज्ञा पाती है। साहित्य भाषा के माध्यम से संप्रेक्षित होता है, भाषा साहित्य को समाज से जोड़ती है, उसे सामाजिक बनाती है। पर साहित्य मात्र समाज का दर्पण नहीं है, वह समाज को समझने पहचानने की दृष्टि है।
2: विष्णु प्रभाकर के साहित्य में विषयों की विविधता है। उन्होंने जीवन को साहित्य और साहित्य को जीवन से जोड़कर देखा है। समाज उनके लिए महत्वपूर्ण रहा, व्यक्ति को भी उन्होंने अपनी संपूर्ण संवेदना के साथ देखा है, फिर भी वो समाज से अलग व्यक्ति को देखने और चित्रित करने के पक्ष में नहीं रहे। वो कहते हैं, जीवन और साहित्य दोनों को अलग अलग करके मानने की मेरी इच्छा नहीं है। जो सचमुच जीना चाहता है वही साहित्य का साध्य है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा में मेरा विश्वास है, लेकिन समाज से अलग व्यक्ति की कल्पना मैं कभी नहीं कर सकता।
3: विष्णु प्रभाकर सह अस्तित्व में अटूट विश्वास रखते थे। वे गांधीवाद से प्रेरित थे और गांधी जी की अहिंसा में उनकी आस्था थी। साहित्य सृजन के लिए उन्होंने 2 बार सरकारी नौकरी छोड़ दी, जबकि दूसरी बार वेतन भी काफी अच्छा था। वे साहित्य सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे। वे साहित्य को समाज और युग से जोड़कर देखते थे, लेकिन मानवता में भी विश्वास रखते थे।
2: श्रोताओं, यही कारण था कि उन्होंने अपने साहित्य में शरद चंद्र के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया और बार बार वो आवारा मसीहा में उनका बचाव करते रहे। वो साहित्यकार की दृष्टि से व्यक्ति को देखते थे, सामाजिक किंवदंतियों के अनुरूप चरित्र को गढ़ते नहीं थे। यदि आप समग्रता में उनके साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन करेंगे तो ये देखेंगे कि उनमें मानवीय भावबोध, संवेदना, समाजोपयोगिता, करुणा, ईमानदारी, अहिंसा, ये सब भाव काफी प्रबल हैं।
3: विष्णु प्रभाकर ने नारी मुक्ति को भी संवेदनशील साहित्यकार के रूप में देखा है। वे साहित्यकारों की आपसी वैचारिक टकराहट को साहित्य के लिए बहुत शुभ नहीं मानते थे। नई कहानी के संदर्भ में वे कहते हैं, नई कहानी को लेकर जो अप्रिय संघर्ष नए हैं और पुराने लेखकों में पैदा हो गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अपने साहित्य के उद्देश्य और आदर्श के बारे में कहते हैं, यदि उद्देश्य जैसे चीज मेरे साहित्य में ढूंढनी ही हो तो वह उत्कृष्ट मानवता की खोज है। आदर्श मुझे वहीं तक प्रिय है जहां तक वह यथार्थ का संबल है। तात्पर्य यह है कि उनके लिए युग का यथार्थ महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि उन्होंने कभी किसी विचारधारा के अनुरूप अपने को ढालने या उसके अनुरूप साहित्य को लिखने की कोशिश नहीं की।
2: श्रोता, विष्णु प्रभाकर जी का अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी साहित्य सृजन का कारण बना। कभी कभी छोटी सी घटना मन पर इतना प्रभाव डालती है कि व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है। विष्णु प्रभाकर जी के बाल मन को उस समय काफी चोट पहुंची जब उनके चाचा ने उनके छोटे भाई को गोद ले लिया और उनका भेदभावपूर्ण व्यवहार विष्णु प्रभाकर जी को आहत करने लगा। वो अपने को काफी छोटा महसूस करने लगे। वो कहते हैं कि आज भी ये मनोविज्ञान मेरे अंतर्मन के किसी कोने में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया है। मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ। जैसे कछुआ अपने अंग समेटकर खोल में घुसा रहता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझे लेखक बनाने में इस घटना का बहुत बड़ा हाथ है।
3: 11 वर्ष की आयु में मामा के पास हिसार जाने में जब माँ का साथ छूट गया तो विष्णु प्रभाकर माँ के अभाव को हर समय महसूस करने लगे और कभी कभी भावुकता में काफी विचलित होने लगे। वे अंतर्मुखी होते गए और उन्हें मनुष्य की छाया से भी डर लगने लगा। यह विषमता और भावुकता धीरे धीरे उनके लेखकीय व्यक्तित्व का निर्माण करने लगी।
2: विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी से अपनी रचना का आरंभ किया था। प्रकाशित कहानियों में वो सबसे पहली सुरक्षित कहानी स्नेह को मानते हैं। ये कहानी लाहौर से निकलने वाली मासिक पत्रिका अलंकार में छपी थी, जिसके संपादक श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे। 1936 में उन्होंने संघर्ष के बाद कहानी लिखी, जो बाद में हंस में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं, मूल्यों को बचाने की कोशिश, मानवता की प्रतिष्ठापना, सामाजिक और शासकीय विडंबनाओं आदि का भी चित्रण है।
3: निशिकांत उनका पहला उपन्यास है, जिसमें 1920 से 1936 तक के सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों का चित्रण है। इसमें निशिकांत के सामाजिक संकीर्णताओं से बाहर निकलने का संघर्ष है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर जो कुछ मैंने देखा, मानव चरित्र की जिन नीचाइयों और गिरावटों को मैंने अनुभव किया, वे कालांतर में मेरे साहित्य की प्रेरणा शक्तियां बनी। इसलिए मैं उत्कृष्ट मानवता की खोज में व्यग्र और व्यस्त हो उठा। मेरे पहले उपन्यास निशिकांत में इनकी कुछ झलक देखी जा सकती है। इस उपन्यास की कमला धर्म और समाज की संकीर्णता से अकेले संघर्ष करती है।
2: उपन्यास लेखन की ओर विष्णु प्रभाकर जी क्यों प्रवृत्त हुए, इसके संबंध में उनकी मान्यता है कि कहानी और नाटक की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उपन्यास में अभिव्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। इसका कैनवास काफी विस्तृत है और ये अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। वो कहते हैं कि अपने को मुक्त करने का आनंद जितना उपन्यास के माध्यम से संभव है, उतना कहानी और नाटक के माध्यम से नहीं।
3: तट के बंधन, इसमें भारत और पाकिस्तान में फंसी हुई नारी के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मार्मिक चित्रण है। नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण करते हुए वे नारी को स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। स्वप्नमयी उपन्यास में भी नारी समस्याओं की अभिव्यक्ति है। घर बाहर के दायित्वों का निर्वाह करती हुई एक माँ की कठिनाइयों का इसमें मार्मिक चित्रण है।
2: दर्पण का व्यक्ति उपन्यास सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। समाज में नारी की स्थिति, विधवा विवाह, तलाक आदि की समस्याओं और सामाजिक विडंबनाओं का इसमें बखूबी चित्रण किया गया है। कोई तो उपन्यास में भी मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं और विसंगतियों का ही तो चित्रण है।
3: अर्धनारीश्वर उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विष्णु प्रभाकर इसे कथ्य और मर्म की दृष्टि से कोई तो उपन्यास का विस्तार मानते हैं। उनके सभी उपन्यासों में नारी मुक्ति की बेचैनी और इसके लिए संघर्ष है। फिर भी वे नारी के जीवन को पश्चिमी दृष्टि से नहीं देखते। नारी में संघर्ष करने की शक्ति है और विजयिनी बनने की आकांक्षा भी है, जो उनके उपन्यास में भी आप देख सकते हैं।
2: श्रोताओं, अपने यात्रा साहित्य के बारे में विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि लगभग डेढ़ वर्ष 1955 से लेकर 1957 तक आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहा। इस काल में जैसे कोई नियम नहीं रह गया था। सुबह 11 बजे से रात के 10-11 बजे तक मैं वहीं रहता था। यात्रा का एकमात्र ऐसा शौक बचा है जिसके लिए मैं बड़ा संकट उठाने के लिए भी तैयार रहता हूँ। हिमालय के अनेक तीर्थ स्थानों में घूम आया हूँ, दुर्गम मार्गों पर भी चला हूँ। वर्ष में कम से कम एक महीना मैं इसके लिए निश्चित करता हूँ। ज्योतिपुंज हिमालय, हंसते निर्झर दहकती भट्टी उनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं।
3: ज्योतिपुंज हिमालय में विष्णु प्रभाकर की 3 यात्राओं का वर्णन है। विभिन्न स्थानों के 16 छायाचित्र भी हैं। इसमें लेखक के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक और भौगोलिक विचार व्यक्त हुए हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, इसमें छोटी छोटी यात्राओं का वर्णन है। इसके अंतर्गत 21 लेख संकलित हैं।
2: उनकी कालजयी कृति आवारा मसीहा बंगाली उपन्यासकार शरदचंद चटर्जी की जीवनी है। ये सिर्फ जीवनी के तौर पर ही नहीं बल्कि शोधपरकता, प्रामाणिकता और प्रवाह के कारण उपन्यास का आनंद देती है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करती विष्णु प्रभाकर जी की कृति आवारा मसीहा जीवनी साहित्य में मील का पत्थर है।
3: इसमें इन्होंने शरद चंद्र के जीवन को 3 पर्वों में बांटा है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशाहारा में शरद चंद्र के बचपन का चित्रण है, दिशा की खोज में उनके लेखक का विकास है और दिशांत में उनके लेखक के स्वर्ण युग का चित्रण है।
2: श्रोताओं, नाथूराम शर्मा प्रेम के कहने से वो शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए थे, जिसके लिए वो शरद को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब ये जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। निष्ठावान प्रतिक्रिया की शिद्दत इतनी विनम्र है कि जिसकी ऊंचाई के सामने सोच भी बौनी पड़ जाती है और वो अखिल भारतीय रचनाकार के रूप में समृद्ध हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इस कृति के संदर्भ में वो कहते हैं, शरद सरोवर जिया था मैं उस आवारा मसीहा के साथ जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। इसके आगे विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि रविंद्रनाथ ना होते तो शरद भी ना होते, और शरद हैं इसीलिए आवारा मसीहा है। विष्णु प्रभाकर जी की ये कालजयी कृति चमत्कारमयी भाषा शैली और शरद चंद की अमरता के प्रति सहज ही आकर्षण पैदा करती है। इस काम में उनकी जीवनी की विशेषताओं का व्याख्यान किया गया है और कई मौलिक तथ्यों के साथ शरद जी के जीवन में अनेक घटनाओं को रोचक अंशों के साथ लिखा है, जिसमें से उनके जीवन के अनेक पहलू पारदर्शी रूप में सामने आ रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस सत्य से जब परिचित होते हैं कि बंगला के अमर कथा शिल्पी शरद चंद को आवारा मसीहा कहने वाले विष्णु प्रभाकर जी का व्यक्तित्व शरद से बिल्कुल विपरीत था। शरद का व्यक्तित्व बोहेमियन की तरह था, जबकि विष्णु प्रभाकर जी गांधीवाद से ओतप्रोत थे।
3: विष्णु प्रभाकर की परिस्थितियां हमेशा उनके लिए विषम और प्रतिकूल रहीं। वे जीवन में जो करना चाहते थे उसे नहीं कर पाए, जिसका दुख उनके साथ हमेशा बना रहा और वे अपनी रचनाओं के पात्रों के साथ संवेदनशील और करुण बने रहे। विष्णु प्रभाकर ने भ्रमण भी किया, जिससे उनका विजन व्यापक हुआ। उनके अन्वेषण व्यक्तित्व, उनकी सूक्ष्म दृष्टि, किसी विचारधारा से न बंधने की प्रतिबद्धता और उनके मानवतावादी दृष्टिकोण ने उनके साहित्य को अपने समकालीन रचनाओं से कुछ अलग ही भावभूमि से संबद्ध किया। विष्णु प्रभाकर ने भारतीय समाज, राजनीति, परंपरा, संस्कृति, इतिहास, पुराण आदि के साथ अपने युग के बदलाव का भी सूक्ष्म अवलोकन किया, जिसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न विधाओं की उनकी रचनाओं में आप देखेंगे।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। वो मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर देखते थे। उनकी रचनाओं में पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता मिली है। वो मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। इसलिए उनकी रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
3: उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे कठिन शब्दों और अलंकारों की अपेक्षा सरल अभिव्यक्ति में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि उनकी रचनाएं सामान्य पाठकों से लेकर विद्वानों तक सभी को आकर्षित करती हैं। वे शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करते थे। प्रत्येक वाक्य में भावों की गहराई दिखाई देती थी। उनकी लेखनी पाठकों के हृदय को सीधे स्पर्श करती थी।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इसके चलते स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया था, जो आजादी के लिए सतत संघर्षरत रही। पर वो किसी के लेबल के मोहताज नहीं थे। खुद को हर वादे से मुक्त रखते हुए उन्होंने लिखा है कि कुछ ने प्रगतिवादी कहा तो कुछ ने सामंतवादी और कुछ ने गांधीवादी। मैं अगर वादी हूँ तो विष्णुवादी।
3: वे लेने से ज्यादा कुछ समाज को देने के पक्षधर थे। वे एक ऐसे रचनाकार थे जो आंदोलन से कभी नहीं जुड़े, न किसी आलोचकों से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से वही किया व लिखा जो उनके भीतर प्रभावित होता रहा। मेरे अंधेरे बंद मकान के खुले आंगन में कैक्टस नहीं उगते, मनी प्लांट खूब फैलता है। लोग कहते हैं पौधों में चेतना नहीं होती।
2: श्रोताओं, देशभक्ति, राष्ट्रीयता और समाज के उत्थान के लिए निरंतर समर्पित उनकी लेखनी ने हिंदी को कई कालजयी कृतियां दी। उनकी लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज 8 दशकों तक निरंतर सक्रिय रहा। ये भी संयोग ही है कि उनके लेखन की शुरुआत कविता से हुई और उनकी अंतिम रचना जो उन्होंने अपने देहावसान से मात्र 25 दिन पूर्व बिस्तर पर लेटे लेटे अर्ध चैतन्य अवस्था में बोली, वो भी कविता के रूप में ही थी। संग्रह चलता चला जाऊंगा से उनकी एक चुनिंदा कविता आग का अर्थ हमारे सामने एक नए अर्थ के साथ पेश है।
3: मेरे इस और आग है, मेरे उस और आग है, मेरे भीतर आग है, मेरे बाहर आग है। इस आग का अर्थ जानते हो? क्या तपन, क्या दहन, क्या ज्योति, क्या जलन, क्या जठराग्नि, कामाग्नि? नहीं नहीं, ये अर्थ हैं कोश के, कोशकारों के जीवन की पाठशाला के नहीं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके रचनाक्रम की कुछ प्रेरक खासियत है। वे मानते हैं कि कुछ भी अंतिम या स्थायी नहीं है। उनकी भावाभिव्यक्ति से यह जाहिर है।
2: मैंने बीते हुए युग की कथा लिखी थी, वो सच नहीं हुई। तुम आने वाले क्षण की कहानी लिख रहे हो, वो भी सच नहीं होगी। काल सबको ग्रस लेगा, शेष रह जाएगा दंप, मेरा, तुम्हारा, उसका, तुम जानते हो किसका? बोलो नहीं, क्योंकि जो भी तुम बोलोगे झूठ साबित होगा।
3: भारतीय भाषाओं के हिंदी के साथ समन्वय की दिशा में विष्णु प्रभाकर ने महत्वपूर्ण कार्य किए। अनुवादों के माध्यम से हिंदी को व्यापक रूप देने में अथक मेहनत की। भारत के गैर हिंदी भाषी प्रांतों का उन्होंने भ्रमण किया और उनकी साहित्यिक गहराई को भी परखने का प्रयास किया। गैर हिंदी साहित्य को हिंदी के करीब लाने के लिए कई प्रांतों की भाषाएं सीखी।
2: गैर हिंदी भाषाइयों की परंपरा और उनसे जुड़े व्यक्तित्व को अनुवाद में पूरा स्थान देकर मौलिकता के सूत्र में पिरोने में सफलता प्राप्त की। इससे भाषाई टकराव की संभावना क्षीण हुई, आपसी सद्भाव और हिंदी के विकास के मार्ग खुले। देखा जाए तो अब विकास की विचारधारा में भारत की विभिन्न भाषाओं में रचे जा रहे साहित्य का हिंदी में अनुवाद कर साहित्य भंडार को और अधिक समृद्ध किया जा सकता है।
3: कितनी अजीब बात है कि जीवन में लेखक अपने से भिन्न व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग को पूर्णता से व्यक्त करने की चेष्टा करता है, जिसमें लेखक को अपने नायक के प्रति सहानुभूति श्रद्धा होती है पर अंधविश्वास नहीं। जीवनी में लेखक स्वेच्छा से जीवन वृतांत प्रस्तुत नहीं कर सकता और जब तक इसमें लेखक चरित्र के साथ समरस नहीं होता उसे श्रद्धेय नहीं मानता। जीवनी लिखने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होता है, वह इस भावना से भी लिखी जाती है कि उस श्रद्धेय पुरुष की जीवनी उसे अमरत्व प्रदान करे। जीवनी का सत्य उपलब्ध सामग्री पर निर्भर है, जहां पर बुद्धि साम्राज्ञी है। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। एक साहित्यकार का जीवन उसका साहित्य ही होता है। उनके जीवन के अनछुए और अनकहे पहलुओं को उनकी रचनाओं में खुशबू की तरह पाना होता है। जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी रहती है, वैसे ही कवि अपनी कविता की पंक्तियों में व्याप्त होता है।
2: अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वो समय 96 वर्ष के थे। हिंदी साहित्य के समूल्य मोती के चले जाने से साहित्य के एक अद्भुत सूरज का अंत हो गया। हालांकि आज विष्णु प्रभाकर जी जीवित नहीं हैं, पर उनका साहित्य अमरता का वरदान लिए हुए हमारे सामने फैला हुआ है। सशक्त शब्दावली के प्रतिनिधित्व करके शब्द दर शब्द को अपनी लेखनी से सजीव करने वाले शब्दों के मसीहा को शत शत नमन।
3: पद्म भूषण विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के ऐसे अमर साहित्यकार हैं जिन्होंने शब्दों को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त उपकरण बनाया। उनकी रचनाओं में जीवन की सच्चाई, मानवता की करुणा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अद्भुत संगम मिलता है।
2: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम का ये विशेष अंक समर्पित था हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी को। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक विनीता जैन और आज का शब्दों के शिल्पकार आपके लिए प्रस्तुत किया मनीषा
3: और वेणु बालन।
2: अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: जो लोग कालजयी महापुरुषों के जीवन काल में जन्म लेते हैं और उनके घनिष्ठ संपर्क में आते हैं, वे उनकी कृपा और स्नेह पाकर धन्य हो जाते हैं। भगिनी क्रिस्टीन भी एक ऐसी ही अमेरिकन महिला थी। सन 1930 में उनके देह त्याग के बाद स्वामी जी विषयक उनकी अविस्मरणीय स्मृतियां पहली बार सन 1931 में प्रकाशित हुई। उनके ग्रंथ का नाम रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद है।
1: भगिनी क्रिस्टीन द्वारा लिखे गए स्वामी जी के ये संस्मरण

0: वर्ष की आयु में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आकर डिट्रॉयट में निवास करने लगी। महान विद्वान तथा स्वाधीन विचारों वाले जर्मन पिता के घर में जन्म लेने के कारण उनका बचपन बड़े सुख में बीता। परंतु 17 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें ही अपनी माता तथा 5 छोटी बहनों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। अर्थाभाव के कारण उन्होंने डिट्रॉयट के पब्लिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। तब से 10 वर्षों तक उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।
1: 14 फरवरी 1894 का दिवस उनके जीवन में स्मरणीय बन गया, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के साथ यूनिटेरियन चर्च में जाकर स्वामी विवेकानंद का पहली बार दर्शन किया तथा उनका व्याख्यान सुना। स्वामी जी उस बार लगभग 1.5 महीने डिट्रॉयट में रहे। इस दौरान क्रिस्टीन ने उस नगर में स्वामी जी द्वारा दिए गए सारे व्याख्यान सुने, जिससे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया।
0: इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 6 जुलाई 1895 को उन्होंने श्रीमती फंकी के साथ सहस्त्र दीपोद्यान की यात्रा की और पुनः स्वामी जी के सानिध्य में जा पहुंची। वहां 22 जुलाई को स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा के साथ भगिनी क्रिस्टीन नाम दिया। उन दिनों स्वामी जी आध्यात्मिक उपदेशों के अतिरिक्त बीच बीच में अपने भारत संबंधी कार्य और विशेषकर भारतीय नारियों की उन्नति के विषय में भी चर्चा किया करते थे।
1: सन 1889 ईस्वी में भगिनी निवेदिता के घर में उन्हें पुनः 1 सप्ताह स्वामी जी का सानिध्य मिला। अपनी माता की मृत्यु और बहनों के अपने अपने पांव पर खड़े हो जाने के बाद उन्होंने भारत में कार्य करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया।
0: 7 अप्रैल 1902 को वे पहली बार भारत आईं। कुछ दिन स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही अत्यधिक गर्मी के कारण स्वामी जी ने उन्हें मायावती यानी हिमालय भेज दिया। इसके कुछ काल बाद ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। 1903 से उन्होंने भगिनी निवेदिता के साथ मिलकर भारतीय नारियों की शिक्षा के कार्य में आत्मनियोग किया और उनके बालिका विद्यालय में सहयोग करने लगी।
1: 12 वर्ष तक अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और इस कारण वे अमेरिका लौट गईं। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उन्होंने अपना भारतवर्ष लौटना स्थगित कर दिया। वे वहीं रहकर भारतीय संस्कृति तथा वेदांत पर व्याख्यान देने लगी। 10 वर्ष बाद 1924 ईस्वी में फिर भारत लौटकर विद्यालय के कार्य में सहायता करने लगी।
0: 1926-27 की गर्मियों का मौसम उन्होंने अल्मोड़ा में बिताया। उसी समय उन्होंने अपनी स्वामी जी विषयक स्मृति लिपिबद्ध करनी आरंभ की। खराब स्वास्थ्य के कारण 1927 में वे एक बार पुनः अमेरिका गईं और 27 मार्च 1930 को न्यूयॉर्क में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वे अत्यंत विनम्र तथा सात्विक स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित लगभग 700 उपलब्ध पत्रों में से 71 पत्र उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। इसी से स्वामी जी के साथ उनकी घनिष्ठता का परिचय मिल जाता है।
1: आइए अब हम भगिनी क्रिस्टीन से उनके संस्मरण सुने।
2: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ एक पर्यटक होता है, जो इस दुःखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मर्द लोक का ना होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थयात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहाँ ठहरता है। वो अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबंध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदार बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है। परंतु इन सब के बीच वो ये कभी नहीं भूलता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अपने दायित्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती। उसे सदैव स्मरण रहता है कि वो महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उसकी वाणी सुनी है, उसके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उसी के चरणों में झुककर मैंने अपनी आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
1: पश्चिम में पली बढ़ी क्रिस्टिन स्वामी जी से बेहद प्रभावित हुई थी,
2: परंतु स्वामी विवेकानंद की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वे एक अलग ही श्रेणी के थे। वे एक ऐसा ज्योतिर्मय विभूति थे जो एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उच्चतर मंडल से इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए थे। काश हमें यह अनुमान होता कि वे इस पृथ्वी पर अधिक काल तक नहीं ठहरेंगे।
1: क्रिस्टीन ने स्वामी जी से पहली मुलाकात के बारे में लिखा है,
2: 1894 ईस्वी की फरवरी की एक सर्द रात को, जब लगभग अनिच्छा पूर्वक ही मैं डिट्रॉइट के यूनिटेरियन चर्च में एक व्याख्यान सुनने के लिए निकली, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की धारा को पूरी तरह बदल कर रख देगा और जिसका इतना गहरा प्रभाव होगा। मैं बड़ी अनिच्छा पूर्वक और केवल अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के अनुरोध के कारण ही भारत से आए एक सन्यासी विवेकानंद का वो विशेष व्याख्यान सुनने गई। फंकी अपने सुंदर आशावादी स्वभाव के कारण अब भी अपनी इस भ्रांति को पाले हुए थी और विश्वास करती थी कि किसी दिन उसे कुछ मिल जाएगा। हम भारत से आगत व्यक्ति को सुनने गए। 5 मिनट सुनने के बाद ही हमारी समझ में आ गया कि हमें वो स्पर्श मणि मिल गई है जिसकी हम दीर्घ काल से तलाश कर रही थी। एक साथ ही हम दोनों के मुख से उद्गार निकल पड़ा, यदि हम इससे वंचित रह जाती तो।
0: जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बाहरी रूप के विषय में काफी कुछ सुन रखा है, उन्हें यह जानकर विचित्र लगेगा कि जो पहली चीज लोगों पर अमिट छाप छोड़ती थी वो उनका बाहरी रूप नहीं था। पश्चिम देशों में बहुधा कृशकाय तपस्वी जैसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाता है, पर मंच पर कदम रखने वाला वो सशक्त ओजस्वी व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी ना था। एक दुबला पतला संत वहां सबकी समझ में आता है, परंतु एक शक्तिशाली संत के बारे में भला किसने सुना था? इस रहस्यमय व्यक्ति से निस्तृत होने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष मानो सभी सहमे हुए थे। उनकी शक्ति अभिभूत कर देने वाली थी, सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने वाली थी। उन प्रारंभिक अविस्मरणीय क्षणों में इसका बोध हो गया, बाद में हमने इस शक्ति को सक्रिय रूप में भी देखा।
1: युवा दिव्य कांति भारतीय संत ने अमेरिका में जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में शब्दों का ताना बाना, स्वरों की संगीतमयता ने सबको मोह लिया।
2: सुदूर भारत से आए ये धर्म प्रचारक मुश्किल से 30 वर्ष के रहे होंगे। कालातीत यौवन के प्रतीक होकर भी मानो वे प्राचीन काल के एक ज्ञान रथ थे। जीवन में पहली बार हमें भारत का युगों पुराना संदेश आत्मतत्व की बातें सुनने को मिली। वे मानो एक सुंदर कश्मीरी शॉल का निर्माण करते हुए चमकीले तथा रंग बिरंगे ताने बाने बुनते रहे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। बीच में कहीं वे उपहास का धागा डाल देते तो कहीं त्रासदी का, और उसमें बहुत से धागे गहन चिंतन, आकांक्षाओं, उदात्त आदर्शवाद तथा परम ज्ञान के भी हुआ करते। पर इन सभी तानों के बीच भारत की परम पवित्र शिक्षा मानव का दिव्यत्व और उसमें अंतर्निहित शाश्वत पूर्णता का बाना विद्यमान रहता।
0: स्वामी जी ने लोगों को आत्मसम्मान से जीने का पाठ पढ़ाया। उनके उदाहरण बड़े सटीक होते थे।
2: हम लोग उस व्यक्ति के समान हैं जो सोने की खान के ऊपर रहते हुए भी स्वयं को निर्धन समझता था। हम लोग उस सिंह के समान हैं जो भेड़ों के बीच पैदा हुआ था और स्वयं को भेड़ ही समझता था। अपने स्वरूप से बेखबर होने के कारण भेड़िए के आने पर वो भय से मिमियाने लगता था। फिर एक दिन एक सिंह आया और उसे भेड़ों के साथ मिमियाता हुआ देखकर उसे पुकार कर बोला, तुम भेड़ नहीं सिंह हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उस सिंह को तत्काल अपने स्वरूप का बोध हो गया और वो भी जोरों से गर्जन करने लगा।
1: भारत की शाश्वत वाणी को उन्होंने नई दुनिया के समक्ष रखा। ऐसे उद्गारों ने उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया।
2: उन्हें सुनने वाले हम में से भला कौन उन्हें कभी भूल सकेगा? जब हमने भारत का ये प्राचीन संदेश सुना तो हमारे मनों में आत्मा की कैसी सुप्त स्मृतियां जाग उठी थी। हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासियों तुम लोग भी सुनो। मैंने उन अनादि पुरुष को जान लिया है जिन्हें जानकर ही मृत्यु के चक्र से छूटना संभव है।
0: स्वामी जी जब बोलते थे तो उनकी सम्मोहिनी वाचन शैली मानो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी।
2: उस प्रथम अविस्मरणीय एक घंटे के दौरान हमें कुछ कुछ ऐसा ही बोध हुआ और हमारे मन उनकी अपनी बोधमय चेतना में उन्नत हो गए। बाद में कालांतर में और कभी कभी कष्टपूर्वक काफी प्रयास तथा साधना के बाद हम में से कुछ को पता चला कि हमारे मन प्राण ही रूपांतरित हो चुके हैं। अपार होती है गुरु की महिमा।
1: उनके भाषणों में अपार भीड़ होती। लोग रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे।
2: यूनिटेरियन चर्च में उनका पहला व्याख्यान सुनने वाले उनका दूसरा और तीसरा व्याख्यान भी सुनने आए और वे लोग अपने साथ दूसरों को भी कहकर लाए, चलो उस अद्भुत व्यक्ति की बातें सुनो। वे पहले सुने हुए किसी भी व्यक्ति के समान नहीं है और वे तब तक आते रहे जब तक कि बैठने की जगह ही नहीं बची। वे लोग कमरे में भर गए, गलियारों में खड़े रहे, खिड़कियों से झांकते रहे। स्वामी जी ने बारंबार अपना संदेश दिया, कभी एक रूप में तो कभी अन्य रूप में। कभी उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कहानियों के माध्यम से समझाया तो कभी पुराणों तथा दंत कथाओं के माध्यम से, उपनिषदों से, तो वे निरंतर उद्धरण देते रहते थे।
1: उनकी आवाज में जादुई शक्ति थी। भारत के बारे में वे पूरे आवेग के साथ बोलते थे।
2: पहले वे मूल पाठ की आवृत्ति करते और उसके बाद मुक्त काव्य में उसका अनुवाद करते। उनके कथित शब्दों का विलक्षण प्रभाव होता और श्लोकावृत्ति तो और भी अधिक प्रभाव उत्पादक होती। अतल गहराइयां आलोकित होती और जब उसकी लय कानों में पड़ती तो श्रोतागण सांस रोके मुक्त बैठे रह जाते। मुझे लगता है कि जब हमने पहली बार उनकी उस अद्भुत आवाज से भारतवर्ष शब्द सुना तभी से हमारे हृदय में भारत के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे पांच अक्षरों के इस छोटे से शब्द में इतना कुछ समा सकता है। उसमें प्रेम था, आवेग था, गर्व था, आकुलता थी, श्रद्धा थी, विषाद था, वीरता थी, ग्रह विरह था तथा सर्वोपरि था गहन प्रेम। कोई भी ग्रंथ किसी में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके शब्दों में श्रोताओं के मन में प्रेम संचरित करने की जादुई शक्ति थी।

0: जी का एकमात्र उद्देश्य था धन एकत्रित कर भारत का कल्याण करना। इस कार्य को वे पूजा समझकर करते थे।
1: उन्होंने आशा की थी कि इस प्रकार अर्जित धन से वे भारत में अपना कार्य आरंभ कर सकेंगे, परंतु उनके लिए इस सार्वजनिक कार्य में उतरने का यही एकमात्र कारण न था जो भाव उन्हें निरंतर आगे की ओर प्रेरित कर रहा था और जो कभी उनके मानस पटल से अदृश्य नहीं हुआ था। वो था अपने गुरुदेव द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्यभार। उन्हें एक कार्य संपन्न करना था, एक संदेश था जो लोगों तक पहुंचाना था, एक पवित्र संदेश।
2: स्वामी जी आगे और कार्य करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें अमेरिका में कुछ अनुयायियों की जरूरत थी। वे उन्हें तैयार करने में जुटे थे।
1: डिट्रॉइट पहुंचते पहुंचते उनकी समझ में आ गया कि इस प्रकार दौरे करते हुए व्याख्यान देना वो पद्धति नहीं है और जो कार्य उन्हें उनके उद्देश्य की ओर अग्रसर कराने वाला नहीं था उसके लिए वे एक क्षण भी बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। डिट्रॉइट में उन्होंने 6 सप्ताह बिताए। उनका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर था और समय समय पर वे व्याख्यान देते। हमने उनके व्याख्यान सुनने का कोई भी अवसर नहीं खोया। हमने बारंबार आत्मा का वो अद्भुत सुसमाचार सुना। हमने बारंबार और विभिन्न दृष्टिकोणों से भारत की कथाएं सुनी। हम समझ गई थी कि हमें अपने आचार्य मिल गए हैं। गुरु शब्द से उस समय हम परिचित नहीं थी और ना ही व्यक्तिगत रूप से हमारी उनसे कभी भेंट हुई थी, परंतु उससे क्या होता है। हमने जो कुछ सीखा था उसी को आत्मसात करने में वर्षों लगेंगे और हमें विश्वास था तब आचार्य देव हमें पुनः किसी प्रकार कहीं ना कहीं आगे की सीख देंगे।
0: सहस्त्र द्वीपों ध्यान में रहकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। कुछ शिष्य मिल गए।
1: हमने जैसी आशा की थी उसके पूर्व ही ऐसा हो गया, क्योंकि इसके 1 साल से थोड़े ही अधिक काल बाद हमें सहस्त्र द्वीपों उद्यान के एक ही मकान में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद के अद्भुत सप्ताहों के बारे में लिख पाना बड़ा कठिन है। उन दिनों हम चेतना की जिस अवस्था में निवास करती थी, यदि कोई उसी अवस्था में अपने मन को ले जा सके तभी वो हमारी उस अनुभूति को समझने की आशा कर सकता है। हम आनंद से परिपूर्ण थे। उस समय हम नहीं जानती थी कि हम उनके आलोक की परिधि में निवास कर रही हैं। प्रेरणा के पंखों के सहारे वे हमें उन ऊंचाइयों पर ले गए थे जहां उनका सहज आवास था। बाद में तो उन्हें संदेश को प्रचारित करने तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने का पथ मिल गया था, क्योंकि आचार्य देव को अपने शिष्य मिल गए थे।
2: वे बहुत अच्छे वक्ता थे और चाहते थे कि उनके शिष्य भी उनकी तरह भाषण देने में सक्षम हो। वे उन्हें सिखाते भी थे।
1: हम लोगों को मुक्ति का पथ दिखा देना, हमें मुक्त कर देना, यही उनकी पहली प्रबल आकांक्षा थी। उन्होंने बड़े ही मार्मिक भाव के साथ कहा, आहा, यदि मैं तुम लोगों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर पाता, उनकी दूसरी आकांक्षा थी जो इतनी प्रत्यक्ष ना होकर भी फल्गुन धारा के समान भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती थी। इस टोली को अपने अमेरिका के कार्य हेतु गढ़ लेना, वे कहते, ये संदेश भारत में भारतवासियों तथा अमेरिका में अमरीकियों द्वारा प्रचारित होना चाहिए। अपने उस छोटे से बरामदे में जहाँ से पेड़ों की चोटियाँ तथा सुंदर सेंट लॉरेंस नदी दिख पड़ती थी, वे प्रायः हमसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया करते थे। उन्होंने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इससे हम स्वयं ही चिंतन करना सीख जाएंगे। शायद वे जानते थे कि विश्व के श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक माने जाने वाले स्वयं उन्हीं की उपस्थिति में यदि हम अपनी मंच भीति को जीत सकें तो फिर दुनिया का कोई भी मंच हमें भयभीत नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी कठिन परीक्षा हुआ करती थी। वे एक एक कर सबसे प्रयास करने को कहते। बचने का कोई उपाय नहीं था। शायद इसी कारण कोई कोई तो इस घनिष्ठ शांति गोष्ठी में उपस्थित ही नहीं होते थे।
2: स्वामी जी के शिष्यों के मन में हजारों प्रश्न आते थे और स्वामी जी भी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करते, उनकी झिझक मिटाते थे।
1: ऊपर के बरामदे में होने वाले इस निशा सम्मेलन की कोई बंदी बनाई व्यवस्था ना थी। वे एक किनारे द्वार के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठते, कभी कभी वे गहरे ध्यान में डूब जाते। उस समय हम लोग भी ध्यान करते अथवा निशब्द बैठे रहते। कभी कभी यह भाव घंटों चलता और धीरे धीरे हम सभी उठकर चले जाते, क्योंकि हमें पता था कि ऐसी अवस्था के बाद उनमें बोलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, या फिर थोड़े समय बाद ही उनका ध्यान भंग हो जाता और उसके बाद वे हमें प्रश्न पूछने को उत्साहित करते तथा बहुधा हम ही में से किसी एक को उसका उत्तर देने को कहते। हमारा उत्तर चाहे कितना भी गलत हो, वे हमें उसी में भटकने देते जब तक वे समस्या सत्य के निकट ना पहुंच जाते, और तब कुछ ही शब्दों में वो समस्या का समाधान कर देते। यही उनके शिक्षा दान की निश्चित प्रणाली, और इस प्रकार उन्होंने हमें बड़े धैर्य और सौम्यता के साथ प्रशिक्षित किया। यह एक आशीर्वाद के समान था। बाद में भारत लौटने के बाद उन्होंने आशा की थी कि वे हिमालय में कोई स्थान लेकर अपने प्राच्य तथा पाश्चात्य शिष्यों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे।
0: सहस्र द्वीपोद्यान में उन्हें कुछ अनुयायी मिले जिनके अवदान को हम भुला नहीं सकते।
1: उस ग्रीष्मकाल में सहस्र द्वीपोद्यान में उनके आकर्षण से खींचे चले आए लोगों का वो दल बड़ा विचित्र था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सर्वप्रथम वहां पहुंचने पर हम जिस दुकानदार से रास्ता पूछने गई थी उसने कहा था, हाँ कुछ विचित्र से लोग उस पहाड़ी पर रहते हैं और उनमें एक विदेशी से दिखने वाले सज्जन भी हैं। उनमें कुमारी एस ई वॉल्डो, कुमारी रूथ एलिस और डॉक्टर वाइट थे। दीर्घ काल तक व्याख्यानों को सुनने के कारण कुमारी वॉल्डो में पूरे व्याख्यान को कुछ ही वाक्यों में संक्षेपित करने की क्षमता आ गई थी। देववाणी ग्रंथ उसी का अवदान है। उसी वर्ष इंग्लैंड जाते समय स्वामी जी ने कुछ कक्षाएं चलाने का उत्तरदायित्व कुमारी वॉल्डो को ही सौंपा था, और लौट आने के बाद भी उनकी सहायता उनके लिए बहुमूल्य हो गई थी। स्वामी जी ने पतंजलि योग सूत्रों पर अपनी व्याख्या को बोलकर ही उनसे लिखवाया था। फिर उन्होंने ही कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ग्रंथों की प्रकाशन में भी सहायता की थी। उसकी सुलझी हुई प्रशिक्षित बुद्धि तथा अटल निष्ठा ने उन्हें स्वामी जी का एक आदर्श सहकारी बना दिया था। वे जानते थे कि किस प्रकार शिक्षार्थी के मन को उद्दीप्त करके स्वाधीन चिंतन में लगाया जाए। यदि कभी हम अपना कोई विचार या दृष्टिगोचर लेकर उनके पास अनुमोदन के लिए जाकर कहते, मुझे ये इस प्रकार और ऐसा प्रतीत होता है, तो वे एक ऐसे सुर में हाँ कहते कि हमें उस विषय पर और भी सोचने का उत्साह मिलता। कुछ और भी सुलझे हुए विचार लेकर जब हम दोबारा उनके पास जाते तो पुनः वही हाँ हमें और भी अधिक सोचने को प्रेरित करता। संभवतः तीसरी बार जब हमारी चिंतन की शक्ति उस पथ पर और अग्रसर होने में असमर्थ हो जाती, तब वे हमारी भूल की ओर इंगित कर देते, और वो भूल होती हमारी पाश्चात्य चिंतन प्रणाली के फलस्वरूप।
0: आपने भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण सुने। आगे हम उनसे स्वामी जी के बारे में कुछ और अनजानी बातें सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन।
1: जो सोहर गीत मैं गा रही हूँ वो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध सोहर गीत है, कहीं कहीं इसको बधाई गीत भी कहते हैं, तो आपके सामने ये बधाई प्रस्तुत है। दो लाइनें माँ के लिए।

एक लोक शैली में एक सुंदर सा गीत बहन उर्मिला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

और अगला गीत आपकी सेवा में, ये वसंत ऋतु जो अपने बीच है उस ओर चलते हैं, जो बिहारी जी की रचना है, ऋतुराज महाछवि छाए अली, लीजिए बहन और

भोलानाथ वड़ा सजी है, लीजिए इस गाड़ी को बहन अनुला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

भगवान भोले बाबा के चरणों में ये प्रस्तुति थी। सुंदर सा गीत चौकड़िया के रूप में, जिसे फाग भी कहते हैं, ईश्वरी जी की, ईश्वरी जी द्वारा रचित राधा श्यामल या खंघेरें। लीजिए बहन उर्मिला पंडित जी।

0: और इस पारंपरिक भाग के बाद एक होली गीत नेक ठाणी रही और लाला रंग डालूंगी।
1: अभी आपने ईश्वरी की सुनी, अब ये चंद्र सखी द्वारा रचित होली गीत है।

0: और एक और सुंदर सा होली गीत आपकी सेवा में बहन अनुला पांडे जी, एक पारंपरिक बहुत सुंदर सी होली एक गीत के माध्यम से सुनिए आप।
1: रसिया एक मैं सुना रही हूँ होली का। रसिया ब्रज के हैं, अपने बुंदेलखंड के भी हैं, होली के अलग हैं, सावन के अलग हैं। मैं ये होली का रसिया सुना रही हूँ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: वर्ष

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: पुलिस का एक ही काम रह गया था, वैसे के वैसे वाकयात मुख्तलिफ गवाहों से कराना।
1: हुजूर, मेरा नाम अब्दुल वदूद है, ट्रेन में सोडा वाटर बेचता हूँ। वारदात के रोज मैं उसी ट्रेन में था। काकोर स्टेशन से गाड़ी आगे चली और थोड़ी दूरी पे अचानक रुक गई। गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा देखूं तो जरा क्या माजरा है, तो साहब मैं डब्बे से उतर पड़ा। देखता क्या हूँ साहब, 8-10 लोग एक जगह पर जमा है। किसी के हाथ में पिस्तौल है, किसी के पास बंदूक, कोई तिजोरी जैसी चीज तोड़ रहा है, तो कोई हथौड़ा पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, और बहुत सारी तोड़ा ताड़ी मची हुई है। कुछ लोग तमंचे चला रहे हैं।
2: ओ ठीक है ठीक है, तुमने किसी की शक्ल भी देखी होगी?
1: हथौड़े चलाने वालों को तो नहीं देख पाया साहब।
2: किसी और की शक्ल देखी या नहीं?
1: हाँ, एक एक की शक्ल, सूरत, एक एक का होलिया अच्छे से याद है।
2: और जेल में भी उन्हें पहचान लिया था तुमने?
1: हाँ साहब, क्यों नहीं पहचानूंगा।
2: यहाँ अदालत में उनमें से कोई मौजूद है, पहचान सकते हो उन्हें?
1: अभी लीजिए साहब। हाँ, एक तो ये रहा साहब, और दूसरा ये रहा, और
2: मिस्टर पंत, योर विटनेस।
3: अब्दुल, ट्रेन काकोरी स्टेशन से किस वक्त रवाना हुई थी?
1: उस रोज तो 8 राइट टाइम था सर, शाम के ठीक 7 काकोरी जल पड़ी थी।
3: अच्छा, पर घड़ी वड़ी तो तुम बांधते ही नहीं।
1: जी साहब, हाँ साहब, कभी बांधी कभी नहीं बांधी। अलबत्ता उस रोज बांधी थी साहब, तभी तो गाड़ी रुकते ही घड़ी देखी, फिर बाहर कूद गया।
3: अंधेरे में?
1: हाँ साहब। नहीं नहीं नहीं, अंधेरा था मगर इतना नहीं था।
3: फिर भी ना वहाँ कोई स्टेशन था और ना कोई बस्ती, बियाबान जंगल था, और लगातार गोलियां चल रही थी, है ना?
1: हाँ साहब, तड़ातड़ गोलियां चल रही थी।
3: और तुम घबरा गए हो? भाई कोई भी घबरा जाता।
1: अपन उनमें से नहीं है साहब, पूरी वारदात देखी अपन ने।
3: शाबाश, पुलिस को ये सब बताया था तुमने?
1: हाँ।
3: वारदात के कितने दिनों बाद? 8 बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद?
1: बताया तो वारदात के बाद ही था हुजूर, अब कितने दिनों बाद याद नहीं सर।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, आज से पहले भी तो तुम अदालत आ चुके हो ना, मुलजिमों को आते जाते भी देखा होगा।
1: साहब, हाँ साहब। नहीं नहीं नहीं नहीं साहब।
3: जेल में भी तो तुम किसी को भी पहली बार नहीं पहचान पाए थे, है ना?
1: नहीं साहब, पहचान तो लिया था।
3: 3-3 मर्तबा गलत लोगों की शिनाख्त के बाद, राइट?
1: इंसान हूँ साहब, भूल चूक तो हो ही जाती है।
3: देखो, तुमने पुलिस के कहने पर बयान दिया है, ये बात सही है या नहीं?
1: अब साहब अपन को जो कुछ बताना था बता दिया साहब, बस।
3: तुम ना कंपार्टमेंट से बाहर निकले थे और ना तुमने कुछ देखा, सही है ना?
1: अरे साहब कैसे बताऊं, निकला था हुजूर, नीचे उतरा था।
3: उतरे और गोलियां चलती देख फौरन कंपार्टमेंट में घुस गए, 1-2
1: सेकंड में तो पता नहीं साहब। हाँ बस उतरे और फटाक से चढ़ गए डब्बे में।
0: ये कोई मामूली गवाह नहीं था, मौकाए वारदात पर बिस्मिल की मौजूदगी का तन्हा चश्मदीद गवाह था बेंडर। किस कदर दिलेर और जीवट वाला नौजवान था जो दंदनाती गोलियों की परवाह किए बगैर पूरी वारदात को देखने का दावा कर रहा था, लोगों की शक्ल देखने का भी दावा कर रहा था। ये और बात है कि तब दूर दूर तक अंधेरा था और मौसूफ खुद खासी दूरी पर थे, वो भी 2 के लिए। भला कितने काबिल एतबार था ये सो कॉल्ड गवाह। और इसके बाद हुई गवाही ढोर डंगर चराने वाले चंद छोकरों की।
4: बबलू, ढोर डंगर चराते सरकार, भाई रे थे अमेठिया गांव में, रेल की पटली तरफ ढोर ले जाते। उ दिन भी भाई हते, कलुआ और सितलबा भी हमारे संगे हते। तारीख नहीं मालूम सरकार, दिन चढ़े की बात है, बहुत से बाबू लोग दिखाने हुआ पुल के हिया, का कर रहे थे जे पता नहीं, फिर काकोरी की तरफ चले गए और रात को रेलगाड़ी लुट गई। अरे राम, इनमें कौन कौन लोग हते जे हमें नहीं मालूम सरकार।
2: नो क्रॉस योर ऑनर, नाउ मे आई कॉल द की विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, मिस्टर बनवारीलाल। तो आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था, देखिए क्या यही वो बयान है?
5: जज साहब, ये वो बयान है जरूर, लेकिन इसमें कही गई एक एक बात गलत है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठे मिलोर्ड।
2: मिस्टर बनवारी लाल, ये बताइए कि ये बयान आपने मजिस्ट्रेट को दिया था या नहीं? हाँ या ना?
5: हाँ, ये बयान लिखा तो गया है मेरी मौजूदगी में, लेकिन पूरा मजमून वो था जो मैंने पुलिस के दबाव में बयान किया, जिसमें कई बातें झूठी थी, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती मेरे मुंह से कहलवाई। मजिस्ट्रेट साहब, मैं अपने उस इकबाले जुर्म के बयान से इनकार करता हूँ, इनकार करता हूँ मिलोर्ड, इनकार करता हूँ।
6: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
7: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6: साम्राज्यशाही का
7: नाश हो,
6: नाश हो। डाउन विद, डाउन विद
7: ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर।
0: निचली अदालत में पेश 43 लोगों में से कुल 20 लोगों को एक साजिश के तहत राजद्रोह करने और उस मकसद से डाके डालने व कत्ल करने के इल्जाम लगाकर सेशंस कमिट कर दिया गया। इस सेशंस ट्रायल के लिए भी एक स्पेशल सेशंस जज मुकर्रर किया गया। स्पेशल जज मिस्टर हैमिल्टन की एक और खासियत थी कि उनका ताल्लुक ज्यूडिशियरी से न होकर सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव से था। वो एक ICS थे, यानी बेहद पक्के नौकरशाह। ऊपर से थे भी अंग्रेज, यानी हुकूमत ने हर तरह से मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाने का पूरा और पक्का बंदोबस्त कर डाला था। ये एक तरीका था ज्यूडिशियरी में सरकारी घुसपैठ का, अपने मनचाहे इरादों पर मुकदमे का ढोंग रचाकर अदालत की मुहर लगवाने का। ये काकोरी केस हुकूमत की इसी दोरंगी नीति की जीती जागती मिसाल था, जिसमें सेशंस जज की अजीम कुर्सी पर बैठकर मिस्टर हैमिल्टन ने जज से ज्यादा एक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाई। अपने पद की गरिमा का खून करते हुए पुलिस और प्रोसिक्यूशन को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में ना कोई झिझक महसूस की और ना ही कोई शर्म।

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
1: कोर्ट में गवाह के तौर पर बनारसी को पेश किया गया।
0: आपका नाम?
2: बनारसी लाल।
0: हाजिर अदालत मुल्जिमान में से किसी को जानते हो?
2: जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चटर्जी, मुकंदी लाल, बल्कि मैं तो इन सभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सन 1921 में मुझे शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया और तभी से मेरी जान पहचान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान से हुई। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में हम तीनों साथ साथ शरीक हुए। फिर अगले साल गया अधिवेशन भी अटेंड किया, वहीं प्रेम किशन खन्ना एक्यूज से भी मुलाकात हो गई। राम प्रसाद अक्सर मुझे और अशफाक को पढ़ने के लिए किताबें दिया करते थे।
0: किस किस्म की किताबें?
2: रेवोल्यूशनरी किताबें। कुछ किताबें तो खुद उनकी ही लिखी हुई थीं, जैसे अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, रूस की देवी कैथराइन, फ्रांस की राज्य क्रांति, बोल्शेविका के कारनामे, कम्युनिज्म क्या है, नियलिज्म की, ये सब वगैरह, इस तरह की किताबें, बहुत सारी किताबें देते थे।
0: और क्या क्या बातें करते थे?
2: यही कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हो, अक्सर रूस की कैथराइन का हवाला देकर बताते थे, जिस तरह गांव गांव किसानों के बीच घूमकर उसने उन्हें जारशाही के खिलाफ संगठित किया, उसी तरह हमें भी किसानों और मजदूरों में जागृति फैलाना चाहिए और उसी तरह का इनकलाब लाना चाहिए जैसे सोवियत रूस में आया, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए वगैरह वगैरह।
0: सिर्फ बातें किया करते थे बस?
2: जी नहीं, 1924 की बात है, बारिश का मौसम शुरू ही हुआ था। बंगाल से ये जोगेश चंद्र चटर्जी शाहजहांपुर आए थे, तब इन्होंने अपना कुछ और नाम बताया था। हम सब इन्हें राय मोशा या राय दादा के नाम से ही जानते थे। राम प्रसाद के घर इन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें हम लोग और मुलजिम राम दुलारे वगैरह थे।
0: ये बताओ कि ये मीटिंग किस सिलसिले में थी?
2: जोगेश दादा ने एक क्रांतिकारी पार्टी शाहजहांपुर में कायम करने की सलाह दी थी। कहा था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से मार भगाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे, जनता में बांटने होंगे। ये हथियार जुटाने के लिए जरूरत पर हमें डाके भी डालने पड़ेंगे। ब्रिटिश राज कैसे उखाड़ना है, जनता का राज क्यों कायम करना है, इन बातों का खुफिया तरीके से प्रचार प्रसार करना जरूरी है। पर्चे पंपलेट छापने होंगे, हर जगह बांटने होंगे वगैरह वगैरह। पार्टी के लोग अपने असली नामों से नहीं बल्कि बदले हुए नामों से जाने जाएंगे, कोई एक दूसरे का असल नाम नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये कही साहब कि अगर पार्टी के किसी मेंबर की गलती या गद्दारी से पार्टी को नुकसान पहुंचा तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बिस्मिल साहब और राम दुलारे जी ने उनकी हर बात का बड़े जोरों से समर्थन किया और इस तरह क्रांतिकारी पार्टी बना ली गई। राम प्रसाद यूपी का ऑर्गेनाइजर बनाया गया और अशफाक को उनका राइट हैंड और मुझे सिंपथाइजर।
0: व्हाट? जस्ट सिंपथाइजर?
2: जी हाँ, ये क्या प्रोग्राम बनाते थे क्या नहीं बनाते थे मुझे कोई भनक तक नहीं। हाँ, जब कभी उन्हें ये लगा कि इससे फला काम कराया जा सकता है तब अलबत्ता कोई ड्यूटी लगा देते थे, लेकिन उसका कोई सर पर मुझे नहीं बताया जाता था।
0: यानी बनारसी बाबू, एक तरह से इन्हें आप पर पक्का भरोसा नहीं था।
2: पता नहीं, हालांकि कभी हम बिस्मिल साहब के बड़े खास दोस्त हुआ करते थे। खैर।
0: अच्छा, इतना होने पर भी आप इस पार्टी से जुड़े रहे?
2: मजबूरी थी ना, उस पहली मीटिंग में जाता ना इस झंझट में पड़ता।
0: मतलब आप दिल से रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ नहीं थे?
2: मैं तो कांग्रेस पार्टी का आदमी था, अहिंसा के रास्ते चलने वाला। ये रेवोल्यूशनरी लोगों से हमदर्दी जरूर थी, पर वो भी एक हद तक। बाकी ये बम धमाके, गोलीबारी, लूटपाट, इनसे मेरा क्या वास्ता?
3: तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिर भी इस पार्टी में शामिल रहे?
2: बताया ना आपको, ये जोगेश दा पहली मीटिंग में धमका जो चुके थे, उधर किसी ने गलती या गद्दारी की, इधर इन्हें ताड़ से गोली मार दी। इसीलिए तो मैंने सिर्फ सिंपथाइजर बने रहने में ही भलाई समझी। सर, एक बात बताऊं आपको, ये कितनी भी सीक्रेसी बरतते रहे हों, मगर मालूमात तो मैं कैसे ना कैसे कर ही लेता था।
0: क्या मालूमात कर पाते होंगे भला, पार्टी के इनर सर्कल में तो आप कभी रहे नहीं।
2: ऐसा है सर जी, इनर सर्कल वालों के अलावा किसी को नहीं मालूम था क्रांतिकारी नाम से छपा वो येलो पंपलेट किसकी कारस्थानी थी। पुलिस यही समझती रही कि पूरी पार्टी के लोगों ने मिलकर उसे तैयार किया होगा, मगर असलियत यह है कि ऐसे बिना किसी से सलाह मशवरा किए एक ही शख्स ने तैयार किया था। और वो थे सचिंदा सचिंद्रनाथ सान्याल।
0: ये जो चार जगह डाके डाले गए, इनके बारे में कुछ बता सकते हो?
2: चारों डकैतियां पार्टी ने डाली, एक में तो मुझे भी ले गए थे।
0: अच्छा, कहाँ और ले गए थे का क्या मतलब?
2: बिजपुरी वाले डकैती में मैं बीच बीच में इन लोगों से यूं ही ऊपरी मन से कह दिया करता था, अरे भाई हमें भी तो किसी एक्शन में हिस्सा लेने का मौका दो। अब हमें क्या पता था ले ही जाएंगे ससुरे, लेकिन इस एक वारदात के अलावा मैं किसी और डकैती में शामिल नहीं हुआ।
0: ओहो, तो आप बिजपुरी डकैती में शामिल थे। अच्छा, अदालत को ये बताइए उसमें कौन कौन शामिल थे और क्या क्या हुआ था?
2: अब देखिए सुनिए, शुरू से बताता हूँ। हुआ ये कि बमरौली में डाका डालने के बाद एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने मुझे कुछ सोने और चांदी के जेवर थमा दिए और कहा कि इन्हें गलवा लाओ। मैंने गलवा दिए, वो सोना चांदी बाद में बेचा भी गया। ये बात है सन 1924 की, क्रिसमस के बाद की। हाँ, साल भर भी नहीं बीता था कि एक दिन फिर बिस्मिल ने मुझसे कहा, भाई फंड्स की जरूरत है, कहीं ना कहीं डाका डालना पड़ेगा। मैंने पूछा कि भाई हमने जो जेवर गलवा बेचे थे वो सारी रकम कहाँ गई? तो बोले उस पर्चे क्रांतिकारी की छपाई वगैरह में खर्च हो गई। खैर, बिजपुरी में टोटी कुर्मी के घर में डाका डाला गया। बिस्मिल, अशफाक उल्ला, मनमत नाथ, रामकिशन खत्री, ये सब शामिल थे। 10-12 ऐसे भी लोग थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा। वो इसी इलाके में लूटमार करने वालों में से एक थे जिन्हें मदद के लिए शामिल किया गया था साहब।
0: तो बनारसी बाबू, दिगर डकैतियों के बारे में क्या जानते हो?
4: ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह से बाकी तीन डकैतियों के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते। सच हियरसे इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस।
3: दैट विल बी सीन आफ्टरवर्ड्स, लेट हिम कंटिन्यू।
2: धन्यवाद सर जी। बिजपुरी से पहले बमरौली गांव में डकैती की वारदात बलदेव नाम के एक साहूकार के घर पर अंजाम दी गई। इसमें बिस्मिल, अशफाक उल्ला, मनमत नाथ, रामकिशन खत्री, इन सबके अलावा ठाकुर रोशन सिंह ने भी हिस्सा लिया था। वहां मोहन पहलवान नाम का आदमी मारा गया। इसके बाद एक डाका द्वारकापुर में डाला गया। फिर काकोरी वाली ट्रेन में डकैती हुई। इसे भी बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक, मनमत नाथ मुकंदी, जोगेश चटर्जी, ये सब थे। इन्हीं सब ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया था।
0: अच्छा, ये बताओ कि काकोरी वाली डकैती के बारे में और क्या जानते हो?
2: बहुत कुछ। अब कैसे बताएं साहब, इस डकैती के बाद अशफाक ने मुझे बताया कि एक गड़बड़ हो गई। गोविंद चरण कार अपनी चादर ट्रेन में ही छोड़ आया। बाद में वो चादर पुलिस ने बरामद की और लालता धोबी की शिनाख्ती पर गोविंद कार गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे मालूम है डकैती की तैयारी के लिए कुछ लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला में रुके थे। मुकंदी लाल वगैरह करीब ही कश्मीरी होटल में रुके थे। यहाँ मुकंदी ने एक बड़ी बुरी हरकत की साहब। एक तो होटल की बुकिंग झूठे नाम से करवाई, वो भी मेरे नाम से, जबकि उस रोज होटल क्या मैं लखनऊ शहर में ही नहीं था।
3: ऑर्डर ऑर्डर।
0: अच्छा, वहाँ कुछ हथियारों की शिनाख्त की थी?
2: जी हाँ, बिजपुरी डकैती में जो राइफलें इस्तेमाल हुई थी उन्हें मैंने राजकुमार सिन्हा मुलजिम के कमरे में पहचाना था। इसके अलावा अनुद्दीन साहब मजिस्ट्रेट को मैंने बिजपुरी की वो सारी जगह भी दिखाई जिनका ताल्लुक उस डकैती से था।
0: आखिर में ये बताइए कि इस रिवोल्यूशनरी पार्टी में सबसे ज्यादा किसकी बात मानी जाती है?
2: राम प्रसाद बिस्मिल की। पूरी पार्टी ही इनके सहारे पर चलती थी, समझिए ये साहब पार्टी के रिंग लीडर थे। हालांकि अशफाक ने ये बात मुझसे नहीं कही, लेकिन मुझे मालूम है आखिर तक वो इनसे कहते रहे, राम ट्रेन डकैती से कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय नुकसान के, इसका इरादा छोड़ दो। कितनी दलीलें दी, कितना समझाया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। ये हजरत तो एक बार जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। कोई साथ आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक।
0: योर विटनेस मिस्टर पंत।
4: बनारसीलाल, तुमने बताया रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल होने से पहले शाजापुर कांग्रेस कमेटी के तुम सेक्रेटरी थे, फिर कांग्रेस पार्टी तुमने खुद छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया?
2: अरे हमने खुद ही इस्तीफा दे दिया, भला हमें क्यों निकाला जाता?
4: क्योंकि तुम्हारी शराबखोरी की खबर पार्टी के नेताओं तक पहुंची, ये भी कि पार्टी के चंदे की भारी रकम तुमने शराब में बहा डाली।
2: अरे ये आप कैसे बोल सकते हैं, ये सब झूठ है साहब, अरे बिल्कुल झूठ है।
3: ऑर्डर ऑर्डर।
4: और इसके अलावा डकैती और लूटमार करने वालों का एक ग्रोह भी तुमने बना रखा था, सही है या झूठ?
2: झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठा इल्जाम है, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं।
4: और इसी सिलसिले में कई फौजदारी मामले भी तुम पर चले थे। कह दो, ये भी झूठ है?
2: अब मामले चले तो क्या, मुझे तो छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी होता रहा हूँ जनाब।
4: पुलिस की मेहरबानियों से, क्योंकि तुमसे बतौर मुखबिर पुलिस को रेवोल्यूशनरी पार्टी की अंदरूनी खबरें मिलते रहने की उम्मीद थी।
2: गलत, भला बताइए, हम और पुलिस की मुखबरी करते?
4: हाँ, और तभी गिरफ्तार होते ही आनन फानन में तुमने इकबालिया बयान दिया और मुखबिर बन गए। आज तुम एक मुखबिर की हैसियत से ही बयान दे रहे हो। खैर, बिचपुरी के अलावा जिन तीन डकैतियों के बारे में तुमने जो भी कुछ बताया, वो तुमने खुद तो नहीं देखा था?
2: खुद नहीं,
4: क्योंकि तुम उनमें शामिल ही नहीं थे।
2: हाँ, शामिल तो नहीं था।
4: तो जो तुमने बताया वो दूसरों से सुना था?
2: लेकिन एक एक बात सच थी।
4: हो सकता है तुम्हें यकीन हो, लेकिन अदालत सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। खैर, इस तरह पार्टी के अंदरूनी मामलों की भी तुम्हें कभी सीधी सीधी जानकारी नहीं रही?
2: नहीं, मतलब रही थी जानकारी।
4: जो तुमने दूसरों से सुनी थी, सही? क्योंकि बकौल तुम्हारे ये लोग अंदर की बातें तुम्हें कभी बताते नहीं थे ना।
2: अब ये बात तो थी, फिर भी
4: इधर उधर से पूछकर ही तसल्ली कर लेते होगे।
2: अब और क्या कर सकते थे।
4: सही है, ठीक है बनारसी लाल, अब आप जा सकते हैं।
3: कॉल द नेक्स्ट विटनेस।
0: योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के अगले गवाह हैं मिर्जा अहमद शाह।
2: मेरा नाम मिर्जा अहमद शाह है। जिस रात काकोरी के करीब डकैती का वाकया हुआ, मैं उसी ट्रेन में सफर कर रहा था।
0: आपके साथ कोई और था?
2: जी हाँ, अहमद अली वकील थे, जो अपनी बेगम के साथ लखनऊ जा रहे थे। उनकी बेगम जनाना डब्बे में थी।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर काकोरी से ट्रेन कुछ ही दूरी पर चली होगी, अचानक रुक गई। बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। कोई आदमी चिल्ला चिल्ला कर मुसाफिरों को खबरदार कर रहा था, अपनी जगह से कोई ना हिले, हम किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ सरकारी रुपया ले जाना हमारा मकसद है, वगैरह वगैरह। अब हम सब तो सख्ते में आ गए, तभी किसी औरत के चीखने पुकारने की आवाजें सुनी। गालिबन वकील साहब की बेगम रही होंगी। हाँ, वकील साहब एकदम बेचैन हो उठे और बाहर जाने लगे। मैंने और दीगर लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। अरे भाई रुक जाइए, बाहर ना निकलिए, गोलियां चल रही हैं, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन एक तो जवान खून, ऊपर से नई ब्याहता की पुकार, रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। या अल्लाह, कहने लगे मेरे होते बीवी पे आँच आए और मैं डर के बैठा रहूं, नामुमकिन। देखता हूँ एक एक को अभी, कह के उतर गए डब्बे से।
0: इसके बाद क्या हुआ?
2: होना क्या था जनाब, आ गए गोलीबारी की चपेट में।
4: आपने देखा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ही कांट आस्क सच अ लीडिंग क्वेश्चन।
3: आई डोंट थिंक सो, आफ्टर ऑल द विटनेस हैज टू बी आस्क्ड एज व्हाट यू ऑब्जर्व।
0: थैंक यू योर ऑनर, द विटनेस हैज हिमसेल्फ सेड आ गए गोलीबारी की चपेट में। नेचुरली आइदर ही मस्ट हैव और मस्ट नॉट हैव सीन इट।
5: ही सॉ नथिंग। मिर्जा जी तो कमिटल कोर्ट में ही खिड़कियां बंद कराए।
3: Mr. Mulla, repeat your question.
0: Your Honor, वकील साहब आपके सामने डब्बे से बाहर चले गए, इसके बाद क्या हुआ?
2: बात का कुछ पता नहीं जनाब, सबने फटाफट खिड़कियां जो बंद कर डाली थी।
3: Oh, खिड़की बंद करने के बाद नहीं देखा? Okay, लेकिन पहले तो देखा होगा।
2: गाड़ी बीच जंगल में थी, गोप्पू अंधेरा था, बस कभी कभी कोई चिंगारी सी नजर आ जाती थी, फूटती हुई गोलियों की, बस।
4: वकील साहब बेगम को बचाने चल दिए क्या खाली हाथ?
2: सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा लाइसेंसी राइफल रखते थे अपने साथ, दौड़ से लोड किया और कूद के बाहर। मैं चिल्लाता रहा, अरे मियां सेफ्टी लॉक तो लगा लेते हैं, लेकिन वो जनाब कहां सुनते हैं हमारी।
4: ओहो, तो बंदूक तो आप भी रखते होंगे?
2: 33 स्प्रिंगफील्ड हॉलैंड एंड हॉलैंड है जनाब, लेकिन लोड करते ही सेफ्टी लॉक पहले लगा लेते हैं। हाँ, वैसे अमूमन साथ लेकर नहीं चलते हम। हाँ,
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात तो बताइए, सुना है अगर लॉक ना हो तो लोडेड गन भी बड़ी खतरनाक होती, कहीं पैर वैर फिसल जाए या गन किसी चीज से टकरा जाए, दौड़।
2: तब तो जिसके हाथ में है उसी का काम तमाम कर सकती है।
4: सही कहा आपने। अच्छा वकील साहब, की लाश का पोस्टमार्टम तो हुआ होगा?
2: नहीं साहब, उस अफरा तफरी में होश कहाँ था किसी को।
4: उनकी राइफल तो पुलिस ने जब्त कर ली होगी।
2: हाँ साहब बेशक, वो तो रख ली पुलिस ने, लाश भी डॉक्टरी के बाद हमें सौंप दी, कफन दफन सब हम ही ने कराया।
0: वाह पंत साहब वाह, मान गए आपको, आपने तो कमिटल कोर्ट में खिड़कियां बंद करा दी, यहाँ उनकी बंदूक उन्हीं के हाथों चलवा भी दी और अपनी ही गोली से शहीद भी करवा दिया, गजब करते हैं आप।
3: कॉल द नेक्स्ट विटनेस।
6: ब्रह्मा सिंह हाजिर हो।
7: मेरा नाम ब्रह्मा सिंह है, सीआईडी में एसआई की पोस्ट पर हूँ। 31 सितंबर 1925 को मेरठ के वैश्य अनाथालय में रेवोल्यूशनरी पार्टी की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। एसपी हाटन साहब ने उस मीटिंग में शामिल होने वालों पर नजर रखने की मेरी ड्यूटी लगाई थी। पुलिस ने फेरू सिंह कांस्टेबल भी मेरे साथ किया था। 13 सितंबर को मैं अनाथालय के मैन गेट से निगरानी कर रहा था।
0: अच्छा इंस्पेक्टर साहब
7: जी,
0: तो आपने वहाँ कुछ देखा?
7: वहाँ मैनेजर विष्णु शरण दुबलिश शाम के वक्त 7 लोगों के साथ क्वार्टर से बाहर आए और करीब घंटा डेढ़ घंटा बाद फिर उसी क्वार्टर में लौट गए। दूसरे दिन सवेरे ये लोग क्वार्टर से बाहर निकल कर चले गए।
0: अच्छा ये बताओ
7: जी,
0: क्या विष्णु शरण दुबली से इस वक्त यहाँ मौजूद है?
7: जी हाँ।
0: अच्छा और जिन 7 लोगों को तुमने देखा था उन्हें भी पहचान लोगे?
7: जी हाँ। हाजिर अदालत, मुलजिम विष्णु शरण दुबलिस वही शख्स है जिसके क्वार्टर में उस रोज हाजिर अदालत मुलजिमान राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, दामोदर स्वरूप सेठ, रामकिशन खत्री, बनवारी लाल, मनमथनाथ, सचिन बख्शी वही लोग हैं जिन्हें उस रोज वहां देखा था।
0: ये लोग वहां क्या कर रहे थे?
7: खुफिया मीटिंग कर रहे थे सर। इसी खुफिया मीटिंग में इन सब ने मुख्तलिफ डाके डालने की साजिश रची थी।
6: साजिश रचे जाने की बात कैसे कह सकते हो तुम?
7: एसपी हाटन साहब ने ऐसा ही बताया था।
3: ऑर्डर ऑर्डर।
6: देखो ब्रह्मा सिंह, लखनऊ से पहले तुम्हारी पोस्टिंग अलग अलग देहाती इलाकों में होती रही थी।
7: जी हाँ।
6: लखनऊ आने से पहले सीआईडी ने भी तुमसे कभी कोई काम नहीं लिया था।
7: हाँ साहब।
6: मेरठ केस ड्यूटी से करीब 20 दिन पहले ही लखनऊ भेजे गए थे ना तुम?
7: सही है।
6: इससे पहले इन क्रांतिकारियों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी?
7: मुझे कोई जानकारी नहीं थी।
6: ना तो इन्हें नाम से जानते थे और ना शक्ल से?
7: नहीं साहब, नाम तो बता दिए थे कप्तान साहब ने।
6: जरूर बताए होंगे, लेकिन तुम किसी को शक्ल से नहीं जानते थे क्योंकि ऐसा मौका कभी आया नहीं था। ठीक है ना?
7: ठीक है साहब, मगर फेरू सिंह मेरे साथ था ना।
6: अच्छा अच्छा, तो फेरू सिंह ने तुम्हें बताया, तुम खुद किसी को नहीं जानते थे राइट?
7: अब फेरू सिंह कुछ को जानता था।
6: कुछ को मतलब क्या?
7: कुछ को।
6: और किस किस का नाम बताया था उसने तुम्हें?
7: याद नहीं साहब।
6: ना फेरू सिंह किसी को जानता था और ना तुम। अभी जिन जिन के नाम बताए हैं जाओ उन्हें छू छू कर नाम बताओ।
7: जी जी।
6: नहीं बता सकते। सच तो यह है कि तुमने इनमें से किसी को वहां नहीं देखा। अफसरों के दबाव में झूठा बयान दे रहे हो तुम। ठीक या गलत?
7: जी जी।

0: अभी आप आजादी के मुकदमे श्रृंखला में काकोरी कांड पर केंद्रित कार्यक्रम की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सुधा अनुपम। ये कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किया गया।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहना ही नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल,
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे, कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं, कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए, कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा। जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं, जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया।
2: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
2: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
4: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
2: श्रोताओ, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
4: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
4: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
2: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा कर

0: कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
1: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
0: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
0: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
1: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
0: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
1: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
0: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
1: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
0: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
1: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने, अवधी व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधी का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
1: बिल्कुल,
0: जबकि अवधी में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
1: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
1: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
1: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदू का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
1: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं, उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: जी हाँ, श्रोताओ, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
1: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
1: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
1: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
1: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक
1: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
1: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
1: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
1: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
1: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारे प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सागर की डॉक्टर रचना श्रीवास्तव का लेत गायन।

लेत शास्त्रीय संगीत वो कठिन विधा है जो भिन्न भिन्न तालों में गाई जाती है। अब आपके समक्ष एक ताल में राग यमन कल्याण पर लेत।

0: बहुत ही सधी आवाज में एक ताल में आपने राग यमन कल्याण प्रस्तुत किया और अब प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में झूला।
1: झूला प्रस्तुत कर रही हूँ।

घिर आए बदरा, इतनी मोहक प्रस्तुति डॉक्टर रचना श्रीवास्तव के द्वारा। और अब ये प्रस्तुत करने जा रही हैं होली गीत।

सावन का महीना है और सावन में कजरी सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। रचना जी की अगली प्रस्तुति कजरी।

बहुत मोहक प्रस्तुति आपने प्रस्तुत की हरदौल गीत के माध्यम से, और अब प्रस्तुत करने जा रही हैं सावन गीत।

बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी रही और बुंदेलखंड में तीज त्यौहार और शुभ अवसरों पर गाया जाने वाला बधाई गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं।

0: बहुत ही मोहक दिलकश प्रस्तुति हमने सुनी डॉक्टर रचना श्रीवास्तव से।
1: तो श्रोताओं, ये थी प्रस्तुति डॉक्टर रचना श्रीवास्तव के लेत गायन की। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार

घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अस्य वामस्य पालितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यम विष्पतिम सप्तपुत्रम। इन सुंदर एवं जगपालक होता सूर्यदेव को हमने सात पुत्रों सप्तवर्णी किरणों सहित देखा है। इन सूर्यदेव के मध्यम भाई सर्वव्यापी वायुदेव हैं। उनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ वाले अग्निदेव हैं। सप्त युञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभि चक्र मजरमनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुहु। एक चक्र वाले रथ से ये सातों जुड़े हैं। सात नामों वाला एक अश्व इस चक्र को चलाता है। तीन द्युलोक अंतरिक्ष एवं पृथ्वी नाभियों अथवा धुरियों वाला यह कालचक्र सतत गतिशील अविनाशी और शिथिलता रहित है। इसी चक्र के अंदर समस्त लोक विद्यमान है। इमं रथमधि ये सप्त तस्थु सप्त चक्रम सप्त वहन्त्यश्वाः सप्त स्वसारो अभिसम नवन्ते यत्र गवाम निहिता सप्त नाम। इस सूर्य देव के पोषण चक्र से जुड़े यह जो सात अयन ऋतु मास पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त हैं, यही सात चक्र अथवा सात अश्वों के रूप में इस रथ को चलाते हैं। जहां वाणी में सात नाम सात स्वर छिपे हैं, ऐसी सात बहनें स्तुतियां इसकी वंदना करती हैं। को ददर्श प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुप गात प्रष्टुमेतत्। जो अस्थि रहित होते हुए भी अस्थि युक्त का पालन पोषण करते हैं, उन स्वयंभू को किसने देखा। भूमि में प्राण रक्त एवं आत्मा कहाँ से आए, इस संबंध में पूछने के लिए कौन किसके पास जाता है। पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्देवाना मेना निहिता पदानि वत्से बश्कयेधि सप्त तन्तून्वि तत्निरे कवय कोतवा उ। अपरिपक्व बुद्धि वाले हम देवताओं के इन गुप्त पदों के संबंध में जानने के लिए मनोयोग पूर्वक पूछते हैं। सुंदर युवा गोवत्स के लिए ये विज्ञ सप्त तंतुओं को कैसे फैलाते हैं। अचिकित्वांचि कितुषश्चिदत्र कवीन पृच्छामि विद्मने न विद्वान् वि यस्तस्तंभ षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। जिसके द्वारा इन छहों लोकों को स्थिर किया गया है वह अजन्मा प्रजापति रूपी तत्व कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हम तत्ववेत्ताओं से निश्चित स्वरूप की जानकारी के लिए यह पूछते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बु त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
0: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुभ संध्या, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

मधुर वाणी की शक्ति कठोर परिस्थितियों को भी सरल बना देती है। जहाँ सम्मान और संवेदना होती है, वहाँ संबंध लंबे समय तक बने रहते हैं।

ज्ञान का दीपक है जो जितना दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है, स्वयं उतना ही अधिक प्रकाशमान होता जाता है। इसलिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन, अनुशीलन और विश्लेषण के लिए वहां की पुरा संपदा और प्राचीन पौराणिक ग्रंथ व साहित्य आधारभूत सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसमें साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को उसके ऐतिहासिक संदर्भों और मूल रूप में जांच परख कर सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की शुद्धता उसकी भाषा पर गंभीर विवेचन होता है कि नकल के दौरान कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। प्राच्य विद्या के ऐसे ही एक गंभीर अध्येता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो प्राच्य विद्या के एक युगांतरकारी विद्वान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी चिंतकों से अप्रभावित रहकर उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा के बल पर स्थापनाएं प्रस्तुत कीं। 6 जुलाई सन 1837 को पश्चिमी भारत के रत्नागिरी जिले में स्थित मालवण में उनका जन्म हुआ। अरब सागर की लहरों से किलोलित ये समुद्री तट अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके पिता मालवण के तहसीलदार के यहाँ मुंशी थे। उन दिनों मालवण में अधिक स्कूल नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनकी आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। सौभाग्य से उनके पिता गोपाल भंडारकर का तबादला रत्नागिरी के राजस्व विभाग में हो गया। रत्नागिरी में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1853 में रामकृष्ण भंडारकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। यहाँ उन्हें दादा भाई नौरोजी जैसे प्रतिभावान शिक्षक मिले, जिन्होंने उनके सोच और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को जागृत और पोषित किया। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि होते हुए भी संस्कृत और पाली भाषा में विशेष अध्ययन किया। इसके कारण उन्हें भारत के गौरवमयी अतीत के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। सन 1862 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पहले बैच के छात्र के रूप में पास की, फिर वहीं से एमए की परीक्षा भी पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम आए थे। कुछ समय तक सिंध के हैदराबाद और रत्नागिरी के राजकीय विद्यालय में वो हेडमास्टर रहे। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में व्याख्याता के पद को सुशोभित किया। आगे चलकर पूना के डेकन कॉलेज में संस्कृत के पहले भारतीय प्रोफेसर बने। अब पूना ही उनके अध्ययन और गवेषणा का केंद्र बना, जहां उन्होंने अपने सपने साकार किए और इतिहास में शोध की उच्चतम परंपराएं स्थापित कीं।

15 जनवरी सन 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसके माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार पर विधिवत अध्ययन प्रारंभ किए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। इन संस्थाओं ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संग्रहण और संरक्षण का काम शुरू किया। 1821 को पूना में डेक्कन कॉलेज की शुरुआत हुई। इस संस्था को पेशवा द्वारा प्रदत्त धनराशि से संचालित किया जाता था। मूलतः संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए स्थापित इस संस्था में बाद में अंग्रेजी, पुरातत्व, समाज विज्ञान और इंडोलॉजी विषय जोड़े गए। डेक्कन कॉलेज में रामकृष्ण भंडारकर लगभग 13 वर्ष तक प्रोफेसर रहे। यहीं से उन्होंने भारतीय पौराणिक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया। पुरातत्व विषय में उन दिनों विद्वानों को अधिक रुचि नहीं थी। ऐसे में रामकृष्ण ने पाली, मागधी, प्राकृत आदि भाषाओं का विधिवत अध्ययन करके उनके प्राचीन ग्रंथों की खोज और अनुसंधान का काम शुरू किया। प्राकृत भाषाओं की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर शिलालेख, ताम्रपत्र और ताड़पत्रों पर उपलब्ध साहित्य पर काम आरंभ किया। वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े यूरोपीय विद्वान साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत की ज्ञान संपदा का आकलन कर रहे थे। इसके उलट रामकृष्ण भंडारकर ने संस्कृत और पाली भाषा के ज्ञान के सहारे 4000 वर्षों के भारत के गौरव साहित्य के हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित करता था, जो आगे गवेषणा के काम में आते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संकलन का महत कार्य रामकृष्ण भंडारकर को सौंपा। उन्होंने गहन शोध और परिश्रम से 5 विशाल खंडों में ये कार्य पूरा किया। ये ग्रंथ पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं। 1883 में रामकृष्ण भंडारकर को वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके अध्ययन की गंभीरता और विश्लेषण से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें CIE के सम्मान से विभूषित किया गया। ये फ्रेंच सम्मान विश्वव्यापी सहकारिता तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और योगदान के लिए दिया जाता है। लंदन में आयोजित ओरिएंटल स्टडीज के सम्मेलन में भी पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अध्ययन और स्थापनाओं की बहुत प्रशंसा की। एक शिक्षाविद के रूप में सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य के रूप में नामित किया। सन 1911 में भी उन्हें सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया।

रामकृष्ण भंडारकर एक पुरातत्ववेत्ता और शिक्षाविद के साथ साथ उच्च कोटि के चिंतक और समाज सुधारक भी थे। बंगाल के ब्रह्म समाज की तर्ज पर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के आधार रूप में धार्मिक सुधारों की वकालत की। अपने विशद अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही सुधारों का विरोध करते हैं, ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। सन 1885 में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक वामन अबजी मोडक और न्यायमूर्ति राणा डे के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने पूना में लड़कियों के लिए पहला देसी हाई स्कूल खोला। हुजूर पगा के नाम से ख्यात इस स्कूल का पाठ्यक्रम प्रगतिशील सोच पर केंद्रित था। रामकृष्ण भंडारकर कई उल्लेखनीय ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने हेतु उन्होंने दो पाठ्य पुस्तक रची। बॉम्बे गजेटियर के लिए उनका योगदान दक्षिण भारत का इतिहास बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सन 1876 में उन्होंने भवभूति के मालती माधव पर टीका लिखी, जो बहुत सराही गई। अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तरीके से अन्वेषित दक्षिण के सातवाहन के अलावा वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का उन्होंने पुनर्लेखन भी किया। वे ऐसे स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के आलोक में हिंदू धर्म और दर्शन को परिभाषित किया। सन 1872 में आरंभ हुई भारतीय पुरावेत्ता शोध पत्रिका में उन्होंने कई निबंध लिखे, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के लिए किया गया उनका काम भी महत्वपूर्ण है। वे इसके आरंभिक सदस्य थे। अपनी बौद्धिक यात्राओं में वे कई बार पश्चिम के विद्वानों से सैद्धांतिक बहस में उलझे और अपनी मान्यताओं को सही ठहराया। महाभारत और पतंजलि का काल निर्धारण भी उन्होंने ही किया। महाभारत के 1.5 लाख शब्दों का विवेचन और व्याख्या भी उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इतिहासकार के भीतर वकील जैसी जिरह करने की प्रवृत्ति का विरोध किया और न्यायाधीश जैसी निष्पक्ष कठोरता पर बल दिया। उनका मानना था कि इतिहास का वर्णन उसी रूप में होना चाहिए जैसा वो वस्तुतः था। भारतीय प्राच्य साहित्य के इस महान विद्वान का 24 अगस्त सन 1925 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में पुणे में स्थापित भंडारकर शोध संस्थान आज भी ज्ञान का पथ आलोकित कर रहा है। प्राच्य विद्या के ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी मंदिर।
3: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूँ आपके साथ भारती। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंदिर आज हम सुनेंगे।

मातृ प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है वो सब मिथ्या है, निसार है। मातृ प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माँ का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें नहीं खोली थी। कभी वो उसे गोद में उठा लेती तो कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये कोई नहीं बता रहा था। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ होती है। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे नहीं ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का पारवार नहीं था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ था बस यही बालक था। हाय रे नियति, क्या ईश्वर ने इसे भी इसकी गोद से छीन लेना चाहा है? ये कल्पना करते ही माँ की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। इस बालक को वो क्षण भर के लिए भी अकेले न छोड़ती। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद में ही होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सारी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठे रहना, अम्मा मैं घास बेच आऊंगा। तब माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता। अपने लिए बहुत सारा गुड़ लाना चाहता था। बस वो ही भोली भाली बातें याद कर करके माता के हृदय शूल हो रहे थे। जो भी बालक को देखता यही कहता, किसी की ढीठ नजर लग गई है। पर किसकी ढीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई बैरी हो सकता है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पे गिर जाती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से नहीं पिघल जाता? पर नाम तो कोई नहीं बताता ना, अब किससे पूछे वो? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनोती करे? इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है? उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। और ये कहकर वो चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अरे पतिदेव आए थे? इसमें सुखिया को जरा भी संदेह नहीं था। उन्हें अब मेरी सुध है, ये सोचकर उसका हृदय आशा से भर गया। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गईं। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, हे भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो प्रभु। और उसी समय जियावन की आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा। माँ ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पिया और धीरे से कहा, अम्मा रात है कि दिन है? सुखिया बोली, बेटा अभी तो रात है, तेरा जी कैसा है? जियावन ने कहा, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। सुखिया बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है, कुछ लाऊं? जियावन ने कहा, हाँ अम्मा थोड़ा सा गुड़ दे दो। गुड़ मत खा भैया, अवगुण करेगा, कह तो खिचड़ी बना दूं? सुखिया ने बड़े प्यार से कहा। जियावन ने कहा, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दे, तेरे पैर पड़ूं। माता इस आग्रह को नहीं टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी छोड़कर वो किवाड़ खोलने गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही।
उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, दो एक बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमजोलियों के साथ उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया है, दो एक दिन में जब पैसे हाथ आ जाएंगे तो एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारी, नहाने धोने, खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तो सुखिया घबरा गई। तुरंत मन में शंका हुई, पूजा में विलंब करने से ही लगता है मेरा बालक मुरझा गया। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था, बच्चे को लिटा कर वो पूजा की तैयारी करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए, तुलसी दल द्वार पर था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान चाहिए था, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए था ना। सारा गांव छान आए, किसी ने पैसे नहीं दिए, उधार तो दिए ही नहीं। अब वो हताश हो गई, हाय रे दिन, कोई चार आने देने को तैयार नहीं। आखिरकार उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ पड़ी बनिए की दुकान पर। कड़े गिरवी रख दिए, बतासे लिए और दौड़ी दौड़ी घर आ गई। पूजा का सामान तैयार हो गया था, बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में अभी भी आरती का घंटा बज रहा था, 10-5 भक्तजन स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने आवाज लगाई, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदारों के आसामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे, मंदिर में ही भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तकारी काली पड़ रही थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी नहीं डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो उसमें उनका कोई दोष नहीं था। पुजारी जी बोले, तो क्या भीतर चली जाएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर परभ्रष्ट मत कर। तब एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी जी ने कहा, कैसी बेसमझी की बात कर रही है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है तू? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर नहीं मिला था और वो आश्चर्य से बोली, सरकार, वो तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जात हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी ने जोर से कहा, अरे तू चर्मकार है। तो सुखिया ने भी कहा, तो क्या भगवान ने चर्मकारों को नहीं सिरजा है? चर्मकारों का भगवान कोई और है क्या? इस बच्चे की मनौती है सरकार, मुझे करनी है। इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपट कर बोले, मार के भगा दो इसको, भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो इसकी थाली वाली, संसार में तो आप ही आग लगी हुई है, चर्मकार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी, रसातल में चली जाएगी। दूसरे भक्त ने भी ईश्वर में स्वर मिला लिया, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चर्मकारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा, अब तो प्रलय होने में कोई कसर नहीं।

ठंड बढ़ रही थी। सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जा रहा था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि दोनों पांव भूमि में पड़ गए हों, गड़ गए हों। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर जाए। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का इनसे कोई नाता नहीं, ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर ये भय होता कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली फेंक दी तो क्या करूंगी, दिल में ऐठ कर रह जाती। अचानक उसे एक बात सूझी। वो वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्त जनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के बाद भक्त जन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठकर हूं हूं करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियां भी कर रहे थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्तों ने राह ले ली, पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुद्धा वर्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई, देखा सुखिया खड़ी है। चिढ़कर बोल दिए, क्यों तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज मैं अभागिन, यही बालक मेरे जीवन का आलम है, दया करो प्रभु, 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज। और ये कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु थे, पर चर्मकार को ठाकुर जी के सामने जाने का घोर पातक वो कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें, आखिरकार उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश न कर दें। तो उन्होंने बोला, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, मैं तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब भला होगा। सुखिया ने कहा, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने नहीं दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया हूँ, उधार लेकर पूजा की सामग्री जुटाई है, मैंने कल सपना देखा था, ठाकुर जी की पूजा कर ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, दौड़ी दौड़ी आई हूँ प्रभु, मेरे पास 1 रुपया है, वो मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों में गिर जाने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में अभी भी बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना नहीं देखते, सुना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन में भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पे गिरे कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपए में दूंगा, उसे तू ना अपने बच्चे के गले में बांध देना, बस देखना फिर कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया अपनी बात पर अड़ी रही, मतलब ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? पुजारी ने कहा, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है, जो बात है कभी नहीं हुई, वो आज मैं कर दूं और गांव पर कोई आफत विपत हो गई तो क्या करूंगा, तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में बच्चे का क्लेश कट जाएगा, किसी की ढीठ पड़ गई है भी तो चोचला सा, मालूम होता है छत्तरी बंस है। सुखिया ने कहा, जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नहीं है, क्या करूं? तब पुजारी ने कहा, बड़ा होनहार बालक है तेरा, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा, यहाँ तो बहुत खेलने आता था, बस 1-2 दिन से नहीं देखा था, तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज, मैं कपड़े में बांध कर देता।

सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया। जैसे जैसे रात गुजरती उसका ज्वर बढ़ता जाता, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। वो घबरा उठी, हाय मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों में गिर जाती तो कोई मेरा क्या कर लेता? यही ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा तो मनोरथ पूरा होता ना। अगर मैं ठाकुर जी को अपने आंसुओं में भिगो देती तो बच्चे को जिला लेती, वो तो दयामय भगवान है ना, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पे दया नहीं करेंगे? ये सोचकर सुखिया का मन अधीर हो गया। उसने सोचा, अभी भी विलंब नहीं हुआ है, वो जरूर जाएगी और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोएगी। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढककर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कप गया, शीत से पांव शिथिल हो रहे थे, चारों ओर अंधकार था, रास्ता 2 फरलांग से कम नहीं था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखर था और कुछ दूर बांस की कोठियां, बाईं ओर हरे भरे खेत थे, चारों ओर सन सन हो रही थी, अंधकार साए साए हो रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद करे सो रहे थे। सुखिया चबूतरे के नीचे से ईंटा उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। 2 ही 3 चोट में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाकर बाहर निकल आया और चोर चोर करके शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लेकर निकल कर आ गए, कहाँ है चोर, कहाँ है? पुजारी जी ने बोला, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी थी। सहसा देखा कि सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर गई भी नहीं, हल्ला मचाए पड़े हो। पुजारी ने कहा, अरे बाप रे, सब अनर्थ हो गया, सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई है। कई आदमी झल्लाए लपके सुखिया पर लात घूसों की मार पड़ी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़ी थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वो रोया नहीं, न बोला और न सांस ली। सुखिया भी गिर गई, संभलकर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वो खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। क्रोध की ज्वाला से वो तमतमा उठी, आंखों से अंगारे बरसने लगे और दोनों मुट्ठियां बंध गईं। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चों के प्राण लेकर दूर खड़े हो, मुझे भी क्यों नहीं उसी तरह मार डालते? मेरे छून लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई, पारस को छूकर लोहा सोना होता है, पारस लोहा नहीं हो जाता, मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे, मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी, लो कभी ठाकुर जी को छूने नहीं जाऊंगी, ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। किसी ने छू तक नहीं की, कोई मिनमिनाया तक नहीं, पाषाण मूर्तियों की भांति सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा और मुंह से निकला, हाय रे मेरे लाल, और मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। बच्चे के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। सच, माता तू धन्य है, तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा और तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंदिर। और अब दीजिए मुझे अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी मंदिर। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर सुन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ये
2: जुड़े रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
1: रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र विजयकांत नायक।
3: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की।

0: कला कललिनी में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक साज का ही पर्याय बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने एक वाद्य को शादियों के मंडप से निकालकर शास्त्रीयता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: सुना आपने श्रोताओं, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये बनारस की सुबह की पहली अंगड़ाई है। ये उस शख्स की फूंक है जिसने पत्थर के बुतों में भी जान डाल दी। आज हम किसी इंसान की नहीं, जैसे एक इबादत की बात कर रहे हैं। आज जिक्र है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का।
0: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उन्होंने एक ऐसे वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया जिसे कभी केवल मांगलिक कार्यों या शादियों तक सीमित समझा जाता था। शहनाई, जो कभी महलों की द्योड़ी पर बजने वाला एक मामूली सा साज हुआ करता था, उस्ताद की जादुई फूंक से वह शास्त्रीय संगीत की रानी बन गया।
1: जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान महज एक संगीतकार नहीं थे, वे भारत की उस मिली जुली संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे, जहां मजहब की दीवारें संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले शहनाई सिर्फ शादियों में या महलों के गलियारों में ही बजती थी, लेकिन इस जादूगर ने उसे महलों की ड्योढ़ी से उठाकर सात समंदर पार ओपेरा हाउस तक पहुंचा दिया।
0: तो चलिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर सुरों की स्याही बिखरी है। बात करते हैं उस फकीर की जिसकी फूंक में खुदा का नूर था, एक ऐसा कलाकार जिसने शहनाई को शादियों के शोर से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल की इबादत बना दिया।
1: आज हम सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं कर रहे, आज हम भारत की उस साझी तहजीब की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जिसने नमाज भी पढ़ी और माँ सरस्वती की आराधना भी की।
0: श्रोताओं, अक्सर लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बनारस का समझते हैं, हालांकि बनारस में उनकी रूह जैसे बस्ती थी, पर उनकी जड़ें बिहार के डुमराव की मिट्टी में हैं। 21 मार्च 1916 के दिन पैगंबर बख्श खान के घर खुशियां आईं। जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का।
1: हाँ, और नाम का किस्सा तो इतना मशहूर है कि आज भी लोग उसे चाव से सुनते हैं। उनका नाम तो कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उस मासूम को देखा तो उनके कानों में जैसे कुदरत ने कुछ कहा। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह,
0: और बस वो लफ्ज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। श्रोताओं, मानती भी है और पूछती भी है। उनके पूर्वज भोजपुर की रियासत के दरबारी संगीतकार थे, यानी शहनाई उनके पालने में ही रख दी गई थी। संगीत उनके लिए कोई शौक नहीं बल्कि विरासत था। उनकी माँ मिठन बाई ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनके पिता पैगंबर बख्श खान और दादा रसूल बख्श खान दोनों ही डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी संगीतकार थे, तो उनके दादा और पिता ने उनका परिचय संगीत के स्वरों से कराया और बिस्मिल्लाह हुआ जैसे एक महानता के सफर का।
1: लेकिन वो विरासत, वो तालीम निखरी बनारस के घाटों में और मंदिरों में, और जहां वो महज 6 साल की उम्र में अपने मामा के पास चले आए। उनके मामा थे अली बख्श विलायती, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह को उस्ताद बिस्मिल्लाह बनाया। उनकी तालीम महज स्वरों की पहचान नहीं थी, एक तपस्या थी। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश, माँ उन्हें गंगा किनारे बालाजी मंदिर के पास ले जाकर बैठा देती। वहां घंटों तक सा का रियाज होता, यानी घंटों तक सिर्फ एक ही सुर का अभ्यास।
0: जी हाँ, आज भी संगीत में यही तो कहते हैं उच्च कोटि के गुरु, एक सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं। और फिर वो बंदिश भी तो शास्त्रीय संगीत में आज भी बहुत गाई जाती है, साधे प्रथम सुर। उनके मामा का कहना था सुर को गले से नहीं रूह से निकालो। मामा का सख्त निर्देश था, बेटा जब तक तुम्हारी शहनाई से निकलने वाला सुर पत्थर को ना पिघला दे तब तक रियाज मत छोड़ना। श्रोताओं, वो अक्सर कहते थे कि रियाज के दौरान उन्हें बालाजी मंदिर में एक अजीब सी खुशबू आती थी, उन्हें महसूस होता था कि साक्षात भगवान उनके सुरों को सुन रहे हैं। इसी सादगी और यकीन ने उन्हें एक कलाकार से उठाकर एक सूफी बना दिया। वो मंदिर की शांति और गंगा की लहरों के बीच बस संगीत के व्याकरण को नहीं, संगीत की रूह को आत्मसात कर रहे थे।
1: लेकिन श्रोताओं, वो सिर्फ एक गंभीर शिष्य नहीं थे, एक चंचल बच्चे भी थे। डुमराव के बिहारी जी मंदिर में वो चेता गाते थे, और पता है इनाम क्या मिलता था? 1.25 किलो का लड्डू। वो अक्सर फक्र से कहा करते थे कि उस 1.25 किलो के लड्डू की मिठास के आगे उन्हें दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड फीके लगते हैं। और कई बार तो वो सोन नदी के किनारे जाकर कानों में कंकड़ डाल लेते थे ताकि बाहर का शोर बंद हो जाए और सिर्फ अंदर की धुन सुनाई दे। वाकई क्या कमाल का इश्क था खान साहब को संगीत से।
0: 1937 में कोलकाता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शहनाई बजाई तो संगीत जगत के दिग्गज दंग रह गए। उससे पहले शहनाई को शास्त्रीय संगीत के योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कठिन साधना से साबित कर दिया कि शहनाई में भी वे सभी बारीकियां और जटिलताएं पैदा की जा सकती हैं जो सितार या सरोद में होती हैं। उन्होंने राग रागनियों को शहनाई पर उतारा और उसे एक नया गौरव प्रदान किया।
1: आइए अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के जीवन के उन गहरे पहलुओं को विस्तार देते हैं जो उन्हें एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक युग पुरुष बनाते हैं। यहां जानते हैं उनके रागों की विशेषता, उनके प्रमुख शिष्यों और उनके जीवन के अनछुए बनारसी रंगों को। खान साहब की शहनाई में जो बात सबसे अलग थी वह थी उनकी मीड़, एक सुर से दूसरे सुर तक बिना टूटे पहुंचना और गमक। शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक कठोर वाद्य माना जाता था, लेकिन खान साहब ने उसे मानव कंठ जैसी कोमलता दी।
0: वे हर राग में निपुण थे, लेकिन राग भैरवी उनका प्राण था। कहा जाता है कि जब वे भैरवी बजाते थे तो सुनने वालों की आंखों से आंसू छलक आते थे। इसके अलावा राग बागेश्वरी, राग केदार, राग यमन और राग दरबारी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
1: खान साहब ने केवल शुद्ध शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि बनारस की लोक गायकी, ठुमरी, कजरी और चेता को भी शहनाई पर उतारा। उनके द्वारा बजाई गई चेता सुनकर ऐसा लगता था जैसे बनारस के किसी घाट पर साक्षात वसंत उतर आया हो। इसके साथ ही खान साहब को सर्कुलर ब्रीदिंग में महारत हासिल थी।
0: ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वे नाक से सांस लेते थे और मुंह से शहनाई में फूंक मारते थे। इससे संगीत का प्रवाह कभी टूटता नहीं था। वे बिना रुके कई मिनटों तक एक ही तान खींच सकते थे, जो फेफड़ों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण था।
1: जी हाँ, तभी तो वो रच पाए इतिहास, आजाद भारत की पहली आवाज बनने का। दोस्तों, इतिहास का वो पन्ना कोई कैसे भूल सकता है जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। पंडित नेहरू ने खास तौर पर खान साहब को दिल्ली बुलाया।
0: बिस्मिल्लाह खान साहब द्वारा लाल किले पर शहनाई वादन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी। तब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर आजादी का स्वागत किया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये इच्छा जताई थी कि बिस्मिल्लाह खान इस शुभ अवसर पर अपनी शहनाई बजाएं।
1: और इसके लिए बिस्मिल्लाह खान साहब को विशेष रूप से मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह घटना न केवल उनके संगीत करियर के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए भी एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने शहनाई को राष्ट्र की आवाज बना दिया।
0: बिल्कुल, आजाद भारत की सुबह का स्वागत किसी भाषण से नहीं बल्कि खान साहब की शहनाई से हुआ था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी छेड़ा था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना कि भारत की आजादी की गूंज शहनाई में बसी है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई दूरदर्शन पर गूंजती रहती है।
1: श्रोताओं, जब उनकी शोहरत बढ़ी तो फिल्मों के दरवाजे भी खुले। 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। निर्देशक विजय भट्ट तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने फिल्म का पूरा प्लॉट ही शहनाई के इर्द गिर्द बुना। उनका बजाया गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया आज भी लोगों को रुला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी खान साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की, जिनमें से एक दक्षिण भारत की थी, कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे फिल्मों की बनावटी दुनिया पसंद नहीं, वहां संगीत बिकता है और यहां संगीत जिया जाता है। उन्हें स्टूडियो की बंद दीवारों से ज्यादा गंगा का किनारा और खुला आसमान पसंद था। उनके लिए संगीत व्यापार नहीं बल्कि खुदा की इबादत थी। उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए सिर्फ अपनी सादगी और सुकून के लिए। तभी तो वो शहनाई के शहंशाह कहलाए।
0: उनकी सादगी का एक मशहूर किस्सा है कि वे अक्सर फटी हुई लुंगी पहन लेते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा आप इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पगलो मालिक से सुर मांगो, कपड़े नहीं, ये लुंगी तो रफू हो जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो उसे कोई रफू नहीं कर पाएगा। यह उनकी महानता का परिचायक था।
1: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उनके बनारसी मिजाज की। उस्ताद का व्यक्तित्व पूरी तरह से बनारसी था। उनके जीवन में दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था।
0: उन्हें बनारस की कचौरी, जलेबी और खास तौर पर मलाई और बनारस की एक खास मिठाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर अपने घर के पास वाली दुकान से खुद नाश्ता मंगाते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। वे सुबह गंगा में स्नान करते थे, सरस्वती मंदिर में माथा टेकते थे और फिर मस्जिद जाकर नमाज अदा करते थे। वे कहते थे, सुर ही मेरा अल्लाह है और सुर ही मेरी सरस्वती।
1: और श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा अवस्था में खान साहब को कुश्ती का भी बहुत शौक था। वे पहलवानों का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अखाड़ों में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। खान साहब शुरू में विदेश जाने से बहुत डरते थे, उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए कहा तो उन्होंने कई बहाने बनाए। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे और मेरी पूरी टीम को सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने शर्त मान ली और जब वो एडिनबर्ग पहुंचे तो वहां के अखबारों ने लिखा, ये संगीत नहीं खुदा की आवाज है।
0: और फिर इसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो 1967, कांस आर्ट फेस्टिवल 1969 और ओसाका ट्रेड फेयर 1970 जैसे बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में तो आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन इतनी शोहरत और धन मिलने के बावजूद उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। वे ताउम्र बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से मकान में रहे। खान साहब शायद भारत में अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चारों शीर्ष नागरिक सम्मान प्राप्त किए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंत में 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।
1: लेकिन इतने पुरस्कारों के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो अक्सर बनारस में साइकिल रिक्शा पर घूमते हुए मिल जाते थे। एक बार एक विदेशी फैन ने उनसे कहा, खान साहब आप अमेरिका चलिए, मैं आपके लिए वहां पूरा बनारस बना दूंगा। और खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब सब तो ले आओगे पर मेरी गंगा मैया को वहां कैसे लाओगे? उनके लिए गंगा का पानी और बनारस की मिट्टी किसी स्वर्ग से बढ़कर थी।
0: अक्सर कहा जाता है श्रोताओं कि एक कलाकार की असली पहचान वो नहीं जो वो खुद कहे, बल्कि वो है जो उसके समकालीन दिग्गज उसके बारे में कहें। और खान साहब के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले थे। सितार सरताज पंडित रविशंकर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शहनाई को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक लाने का पूरा श्रेय सिर्फ बिस्मिल्ला खान को जाता है। उन्होंने इस साज को एक नई इज्जत बख्शी है।
1: और सिर्फ संगीतकार ही नहीं, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी तो उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खान साहब की शहनाई में जो दर्द और मिठास है वो किसी इंसान की फूंक नहीं बल्कि खुदा का नूर लगता है। और आपको पता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं, खान साहब का संगीत व्याकरण नहीं बल्कि कविता है, वे सुरों से चित्र बना देते हैं।
0: जी हाँ, पश्चिमी दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन उनकी मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि वे अपने गिटार से वैसी ही कशिश पैदा करने की कोशिश करते हैं जैसी खान साहब की शहनाई में होती थी। यही उनकी महानता थी, चाहे वो पंडित नेहरू हों या बनारस की गलियों का कोई आम रिक्शे वाला। खान साहब सबके लिए एक समान थे। वे अक्सर कहते थे, सुर सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, लेकिन साथ ही वे माँ सरस्वती के परम भक्त भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की देवड़ी पर बैठकर शहनाई बजाना उनकी रोज की इबादत हुआ करती थी। वे कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया और सुर और ताल किसी सीमा या मजहब में नहीं बंधे होते ये भी बताया।
1: उस्ताद साहब के रिलीज संगीत एल्बम्स की अगर हम बात करें तो द मैजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान 1962, बिस्मिल्ला खान पंडित वी जी जोग के साथ 1962, राग बागेश्वरी राग सोहनी 1963, शहनाई रिसाइटल 1963, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेरियस रागास 1987 और मेघ मल्हार वॉल्यूम 1 1991 शामिल हैं।
0: इसके साथ ही उनके लोकप्रिय संग्रह द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान, प्लेटिनम वॉल्यूम 1 कजरी, द रेन राग 2016, शादी की शहनाई वॉल्यूम 1 एंड 2 1995, रूबरू वॉल्यूम 1 एंड 2 2004, इबादत रागिनी यामिनी लाइव एट द बार्बिकन सेंटर 1994। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए गए रागों में श्याम कल्याण और शंकरा बेहद शांत और आध्यात्मिक माने जाते हैं। उस्ताद के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनके घर में अक्सर 40 से 50 लोग एक साथ खाना खाया करते थे। वे एक संयुक्त परिवार के स्तंभ थे।
1: 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में इस महान संगीत साधक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बनारस में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रिय शहनाई को भी उनके साथ ही दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो आमतौर पर केवल बड़े राजनेताओं के लिए होता है। यह इस बात का प्रमाण था, वे एक संगीतकार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा थे।
0: बिस्मिल्ला खान साहब ने हमें सिखाया कि सच्ची कला बाजार में नहीं बिकती, वे साधना की कोख से जन्म लेती है। उनके शहनाई की गूंज आज भी हर भारतीय शादी की सुबह, हर मंदिर की आरती और हर मस्जिद की अजान के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। श्रोताओं, वे शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी दास्तां है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
1: शहनाई को अपनी बेगम कहने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की तान आज भी हवाओं में तैरती हुई महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने संगीत को इबादत बनाया और इबादत को संगीत। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि कला महज प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब तक गंगा की लहरें काशी के घाटों से टकराती रहेंगी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी गूंजती रहेगी।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जो आज केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाठक, आलेख संदीप शर्मा का था, वाचन स्वर विजयकांत नायक
1: और मैं डॉक्टर गौसिया।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आपको आज आपके बचपन की यादें ताजा जो होने वाली हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए कि आपको गली में पिट्ठू की आवाज आ रही है। लंगड़ी टांग खेलते हुए गिरने की हंसी, कंचे, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, बाप रे कितने सारे खेल हम बचपन में खेला करते थे, बिना स्क्रीन के, बिना पैसों के, सिर्फ दोस्ती और धूल मिट्टी से ये खेल खेले जाते थे। वास्तव में श्रोताओं, ये खेल सिर्फ खेल नहीं थे, हमारी पहली टीम थी, पहली हार थी, पहली जीत थी, और यहीं से हमने सीखा नियम मानना, गिरकर उठना, टीम के लिए लड़ना। और आज उन्हीं मैदानों से निकले हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे सफल खिलाड़ी। लेकिन इन सफल खिलाड़ियों को आखिर हम कब से और कैसे जानते हैं? सोचिए, जिस तरह बचपन में गली का कमेंटेटर होता था जो चिल्लाता था आउट है आउट है और हमें मानना पड़ता था, ठीक वैसे ही आज के खेल पत्रकार हैं। श्रोताओं, हर साल 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं, ताकि हम उन सभी लोगों को सलाम कर सकें जो धूप में खड़े होकर रात रात भर जागकर हमारे लिए स्कोर तैयार करते हैं, खिलाड़ियों की कहानियां हमें सुनाते हैं। बचपन के खेलों ने हमें खिलाड़ी बनाया और खेल पत्रकारों ने उन खेलों को त्योहार बना दिया। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम भी हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं कलम के एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिना बैट बॉल के भी हर मैच खेलते हैं, प्रशांत सेंगर जी। आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार आपके श्रोताओं को और बहुत सारा धन्यवाद आपको जो आपने याद किया, आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में।
0: सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है तो हम इसे कब से मना रहे हैं?
1: इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन है
0: जी,
1: जो दुनिया भर के पत्रकारों को एक मंच दिया करते हैं
0: जी।
1: उसने लगभग 3 दशक पहले 1994 में डिसाइड किया कि विश्व पत्रकार दिवस या विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। दरअसल जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए हुआ करता है
0: जी जी।
1: बहुत लिमिटेड पाठक हुआ करते हैं, आप हर जगह देखिएगा बट जाएगा। आप अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन उठाएं, स्पोर्ट्स की मैगजीन उठाएं, तो उसके पाठक बहुत कम संख्या में होंगे
0: जी जी।
1: बाकी पत्र मैगजीन्स जो रहेंगी उसमें पाठक बहुत सारे होंगे
0: जी।
1: तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको 1-2 मिलेंगे किसी भी मैगजीन में, जबकि बाकी जर्नलिस्टों के लिए बहुत खुला आसमान रहा करता है। तो उनके लिए चैलेंज रहा करता है
0: जी।
1: उनको क्या सुविधाएं दी जाए, उनको क्या समझाइश दी जाए, उनके लिए कैसे मंच तैयार किए जाए, इसको लेकर इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन ने फाइनली डिसाइड किया 1994 में कि 2 जुलाई को इनके लिए ये विशेष दिन मनाया जाएगा।
0: सर, आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी के लिए आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?
1: देखिए, कोई भी दिन विशेष आपको ये तो महसूस कराता है कि ये कुछ खास चीज है, कुछ खास किस्सा है जिसको हम आज याद करेंगे
0: जी जी।
1: बहुत सारे दिन हम लोग मनाते हैं, कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं कि बताएं आप मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन याद कर लेते हैं। नहीं नहीं, उस दिन विशेष तौर पर आप सेलिब्रेट करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो खेल पत्रकारिता दिवस भी बाकी दिवस की तरह ही जताता है कि हम और ज्यादा संकल्पित हों खेल पत्रकारों के लिए, खेल पत्रकारिता के लिए, इस बड़े मंच के लिए और ज्यादा समर्पित हों, ये जताता है और उनकी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है
0: जी जी।
1: अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन बड़े आयोजन हुआ करते हैं जहाँ खेल पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है
0: जी।
1: उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है।
0: सर, आप एक खेल पत्रकार हैं, तो आप अपनी आंखों से देखें तो आने वाले समय में कौन से खेल को आप एक बिग स्पोर्ट्स के रूप में भविष्य में देखते हैं?
1: बहुत सारे खेल हैं जो बड़ी जगह पाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण खेल बन गया है पिछले कुछ दिनों से
0: जी,
1: वो है योग
0: जी जी।
1: आने वाले समय में ये दुनिया भर को चकित करने वाला है। योगासन को, योग को अपनाने के लिए अब 200 से ज्यादा देश आ गए हैं।
0: जी जी,
1: आप सभी जानते हैं 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया।
0: जी जी,
1: बहुत साधारण सी कोशिशें थी लेकिन असाधारण परिणाम सामने आए हैं। योग को हाथों हाथ लिया गया है।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी जीवन शैली को, आपके जीवन के भविष्य को बेहतर बनाता है।
0: जी जी,
1: और हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम है, ये सपना है।
0: जी,
1: बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है।
0: जी जी,
1: और बहुत सारी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं योग कवर करता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप हुई थी।
0: जी जी,
1: दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई गुजरात में। ये भारत में ही नहीं, अब बाकी देशों में भी आयोजित होने जा रहा है।
0: जी जी,
1: हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, ये पॉपुलर है, नो डाउट।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इन सब खिलाड़ी को ये भी अपनाना होगा, ये तय हो चुका है। जो योग करेगा वो और ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तो योग खिलाड़ियों के बीच में भी लोकप्रिय होने वाला है।
0: जो योग करेगा वो निरोग रहेगा निश्चित रूप से। और आपने जैसे कहा कि हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। और हम कहते हैं कि खिलाड़ियों को ही क्यों, एक सामान्य व्यक्ति को भी योग अपनाना चाहिए।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल। अच्छा सर, स्टेडियम में बैठकर मैच को देखना और टीवी पर देखना, एक रिपोर्टर के लिए क्या कुछ अंतर लगता है आपको, एक रिपोर्टर के रूप में अगर हम आपसे पूछे तो?
1: हाँ, अंतर तो आता है, लेकिन चूंकि जरूरतें अब बहुत अलग हो गई हैं। पहले हम लोग अगर वर्ल्ड कप कवर करने की सोचते थे तो हमें पर्टिकुलर उस कंट्री में जाना होता था। लेकिन कैसे आप इतने सारे संसाधन पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए आप खर्च करेंगे, जुटाएंगे? उससे बेटर ये होगा कि अब जैसे ऑफ ट्यूब कमेंट्री शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: अब आप दिल्ली में बैठकर लंदन की कमेंट्री किया करते हैं, वहां की रिपोर्टिंग किया करते हैं।
0: जी,
1: कोशिशें बढ़ानी पड़ती हैं, वहां से आप चीजें हासिल कीजिए, वहां के रिपोर्टर्स की मदद लीजिए, वहां मौजूद जो संवाददाता है उनकी मदद लीजिए, खिलाड़ियों की डिटेल निकालिए। अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, पर्टिकुलर उनकी साइट्स चला करते हैं। अगर आप अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप चल रहा है,
0: जी जी,
1: महिला वर्ल्ड कप में देखेंगे कि किसके बीच कौन सा मैच है,
0: जी,
1: कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने घर बैठे, अपने स्टूडियो में बैठकर सिंपली एक लाखों का काम सैकड़ों रुपए में संपन्न कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो देश के संसाधनों के लिए, आपके चैनल के संसाधनों के लिए
0: जी
1: बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशें बढ़ा दें, आप अपने स्टूडियो से बड़े मैच, बड़े इवेंट कवर कर सकते हैं।
0: अच्छा सर, बचपन के खेलों को और आज का जो आईपीएल है या वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो आपकी नजर में इन दोनों खेलों में एक जैसा क्या आपको लगता है जो अभी भी एक जैसा है, बचपन के खेल में और आज के वर्ल्ड कप में?
1: आनंद बहुत छुपा है।
0: आनंद है, क्या बात है।
1: दरअसल खेल जो है ना,
0: जी,
1: हम शुरू से ये मानते आए हैं कि बच्चे को बिजी रखना है तो हम बोलते थे जाओ खेलो, जाके बाहर खेलो।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को आपको खुश करना है तो चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं।
0: हाँ।
1: खेल आपके मन की खुशी से जुड़े होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, वो खूबसूरत ज्यादा होता है, तो मन को बड़ा आनंद दिया करता है। क्रिकेट बहुत जेंटलमैन गेम है।
0: जी जी,
1: 5-5 दिन के मैच हुआ करते थे, 5-5 दिन लोग खेला करते थे। पहले एक दिन का गैप भी हुआ करता था, एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, विश्राम का दिन हुआ करता था। 5 दिन के मैच में मतलब 6 दिन का मैच हुआ करता था क्रिकेट का। बहुत शिद्दत से लोग देखते थे उसको, लेकिन देखने वाले कम थे। आज एक नन्ना बच्चा और किचन में रोटी बनाने वाली गृहिणी भी बार बार पलट कर आती है कि रोहित का स्कोर कितना हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आनंद छुप गया उसमें, वो जो छुपा आनंद था दरअसल, वो आनंद उसमें पैदा हो गया है। जो जेंटलमैन गेम लिमिटेड लोगों के लिए था, फुटबॉल पहले कहाँ होता था, कहाँ जाते थे, टीवी पे कभी आता भी था तो सेमीफाइनल फाइनल मैच दिखा दिया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एटलीस्ट पहले तो टीवी भी नहीं था।
0: आज
1: टेलीविजन है, आज सैटेलाइट व्यवस्था है, आज सारी चीजें हैं, हमने उनमें रंग बहुत ज्यादा भर दिए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तो और अगर आप विज्ञापन देखेंगे तमाम सारे चीजों के, विज्ञापन भी इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि कुछ लोग मैच के साथ साथ विज्ञापन देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इतना खूबसूरत इन सारी चीजों को बना दिया गया है। मैं शिकायत करने वालों से ये चीज जरूर कहूंगा कि किसी भी चीज को कलरफुल बनाने के लिए की गई जो कोशिशें हैं ना, उनको आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से शिकायत ना करें कि यार खेल को अलग कर दिया है, रंग ज्यादा भर दिए हैं, विज्ञापन ज्यादा भर दिए हैं। खेल को वही कलरफुल बनाते हैं, और जितना खूबसूरत कलर होंगे, जितना सारा रोमांच होगा, उतना खेल में आनंद छुपा होगा।
0: बिल्कुल,
1: और आनंद तो ही चाहिए।
0: वो जो आनंद है खेलों का, वो अब आम जन में आ गया है कि जैसे गृहिणी में, छोटे बच्चे में।
1: आप विश्वास कीजिए, आप ऐसी कोई महिला देख के बताइए, एटलीस्ट आप गांव में जाएंगे, क्योंकि टीवी वहां पर भी है,
0: बिल्कुल
1: वहां भी जाएंगे तो आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में लोग पूछने लगेंगे। अगर आप दिल्ली से आए हैं तो पूछ लेंगे, आपने विराट कोहली का देखा है क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो चीजें अब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि जो चीज हमें गिल्ली डंडा में मजा दिलाती थी 4-5 साल की उम्र में, आज IPL, वर्ल्ड कप क्रिकेट, T20 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के मैचेस,
0: जी जी,
1: मतलब गजब का एक जो प्रचार तंत्र है, जो टीवी है, इसने बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। नो डाउट कॉमेंट्री हम लोग किया करते हैं, बहुत रोमांच पैदा किया करती है, लेकिन उसमें 4 चांद लगा दिए हैं आज के प्रसारण ने, आज के एफर्ट्स ने।
0: अच्छा सर, जैसे खेल पत्रकारिता का अपना एक महत्व है जो हम अपने स्तर पर समझ सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि खेल जो है वो अब आम जन तक अपना प्रसार

0: माइंड होता है, जो व्यक्ति होता है, जो विषय होता है, उससे थोड़ी सी कहीं खिलवाड़ कर जाता है, उससे बचना चाहिए। स्पोर्ट्स लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा देखिएगा कि किसी ने मेडल जीता, सारे पत्रकार एकदम उसके पास पहुंच गए, उसे सांस लेने का मौका दिया नहीं है, एटलीस्ट बाकी जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगला जो इवेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, खेल का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं से मुश्किलों में आता है। तो पत्रकारों को ये सोचना चाहिए, खेल का अभ्यास, खेल का माहौल, खेल की जरूरत, इनको विचलित किए बगैर अपने काम को इस तरीके से करें कि खेल भी आगे बढ़े और उनका काम भी पूरा हो जाए। एक किस्सा आपको बताता हूँ। पटियाला में एक इवेंट कर रहा था मैं, नेशनल इवेंट थी एथलेटिक्स की, उसमें 400 मीटर का एक विनर था, पंजाब का ही था मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, 400 मीटर का विनर था। तो मेरे पास, चूंकि मैं टीवी के लिए कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे पास ऊपर से मैसेज आया, इसको लाइन अप कीजिए, लाइव लेते हैं इनको, चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था उसने। मैं पहुंचा उसके पास तो उसको सीने में दर्द हो रहा था, तो उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही थी, डॉक्टर्स वगैरह पास में थे। तो वो बोले, सर प्लीज सर हमें 2-4 मिनट दे दीजिए। मैंने डन है, 2-4 नहीं, आप 20 मिनट लीजिए, हमारा प्रसारण सेकंड है, हमारा इंटरव्यू सेकंड है, जिनका स्वास्थ्य सबसे मस्ट है। तो वो मुझे दिमाग में, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फिर बोला कि प्रशांत जी आप कर नहीं रहे इंटरव्यू, डिले हो जाएगा, फिर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का स्प्रिंट आने वाला था, 200 मीटर के विनर को हम देखेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि सर हम खिलाड़ियों के लिए आए हैं, खिलाड़ी परेशान है, उसको तकलीफ है, वो अस्वस्थ है, ऐसे समय में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये हर एक की जवाबदारी बनती है, कोई खिलाड़ी कोई खेल अगर कहीं परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि उसको विचलित करना है।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छा किस्सा आपने हम सबके साथ साझा किया है। कहीं ना कहीं एक इंसानियत का भी स्वरूप दिखाता है हमें कि खेल के साथ में मानवीयता जो है वो भी साथ साथ चलती है, और पत्रकारिता के महत्व को, पत्रकार के व्यक्तित्व को ये और ज्यादा उभारती है। सर भारत की बात करें तो भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कौन सा संगठन करता है?
0: राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर प्रदेश में, हर शहर में पत्रकारों का अपना एसोसिएशन है। लेकिन इसकी जरूरत अब और बढ़ती दिखाई देती है। मुझे लगता है खेल पत्रकारों के लिए थोड़े और प्रयास होने चाहिए।
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकार होने के नाते क्या कुछ चुनौतियां होती हैं आपके लिए? खेल पत्रकारिता सिर्फ ग्लैमर है या ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है?
0: हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जितने शक्कर डालेंगे उतनी मिठास मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जितनी मेहनत करेंगे उतनी बेहतर रिपोर्टिंग होगी, उतना बेहतर आपका काम होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, खेल पत्रकार की जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप उस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत मेहनत होती है। एक सिंपल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है, वहाँ एक कलाकार आएगा, अपना परफॉर्मेंस देकर चला जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स आपको फ्री मिलेंगे।
1: जी जी जी,
0: बहुत सारे लोग और भी जानकारी देने वाले मिलेंगे, पर आप एक होते हुए खेल को, खिलाड़ी को बगैर डिस्टर्ब किए हुए वहां से बेहतर मटेरियल निकाल लें, वहां की सारी जानकारियां ले लें, पर्टिकुलर उस डे विशेष में क्या हो रहा है। जैसे अभी इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी भुवनेश्वर में, डेली की रिपोर्टिंग, वहां 5 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का 2003 का रिकॉर्ड टूटा है, तमाम सारे ऐसे रिकॉर्ड, तो वो सारी जानकारी इकट्ठी करना बगैर खिलाड़ियों को परेशान किए हुए, बगैर इवेंट को विचलित किए हुए आपको करनी है। ग्लैमर तो इतना है कि आप जब, सीधी सी बात है, अगर आप स्वयं इंटरव्यू अगर विराट का कर रहे हैं तो विराट का इंटरव्यू करना आपके लिए गर्व की बात तो होगी होगी, आपके संस्थान के लिए, आपके पेपर्स के लिए, आपके चैनल के लिए, अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। लियोनेल मेसी आए थे हिंदुस्तान, हर पत्रकार उनके पास था, पिछले साल आए थे वो। खिलाड़ियों से जुड़ना, खेल से जुड़ना, जो दुनिया भर में पॉपुलर है, ग्लैमर तो दिलवाते हैं, आपको बड़ा सम्मान दिलवाते हैं।
1: सर आपको क्या लगता है, खेल पत्रकार सिर्फ स्कोर ही बताते हैं या खेल की संस्कृति भी बनाते हैं?
0: खेल पत्रकार दरअसल एक तरह से समीक्षक हुआ करता है। हम जो डेली जो खबर पढ़ते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है। खेल समीक्षक एक अलग चीज हुआ करता है। दोनों की शैली अलग होती है, जो हुआ है उसे बता देना तो वो रिपोर्टिंग कहला जाएगा, लेकिन समीक्षक समीक्षा लिखेगा। जैसे भारत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, आपको दूसरे दिन खबर मिल जाएगी कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए, इतने रन कम रह गए और इतने रनों से फलानी टीम जीत गई। लेकिन उसके ऊपर दूसरा कॉलम साइड में आपको लिखा मिलेगा, वो समीक्षक का होगा।
1: जी जी,
0: उसको खेल किस तरीके से आगे बढ़ा, कहाँ टर्निंग पॉइंट था, कहाँ मिसिंग हो गया, क्या जरूरत थी, क्या पूर्ति नहीं हो पाई और क्या होना चाहिए,
1: जी जी,
0: ये सारी चीज एक समीक्षक लिखा करता है। तो दो तरीके का खेल पत्रकार का दायित्व हुआ करता है, एक सिंपल रिपोर्टिंग हुआ करते है खेल में क्या घटा
1: जी जी,
0: और ऐसा क्यों घटा ये बताने वाला समीक्षक हुआ करता है। तो दोनों की अलग अलग जवाबदारियां रहा करते हैं
1: जी,
0: लेकिन सच्चाई है दोनों बड़ी चैलेंजिंग हुआ करते हैं। एक भी गलती, अगर आपने किसी व्यक्ति ने 101 स्कोर किया है और आपने टाइपिंग में वो जीरो हटा दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
0: तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाहर से सब वेबसाइट से आता है, आप तो इजी भी है थोड़ा सा आज के दौर में। बीते दिनों में आज से अगर 40 साल पहले की पत्रकारिता देखें तो एक एक चीज हाथ से लिखी जाती थी,
1: हाँ।
0: अगर उसको टाइप भी कर रहे हैं तो आपका टाइपराइटर है उससे खबर जाती थी, तो कई बार वो जो शतक है ना
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: 10 रन में तब्दील हो जाता था
1: जी, जी, जी।
0: या विकेट उसने 5 लिए हैं या कोई ऐसा अंक है जो एक जैसा दिखाई देता है, तो गलती हो सकती है।
1: अच्छा सर, आपने बात की है तो हम आपसे अब खेल पत्रकारिता का इतिहास समझना चाहेंगे कि पहले क्या कुछ हुआ करता है तो जो अब नहीं होता है, या अभी क्या कुछ नया बनाया है।
0: इतिहास तो हर चीज का बहुत पुराना है, जब से इंसान अपने कामकाज में जुटा है तब से बात होने लगी। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि खबर अपने आप में क्या है
1: जी,
0: एक दूसरे की बात एक दूसरे से करना, जिसे हम चुगली भी कहा करते हैं, वो भी तो एक चल में खबर है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं कोई घटना घटी है, हम उस घटना को दूसरे को बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। उस घटना को बताने वाले कई बार बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिसको हम बोला करते थे ये तो बहुत अच्छा बोलता है, कि हम वहां से जा रहे थे, वहां से दो गाड़ियां आ रही थी, एक ने ब्रेक लगाया, एक ने साइड लिया, दोनों टकरा गई, उसमें एक आदमी घायल हो गया, दूसरे ने उसको उठाया, ये पूरी की पूरी उसने रिपोर्टिंग की।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसी तरह की चीजें हुआ करती हैं। अब ये धीरे धीरे जब आई है सारी चीज, अब चूंकि अब 1994 एक ऐसा सन दिखाई देता है जहां से ये दिवस प्रारंभ हुआ है,
1: जी, जी, जी।
0: इस तरह की तारीखें तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है मानव जब भी अपने कार्यकलापों में सामने आया है, वास्तव में वो रिपोर्टिंग होती रही, उसकी जानकारी मिलती रही, तो वो भी अपने आप में एक पत्रकारिता ही थी। हमारे जो सबसे बड़े पत्रकार कौन कहलाते हैं, नारद मुनि।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमारे जो सफल खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनकी कहानियां आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा रोचक रहेगा।
0: दरअसल इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है।
1: अच्छा,
0: ये आसान नहीं होता।
1: जी जी,
0: आपने बड़े बड़े एंकर्स देखे होंगे, बड़े समीक्षक देखे होंगे जो खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं,
1: जी जी,
0: खेलों के बारे में बताते हैं, तो आपको रिसर्च करना होता है
1: जी।
0: आजकल इंटरनेट बहुत मदद करता है, लेकिन सच्चाई आपको जांचने की बहुत जरूरत हुआ करती है। मुझे ध्यान है कि माही के ऊपर एक मैं स्टोरी कर रहा था, माही यानी MS धोनी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: मैं जिस मैगजीन के लिए लिखा करता था, ये 2012-13 की बात है
1: जी।
0: तो बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी पूछी, चूंकि रांची में मेरे मित्र भी रहते हैं, मैं वहां जाता रहता हूँ कमेंट्री के लिए
1: जी।
0: तो उनसे पूछा तो ऐसी चीजें मालूम पड़ी, जैसे माही को गुड़ की चाय बहुत पसंद है
1: जी जी।
0: माही किस तरीके से आगे बढ़े, कहाँ कहाँ उन्होंने मेहनत की, अब बाद में तो फिल्म आ गई, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में मैंने उनकी जब जीवन परिचय लिखा था उसमें लिखा था कि MS धोनी की जो कहानी है ना वो किसी फिल्मी नायक की कहानी के समान प्रतीत होती है। जैसे एक फिल्मी नायक संघर्ष से गुजरा है, उसका बचपन मुश्किलों में बीता है, फिर संकल्पित हुआ, मेहनत की, आगे बढ़ा
1: जी।
0: तो MS धोनी की कहानी ऐसी समझ में आती है कि इस पे तो एक फिल्म बन सकती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि 2 साल बाद
1: फिल्म आ गई जी जी।
0: और तब मैंने एक दोबारा आर्टिकल लिखा, पर्टिकुलर उस कॉलम को मैंने उस आर्टिकल में डाला, 2.5 साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी थी, और नीरज पांडे ने उन लाइनों को जैसे महसूस कर लिया। तो वो जो आप रिसर्च करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर आगे आपको बड़ा सम्मान दिलाती है।
1: बिल्कुल,
0: रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होता, ना आप लिख सकते हो ना कमेंट्री कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: आप कैसे बता सकते हो कि गावस्कर इतने बड़े बैट्समैन कैसे हुए। 1971 में गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन मारे थे, ये उनकी शुरुआती श्रृंखला थी
1: जी, जी।
0: दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया। पहले 4 टेस्टों में 774 मारना, पहली सीरीज में दोहरा शतक मारना, 4 शतक मारना, अब ये रिसर्च करोगे तभी मालूम पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर, एक पत्रकार होने के नाते हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव कस्बे के छोटे छोटे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने में खेल पत्रकार का क्या रोल होता है?
0: बड़ी भूमिका रहा करते हैं। देखिए, खेल पत्रकार सिर्फ ये समझें कि वो खेल पत्रकार ही है, ये पर्याप्त नहीं है। वो एक इंसान भी है, वो बच्चों को देखता है
1: जी।
0: वो प्रतिभाओं को देखता है, अगर उसके मन में मंशा है, इच्छा है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वो कोशिश करेगा। और मुझे तो लगता है खेल पत्रकारों को जवाबदारी उठानी चाहिए, जो खेलों की जानकारी रखते हैं, थोड़ा संबंध रखते हैं, थोड़े मंचों के बारे में जानते हैं, वो प्रतिभाओं को मंच दें। मैं चूंकि रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों को सबसे पहले बोलता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप रेडियो के स्टूडियो में जाएं, आकाशवाणी के स्टूडियो में जाएं, दूरदर्शन के स्टूडियो में जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बोलने का काम है। जब बच्चे दिखते हैं गली में खेलते हुए, मैं उनको बोलता हूँ आप स्टेडियम जाएं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको जो स्टेडियम का मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर है, मैं उनसे बात कराऊंगा। ये हर पत्रकार की जवाबदारी होती है और ये करना चाहिए उनको, तभी गांव कस्बे के लोग बाहर आएंगे। एमएस कहां से निकल के आए हैं, है ना? अगर वो आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बैक किया होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो पत्रकारों को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका और अदा कर सकते हैं।
1: सर, आपने अभी तक 4 ओलंपिक, 4 एशियन गेम्स, 4 कॉमनवेल्थ और साथ साथ हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर अप किए हैं, तो अब तक का कवर किया हुआ सबसे इमोशनल मैच कौन सा रहा आपका, और क्या कुछ चुनौती भी रही इस मैच को कवर करते वक्त?
0: मुझे ध्यान है नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप में कर रहा था, एक मैच था जहां इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
1: जी।
0: किसी को ये आइडिया नहीं था, एटलीस्ट मेरे प्रोड्यूसर को भी ये नहीं मालूम था कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चले जाएगा। और ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था।
1: जी जी।
0: भारत सेमीफाइनल में 1975 से पहुंचा ही नहीं था। और उस मैच में सब कुछ अनोखा घट रहा था
1: जी।
0: हमारा कमेंट्री बॉक्स जहां था उसके ऊपर जो छज्जा लगा हुआ था काफी आगे था, लेकिन इतना आगे नहीं था कि वहां से अगर पानी आए तो हम बच जाएं। इत्तेफाक से पानी आना शुरू हुआ, लाइव प्रसारण चल रहा था, पूरा देश सुन रहा था
1: जी।
0: इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, पानी जब बरसा तो वहां टेम्परेचर था उस समय 6-7 डिग्री, हम भीग रहे थे, लेकिन कमेंट्री करनी थी, हम खड़े हो गए उसके बावजूद हम भीग रहे थे।
1: क्या बात है।
0: वो कमेंट्री हमें करनी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मेहनत कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने सब टीमों के खिलाफ आधा दर्जन गोल मारे थे। भारत के खिलाफ पहला गोल हुआ था सेकंड हाफ में
1: जी।
0: पहले हाफ में हमने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका था, शुरू के 35 मिनट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 35 मिनट तक रोक लेना, और मेरे दिमाग में जो था वो मैंने बोला, तो बाद में बहुत सारे श्रोता या जानकार तो बोले ऐसा कैसे संभव है, भारत अपने मैच पहले ही हार चुका था, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशन भी उनको बताया मैंने कि इस तरीके से भारत सेमीफाइनल पहुंच सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हराना असंभव जैसा था, बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, लेकिन बरसते पानी में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला हाफ बराबरी पर रुक गया ऑस्ट्रेलिया को, मेरे लिए वो यादगार मैच था क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था
1: जी जी।
0: और भारत के लिए बरसते पानी में कमेंट्री कर रहा था
1: जी जी।
0: 6 डिग्री टेम्परेचर में, मैं अभी भी जब आपसे बात कह रहा हूँ तो वो समय याद आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: भारत ने पूरी जान लगाई, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से वो मैच जीता, लेकिन वो सारे जो गोल हुए थे वो सेकंड हाफ में हुए थे, भारत ने कड़ी टक्कर दी थी।
1: क्या बात है, आपसे बात करके खुद हमें भी रोमांच सा हो आया है
0: जी।
1: और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो है वहाँ इतने बड़े मंच पर साक्षी है उस मैच का। सर, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बच्चे बहुत समझदार हैं
1: जी,
0: बच्चे जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है
1: जी।
0: इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जानकारी रखें। पत्रकारिता एक साधारण जॉब नहीं है, उस पर खेल पत्रकारिता जो डेटा के ऊपर, जो आंकड़ों के ऊपर, जो खिलाड़ी के या खेल के पूरे करियर के ऊपर आपके काम को सामने लाता है, तो वहां आप गलत या भ्रामक
1: जी जी।
0: या अतिशयोक्ति नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: अगर सामने वाले ने 6 विकेट लिए हैं 19 रन देकर, तो आपको 19 रन देकर 6 विकेट ही लिखने होंगे। आप ये नहीं लिख सकते आम पत्रकार की तरीके से कि उन्होंने बहुत सारे विकेट ले लिए, जैसे हमारे यहाँ आता है ना
1: जी, जी।
0: बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां तो तादाद तय है, संख्या तय है
1: जी, जी।
0: तो आपके डेटा जो है वो सही हो, सही आकलन हो, हवा में बात ना हो, ये खेल पत्रकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है। ईमानदारी से काम करे, नो डाउट ये मंच आपको खूब सारा सम्मान देगा, और कहते ना अब तो खूब सारा पैसा भी दिया करता है।
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि हम कि कुछ और हम बहुत सारा आपसे जाने, लेकिन अब समय जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो श्रोताओं आज का दिन है उनके नाम जो हमारे जज्बातों को शब्द देते हैं, दुनिया भर के खेल पत्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। प्रशांत सिंगर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आज के दिन की हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं।
0: बहुत सारा धन्यवाद आपको, आपके संस्थान को, और बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में तमाम सारी ऊंचाइयां लेकर आए, आपके जीवन में एक नया संकल्प पैदा हो, ऐसे हम आपको बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: धन्यवाद सर, और आपने भी आज हमें इतनी सारी रोचक जानकारियां दी हैं, जो अनुभव हमसे साझा किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते हैं आमजन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के अतिथि प्रशांत सिंगर सर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: Lifts him into the onside on one knee. It's going, it's gone.
3: अभी आप सुन रहे थे विश्व खेल पत्रकार दिवस पर विशेष कार्यक्रम। विषय विशेषज्ञ थे प्रशांत सिंगर, और आपसे बातचीत की भगवती सक्सेना ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं गायन पर्व के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां गायन पर्व में 4 जुलाई को गायन की जुगलबंदी हुई। कलाकार थीं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।
1: बनारस घराने की कुछ खास कजरी, सावन, झूला, हिंडोला, ये सारी चीजें आपको पारंपरिक सुना रहे हैं जो हमको हमारे गुरु विदुषगेजर से मिली है। पहले मिश्र पीलू में कहनवा मानो राधा रानी, ये सारी रचनाएं काव्यात्मक दृष्टि से इतनी सुंदर होती हैं, बहुत अलग अलग भाव इसमें पाए जाते हैं। ये सारा हमारे क्या कहते हैं फोक म्यूजिक से आई हुई चीज़ें हैं जिनको उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत में अपनाया है लोगों ने, पर इसका मुख्य जो कहते हैं मुख्य गर्भ भाव जो है वो इसका काव्य है। तो राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है कि कहनवा मानो राधा रानी, बाहर बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप अंधेरी रहें, कृपया बाहर ना जाएं। ये सारे भाव चिरकालीन है, ये आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं ये। तो भले ही राधा रानी हो या मेरी 10 साल की बेटी हो, भाव वही रहे कि बारिश में ना खेलो, जल्दी से घर आओ। तो राधा रानी से दोनों प्रकार के निवेदन किए जाते हैं। एक हमारे ब्रज में एक रचना गाई जाती है, राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा। तो एक तरफ ये भी निवेदन है कि आ जाओ, बादल आ गए हैं, तुम झूलने को श्री राधे रानी को पधारो, किंतु यहाँ पे निवेदन है कि बाहर मत जाओ क्योंकि बिजली चमक रही है। तो दोनों प्रकार के निवेदन है, जाने का भी और न जाने का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: याद करो 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। कुर्बानी
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक महान विचारक, चिंतक, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्रोताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग राजनेताओं से अधिक राष्ट्र पुरुषों का युग था। इन विभूतियों में दलगत राजनीति और व्यक्तिगत कार्य सूचियों से ऊपर उठकर राष्ट्र के बृहत्तर हित में क्रियाशील रहने की अद्वितीय और अनुकरणीय क्षमता थी। जब भारत की संसद में स्वाधीनता संग्राम के महानायक और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तब उस पर अंकुश लगाने वाले महान नेता तीन ही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य जे.बी. कृपलानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किंतु इन तीनों में हर प्रकार से अग्रण्य थे डॉक्टर मुखर्जी। जहां उनके भाषण सदन में सूचना समृद्ध और प्रमाण प्रष्ट होते थे, वहीं उनकी अभिव्यक्ति में चुंबकीय सहजता रहा करती थी। श्रोताओं, हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप, और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोकसभा में प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक पारित किया, तो उसका तथ्यात्मक और भावनात्मक विरोध दर्ज कराने वालों में सबसे सशक्त वक्ता थे डॉक्टर मुखर्जी। उन्होंने सरकार पर निरंकुश दमन का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि ऐसा भीषण दमनकारी कानून तो केवल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के नाम से बनाया था। पंडित नेहरू ने उनके भाषण पर आपत्ति करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के राजनैतिक परिवेश की तुलना पराधीन भारत से करना कहां तक उचित है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैंने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के विरोध में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो पराधीन भारत की केंद्रीय असेंबली में रॉलेट एक्ट के विरोध में ना कहा गया हो, जिसमें न वकील, न दलील और न ही अपील वाली उक्ति शामिल थी। और इतना कहकर फिर डॉक्टर मुखर्जी ने सदन से कहा कि क्या उस महान देशभक्त राष्ट्र पुरुष का नाम बताऊं जिसने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और जिसका तत्कालीन भाषण मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन विधेयक के विरोध में पढ़ा था। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि उस महान नेता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर मुखर्जी की इस प्रमाण पुष्टि पर पंडित नेहरू आवक रह गए। श्रोताओं, हम आपको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आचार्य कृपलानी और डॉक्टर लोहिया का विरोध तो अपनी जगह था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी सही मायने में खरे नेता थे, क्योंकि वो देश के ऐसे विशाल समुदाय का सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व करते थे जो पंडित नेहरू की नीतियों से सहमत नहीं था। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर मुखर्जी सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष में गए थे। भारत की स्वाधीनता के बदले पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विशेष अनुरोध पर नेहरू जी मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने थे, लेकिन जब धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर 1950 में नेहरू लियाकत फैक्ट हुआ तो उसे बंगाल के 11 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात निरूपित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया था। उन्हीं के साथ एक और बंगाली मंत्री केसी नियोगी थे, जिन्होंने उनके साथ में ही इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन करके सन 1952 का पहला आम चुनाव लड़ा और इस प्रकार देश में द्विदलीय यानी कि दो दलीय प्रजातंत्र का सुपात्र करने की दिशा में बुनियादी योगदान दिया। उनका जनसंघ ही बाद में सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना।

0: को है।
1: और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 20 वर्ष की आयु में स्नातक पश्चात सन 1923 में लॉ की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे एक विचारक, चिंतक, शिक्षाविद और लोकप्रिय प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती ही गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1934 में जब ब्रिटिश शासन चरम पर था तब कलकत्ता कॉरपोरेशन के लॉर्ड मेयर बने। सन 1939 में मात्र 38 वर्ष की आयु में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्र से बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे। सन 1940 में हिंदू महासभा में शामिल हुए, जिन्ना की पाकिस्तान घोषणा तथा उनके प्रति कांग्रेस की नीति से असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मगर वो बातें डॉक्टर मुखर्जी की महान देशभक्त और दूरदर्शी राजनायक व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सांप्रदायिकता छू तक नहीं गई थी। उन्होंने सन 1941 से 42 में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के बृहत्तर राष्ट्रहित में हिंदू प्रतिनिधि की हैसियत से हक मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, जिसके नेता फजलुल हक ने जिन्हा के प्राक प्रस्ताव का समर्थन किया था। एक दमन अलग नजरिया रखते हुए भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए नेहरू मंत्रिमंडल में शिरकत की। उनकी चरित्रीय उदारता और राष्ट्रीय भक्ति की विलक्षणता को समझने के लिए स्वयं उनकी डायरी पढ़ना चाहिए, जो 1993 में लीक्स फ्रॉम ए डायरी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। सन 1942 में उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी हिंदू महासभा से भी असहमति जताई थी, क्योंकि उसने सन 1942 के आंदोलन का साथ नहीं दिया था। कार्यक्रम में वक्त है एक देशभक्ति गीत का।

यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दुखद निधन के विषय में बात करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद से वहाँ कुछ संवैधानिक विडंबनाएं थीं। उदाहरणार्थ वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक का जम्मू कश्मीर पर कोई दखल नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी इसे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के हित में नहीं मानते थे। बताते चलें हम आपको कि उस समय कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट सिस्टम लागू था। डॉक्टर मुखर्जी ने इसके विरोध में अगस्त सन 1952 में जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, या तो मैं कश्मीर को भारत का संविधान दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी ने अपनी जीवनी माय कंट्री माय लाइफ में डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर प्रकाश डाला है। वो लिखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लिए कूच किया। चूंकि उनके पास प्रवेश परमिट नहीं था जिसके वो विरोधी थे, इसलिए उन्हें 11 मई सन 1953 को पठानकोट पुल पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें श्रीनगर के बाहर एक मकान में नजरबंद किया गया। वहां वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और 23 जून सन 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनके निधन की परिस्थितियों पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का ये परिणाम अवश्य हुआ कि परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत के चुनाव आयोग और महालेखा परीक्षक के

श्रोताओं, ऐसा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी महान क्रांतिकारी की गाथा लेकर, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे दी दीजिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, और आज के शिल्पकार हैं विष्णु प्रभाकर। प्रस्तुति मनीषा चतुर्वेदी और वेणु बालन की।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। शब्दों के शिल्पकार लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा,
3: और मैं वेणु बालन।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: शब्दों के शिल्पकार में दोस्तों आज के शिल्पकार हैं पद्मभूषण विष्णु प्रभाकर।
3: शब्दों के शिल्पकार वह व्यक्ति जो शब्दों को कलह की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है और जो एक युग गढ़ता है, वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के संक में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक, नाटककार और उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर जी की। एक बड़े कद का साहित्यकार जिसमें सरलता का आकाश है।
3: विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। किसी की रचना को समझने के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक होता है। लेखक के जीवन और उनके जीवन की परिस्थितियों को भी जानना जरूरी होता है, ताकि लेखक की दृष्टि और दृष्टिकोण के संबंध में जानकारी मिल सके और उनकी रचनाओं को आसानी से समझा जा सके।
2: श्रोताओं, पद्मभूषण विष्णु प्रभाकर ऐसे ही साहित्यकार थे जिन्होंने अपने शब्दों की शक्ति से साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। वो केवल लेखक नहीं बल्कि मानवता, संवेदना और सामाजिक चेतना के सशक्त प्रवक्ता थे। उनकी लेखनी में जीवन का यथार्थ, मानवीय करुणा, राष्ट्रीय चेतना और नैतिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और साहित्य जगत में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। इसी कारण उन्हें शब्दों का शिल्पकार कहा जाता है।
3: विष्णु प्रभाकर हिंदी के उन बड़े और मूर्धन्य लेखकों में से हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत खुला, खरा और उदार था। सबको अपना, एकदम अपना बना लेने वाला। उनमें एक बड़प्पन था, सामने वाले की लघुता के बावजूद उसे अपने प्रेम से भरकर गले लगा लेने वाला। और वैसा ही खुलापन उनके साहित्य में है, जिसमें एक बेबनाव सादगी है तथा जीवन छल छल करता नजर आता है।
2: श्रोताओं, बहुत से लेखक इस भ्रम में जीते हैं कि कम लिखने में ही गौरव है, पर विष्णु जी उनमें से नहीं थे। लिखना उनके लिए आनंद भी था और जरूरत भी। लिखने से जो कुछ मिलता उसी से उनका जीवन निर्वाह भी होता था। प्रेमचंद की तरह उनकी लेखनी से भी मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी और वो अपने आसपास के जीवन की विसंगतियों और विरोधाभासों को जरूर देखते थे। जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसके अंगीकार के लिए उनकी लेखनी सदैव आगे रहती थी।
3: विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरपुर गांव में हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी धार्मिक विचारों से प्रेरित थे और उनकी माता महादेवी जी पढ़ी लिखी तथा आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध भी किया था। इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। वस्तुतः उनके नाम की भी एक कहानी है। बड़े भाई का नाम ब्रह्मा, उनका नाम विष्णु और उनके छोटे भाई का नाम महेश रखा गया।
2: प्यार से लोग इन्हें विष्णु दयाल या विष्णु कहकर पुकारते थे। प्राथमिक स्कूल में उनका यही नाम लिखाया गया था। जब वे अपने आर्य समाजी मामा जी के पास हिसार पढ़ाई के लिए भेजे गए तो आर्य समाजी स्कूल में नाम लिखाते समय अध्यापक ने उनका वर्ण पूछा और विष्णु प्रभाकर के वैश्य कहने पर अध्यापक ने कहा, तब तुम्हारा नाम विष्णु गुप्त होना चाहिए। 10वीं कक्षा तक उनका यही नाम रहा। आगे चलकर जब हिसार में 1929 के सरकारी दफ्तर में छोटे पद पर नौकरी शुरू करी तब उनका नाम विष्णु गुप्त से विष्णु दत्त कर दिया गया। बाद में एक सरकारी महकमे ने उनका नाम विष्णु प्रभाकर कर दिया। कालांतर में यही नाम स्थायी हो गया और वे इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए।
3: परिवार से मिले संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व और साहित्य दोनों को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही उनमें अध्ययन और लेखन के प्रति विशेष रुचि थी, लेकिन विष्णु प्रभाकर जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे वे आगे की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं कर पाए। अपनी घर की परेशानियों और जिम्मेदारियों के बोझ से उन्होंने स्वयं को मजबूत बना लिया। परिवार चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। उस समय उन्हें 18 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था।
2: नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी लगनशीलता और परिश्रम से शिक्षा जारी रखी और स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध बनाया। उन्होंने हिंदी प्रभाकर, हिंदी भूषण की उपाधियां तथा संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। प्रभाकर उपाधि के कारण वे विष्णु प्रभाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष्णु प्रभाकर जी ने जो डिग्रियां और उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया, वो उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था।
3: विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका पहला नाटक हत्या के बाद था। हिसार में उन्होंने नाटक मंडली में भी काम किया। 1947 के बाद वे दिल्ली आ गए। सितंबर 1955 में उन्हें आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1957 तक कार्य किया। 26 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्रीमती सुशीला जी से हुआ।
2: विष्णु प्रभाकर केवल कर्मठ और संवेदनशील ही नहीं थे, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी प्रसिद्ध थे। वर्ष 2005 में उन्हें राष्ट्रपति भवन में देवेंद्रनाथ सत्यार्थी से संबंधित एक घटना के कारण गहरा आघात पहुंचा, जिसके विरोध में उन्होंने पद्म भूषण सम्मान लौटाने की घोषणा कर दी। उनका मानना था कि लेखक का स्वाभिमान और आत्ममर्यादा उसकी सृजनशीलता को प्रभावित करते हैं।
3: रचनाकार की संवेदना सामाजिक सरोकार से जुड़ी होती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने सृजन कर्म को अपना सारा समय दिया। नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृतांत, कविता और बाल साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने 7 दशक लंबे साहित्य सफर में सैकड़ों कहानियों की रचना की। उनकी प्रमुख कहानियों का संकलन विभिन्न प्रसिद्ध संग्रहों में प्रकाशित हुआ है। आइए हम उनकी कृतियों से परिचित होते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां हैं
2: उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, क्षमादान, अर्ध नारीश्वर, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, निशिकांत, स्वराज्य की कहानी। कहानी संग्रह हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, क्षमादान, अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, निशिकांत, स्वराज्य की कहानी। यही नहीं दोस्तों, अभी आगे भी सुनिए। मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक कहानी का जन्म, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, सफर के साथी, खंडित पूजा, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, आपकी कृपा, एक और कुंती, जिंदगी एक और रिहर्सल, एक आसमां के नीचे, अधूरी कहानी, कौन जीता कौन हारा, तपोवन की कहानियां, पाप का घड़ा, मोती किसके।
3: यही नहीं, इसके बाद है हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, बंदिनी, सत्ता के आर पार, केरल का क्रांतिकारी, सीमा रेखा, युगे युगे क्रांति, गंधार की भिक्षुणी, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, इंसान, संघर्ष के बाद क्या वह दोषी था? हमारा स्वाधीनता संग्राम, सांप और सीढ़ी, एक कविता संग्रह भी थी, चलता चला जाऊंगा।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी ने जीवनियां भी बहुत लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख हम आपको बता रहे हैं, आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काका कालेलकर। संस्मरण में कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस तरह हैं, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थयात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मीत, समांतर रेखाएं, मेरे हम सफर, राह चलते चलते। निबंध में जन समाज और संस्कृति, एक समग्र दृष्टि, क्या खोया क्या पाया। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की बात करें तो ज्योति पुंज हिमालय, जमुना गंगा के नई हर में।
3: पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बाल साहित्य में थे मोटेलाल, कुंती के बेटे, राम की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी आदि। कुछ बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे, मोटेलाल, कुंती के बेटे, राम की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी आदि। इन्होंने बाल साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल कथा संग्रह में क्षमादान, गजनंदन लाल के कारनामे, घमंड का फल, दो मित्र, सुनो कहानी, हीरे की पहचान।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी को उनके साहित्य अवदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे मूर्ति देवी सम्मान, ये इन्हें अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, महापंडित, राहुल सांकृतायन पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे रचनाकारों के सहयोगी रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी पहली कहानी दिवाली की रात 1931 में हिंदी मिलाप में प्रकाशित हुई और यहीं से उनकी साहित्यिक सफर की शुरुआत भी हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपने सृजन कर्म में निरंतर सक्रिय रहे।
3: वे जीवन भर एक लेखक के सच्चे स्वाभिमान के साथ जिए। इसके कष्ट वे जानते थे, पर पूर्णकालिक लेखक के अलावा कुछ और उन्हें पसंद नहीं आया। सारी तकलीफें झेलते हुए भी वे लेखक थे, अपाद मस्तक लेखक। लेखक होने के लिए वे जन्मे थे। लेखक के रूप में वे हमेशा समाज में सार्थक हस्तक्षेप करते रहे और एक स्वाभिमानी लेखक के रूप में ही उनकी कीर्ति थी। वे जो कहते थे उसे कर दिखाते, केवल बातें करने वाले लेखक वे नहीं थे।
2: श्रोताओं, अपने साहित्य लेखन के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर कहते हैं, परिवेश से प्रभावित होकर भी मेरे सृजन का मूल स्वर मनुष्य की पहचान और शोषण से मुक्ति है। मैंने 4th दशक से लिखना शुरू किया था, जानबूझकर कोई प्रयत्न नहीं किया, पर जिस परिप्रेक्ष्य में मैं पला पनपा, वो मुझे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर ले जा सकता था, लेकिन मैं किसी दल या सिद्धांत का पक्षधर नहीं बन सका। स्वाधीनता से पूर्व स्वाधीनता से अवश्य जुड़ा था। मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, वो मूल्यों को परखता है और उनके आगे प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये उसकी नियति है। चूंकि वो संवेदनशील है और ये निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है, इसलिए वो किसी भी व्यवस्था का प्रचार मंत्री नहीं बन सकता।
3: विष्णु प्रभाकर के अनुसार साहित्य मानव आत्मा की बंधनहीन अभिव्यक्ति है। बंधन अगर है तो वह अपने विश्वासों का आंतरिक बंधन है, वह बाहर से आरोपित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की संवेदना जब मानव की संज्ञा में रूपायित होती है, तभी कोई रचना साहित्य की संज्ञा पाती है। साहित्य भाषा के माध्यम से संप्रेक्षित होता है, भाषा साहित्य को समाज से जोड़ती है, उसे सामाजिक बनाती है। पर साहित्य मात्र समाज का दर्पण नहीं है, वो समाज को समझने पहचानने की दृष्टि है।
2: विष्णु प्रभाकर के साहित्य में विषयों की विविधता है, उन्होंने जीवन को साहित्य और साहित्य को जीवन से जोड़कर देखा है। समाज उनके लिए महत्वपूर्ण रहा, व्यक्ति को भी उन्होंने अपनी संपूर्ण संवेदना के साथ देखा है, फिर भी वो समाज से अलग व्यक्ति को देखने और चित्रित करने के पक्ष में नहीं रहे। वो कहते हैं, जीवन और साहित्य दोनों को अलग अलग करके मानने की मेरी इच्छा नहीं है, जो सचमुच जीना चाहता है वही साहित्य का साध्य है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा में मेरा विश्वास है, लेकिन समाज से अलग व्यक्ति की कल्पना मैं कभी नहीं कर सकता।
3: विष्णु प्रभाकर सह अस्तित्व में अटूट विश्वास रखते थे। वे गांधीवाद से प्रेरित थे और गांधी जी की अहिंसा में उनकी आस्था थी। साहित्य सृजन के लिए उन्होंने दो बार सरकारी नौकरी छोड़ दी, जबकि दूसरी बार वेतन भी काफी अच्छा था। वे साहित्य सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे। वे साहित्य को समाज और युग से जोड़कर देखते थे, लेकिन मानवता में भी विश्वास रखते थे।
2: श्रोताओं, यही कारण था कि उन्होंने अपने साहित्य में शरदचंद के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया और बार बार वो आवारा मसीहा में उनका बचाव करते रहे। वो साहित्यकार की दृष्टि से व्यक्ति को देखते थे, सामाजिक किंवदंतियों के अनुरूप चरित्र को गढ़ते नहीं थे। यदि आप समग्रता में उनके साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन करेंगे तो ये देखेंगे कि उनमें मानवीय भावबोध, संवेदना, समाजोपयोगिता, करुणा, ईमानदारी, अहिंसा, ये सब भाव काफी प्रबल हैं।
3: विष्णु प्रभाकर ने नारी मुक्ति को भी संवेदनशील साहित्यकार के रूप में देखा है। वे साहित्यकारों की आपसी वैचारिक टकराहट को साहित्य के लिए बहुत शुभ नहीं मानते थे। नई कहानी के संदर्भ में वे कहते हैं, नई कहानी को लेकर जो अप्रिय संघर्ष नए हैं और पुराने लेखकों में पैदा हो गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अपने साहित्य के उद्देश्य और आदर्श के बारे में कहते हैं, यदि उद्देश्य जैसे चीज मेरे साहित्य में ढूंढनी ही हो तो वह उत्कृष्ट मानवता की खोज है। आदर्श मुझे वहीं तक प्रिय है जहां तक वह यथार्थ का संबल है। तात्पर्य यह है कि उनके लिए युग का यथार्थ महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि उन्होंने कभी किसी विचारधारा के अनुरूप अपने को ढालने या उसके अनुरूप साहित्य को लिखने की कोशिश नहीं की।
2: श्रोता, विष्णु प्रभाकर जी का अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी साहित्य सृजन का कारण बना। कभी कभी छोटी सी घटना मन पर इतना प्रभाव डालती है कि व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है। विष्णु प्रभाकर जी के बाल मन को उस समय काफी चोट पहुंची जब उनके चाचा ने उनके छोटे भाई को गोद ले लिया और उनका भेदभावपूर्ण व्यवहार विष्णु प्रभाकर जी को आहत करने लगा। वो अपने को काफी छोटा महसूस करने लगे। वो कहते हैं कि आज भी ये मनोविज्ञान मेरे अंतर्मन के किसी कोने में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया है। मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ। जैसे कछुआ अपने अंग समेटकर खोल में घुसा रहता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझे लेखक बनाने में इस घटना का बहुत बड़ा हाथ है।
3: 11 वर्ष की आयु में मामा के पास हिसार जाने में जब माँ का साथ छूट गया तो विष्णु प्रभाकर माँ के अभाव को हर समय महसूस करने लगे और कभी कभी भावुकता में काफी विचलित होने लगे। वे अंतर्मुखी होते गए और उन्हें मनुष्य की छाया से भी डर लगने लगा। यह विषमता और भावुकता धीरे धीरे उनके लेखकीय व्यक्तित्व का निर्माण करने लगी।
2: विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी से अपनी रचना का आरंभ किया था। प्रकाशित कहानियों में वो सबसे पहली सुरक्षित कहानी स्नेह को मानते हैं। ये कहानी लाहौर से निकलने वाली मासिक पत्रिका अलंकार में छपी थी, जिसके संपादक श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे। 1936 में उन्होंने संघर्ष के बाद कहानी लिखी, जो बाद में हंस में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं, मूल्यों को बचाने की कोशिश, मानवता की प्रतिष्ठापना, सामाजिक और शासकीय विडंबनाओं आदि का भी चित्रण है।
3: निशिकांत उनका पहला उपन्यास है, जिसमें 1920 से 1936 तक के सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों का चित्रण है। इसमें निशिकांत के सामाजिक संकीर्णताओं से बाहर निकलने का संघर्ष है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर जो कुछ मैंने देखा, मानव चरित्र की जिन नीचाइयों और गिरावटों को मैंने अनुभव किया, वे कालांतर में मेरे साहित्य की प्रेरणा शक्तियां बनी। इसलिए मैं उत्कृष्ट मानवता की खोज में व्यग्र और व्यस्त हो उठा। मेरे पहले उपन्यास निशिकांत में इनकी कुछ झलक देखी जा सकती है। इस उपन्यास की कमला धर्म और समाज की संकीर्णता से अकेले संघर्ष करती है।
2: उपन्यास लेखन की ओर विष्णु प्रभाकर जी क्यों प्रवृत्त हुए, इसके संबंध में उनकी मान्यता है कि कहानी और नाटक की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उपन्यास में अभिव्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। इसका कैनवास काफी विस्तृत है और ये अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। वो कहते हैं कि अपने को मुक्त करने का आनंद जितना उपन्यास के माध्यम से संभव है, उतना कहानी और नाटक के माध्यम से नहीं।
3: तट के बंधन, इसमें भारत और पाकिस्तान में फंसी हुई नारी के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मार्मिक चित्रण है। नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण करते हुए वे नारी को स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। स्वप्नमयी उपन्यास में भी नारी समस्याओं की अभिव्यक्ति है। घर बाहर के दायित्वों का निर्वाह करती हुई एक माँ की कठिनाइयों का इसमें मार्मिक चित्रण है।
2: दर्पण का व्यक्ति उपन्यास सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। समाज में नारी की स्थिति, विधवा विवाह, तलाक आदि की समस्याओं और सामाजिक विडंबनाओं का इसमें बखूबी चित्रण किया गया है। कोई तो उपन्यास में भी मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं और विसंगतियों का ही तो चित्रण है।
3: अर्धनारीश्वर उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विष्णु प्रभाकर इसे कथ्य और मर्म की दृष्टि से कोई तो उपन्यास का विस्तार मानते हैं। उनके सभी उपन्यासों में नारी मुक्ति की बेचैनी और इसके लिए संघर्ष है। फिर भी वे नारी के जीवन को पश्चिमी दृष्टि से नहीं देखते। नारी में संघर्ष करने की शक्ति है और विजयिनी बनने की आकांक्षा भी है, जो उनके उपन्यास में भी आप देख सकते हैं।
2: श्रोताओं, अपने यात्रा साहित्य के बारे में विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि लगभग डेढ़ वर्ष 1955 से लेकर 1957 तक आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहा। इस काल में जैसे कोई नियम नहीं रह गया था। सुबह 11 बजे से रात के 10-11 बजे तक मैं वहीं रहता था। यात्रा का एकमात्र ऐसा शौक बचा है जिसके लिए मैं बड़ा संकट उठाने के लिए भी तैयार रहता हूँ। हिमालय के अनेक तीर्थ स्थानों में घूम आया हूँ, दुर्गम मार्गों पर भी चला हूँ। वर्ष में कम से कम एक महीना मैं इसके लिए निश्चित करता हूँ। ज्योतिपुंज हिमालय, हंसते निर्झर दहकती भट्टी उनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं।
3: ज्योतिपुंज हिमालय में विष्णु प्रभाकर की 3 यात्राओं का वर्णन है। विभिन्न स्थानों के 16 छायाचित्र भी हैं। इसमें लेखक के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक और भौगोलिक विचार व्यक्त हुए हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, इसमें छोटी छोटी यात्राओं का वर्णन है। इसके अंतर्गत 21 लेख संकलित हैं।
2: उनकी कालजयी कृति आवारा मसीहा बंगाली उपन्यासकार शरदचंद चटर्जी की जीवनी है। ये सिर्फ जीवनी के तौर पर ही नहीं बल्कि शोधपरकता, प्रामाणिकता और प्रवाह के कारण उपन्यास का आनंद देती है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करती विष्णु प्रभाकर जी की कृति आवारा मसीहा जीवनी साहित्य में मील का पत्थर है।
3: इसमें इन्होंने शरद चंद्र के जीवन को 3 पर्वों में बांटा है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशाहारा में शरद चंद्र के बचपन का चित्रण है, दिशा की खोज में उनके लेखक का विकास है और दिशांत में उनके लेखक के स्वर्ण युग का चित्रण है।
2: श्रोताओं, नाथूराम शर्मा प्रेम के कहने से वो शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए थे, जिसके लिए वो शरद को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब ये जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। निष्ठावान प्रतिक्रिया की शिद्दत इतनी विनम्र है कि जिसकी ऊंचाई के सामने सोच भी बौनी पड़ जाती है और वो अखिल भारतीय रचनाकार के रूप में समृद्ध हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इस कृति के संदर्भ में वो कहते हैं, शरद सरोवर जिया था मैं उस आवारा मसीहा के साथ जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। इसके आगे विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि रविंद्रनाथ ना होते तो शरद भी ना होते, और शरद हैं इसीलिए आवारा मसीहा है। विष्णु प्रभाकर जी की ये कालजयी कृति चमत्कारमयी भाषा शैली और शरद चंद की अमरता के प्रति सहज ही आकर्षण पैदा करती है। इस काम में उनकी जीवनी की विशेषताओं का व्याख्यान किया गया है और कई मौलिक तथ्यों के साथ शरद जी के जीवन में अनेक घटनाओं को रोचक अंशों के साथ लिखा है, जिसमें से उनके जीवन के अनेक पहलू पारदर्शी रूप में सामने आ रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस सत्य से जब परिचित होते हैं कि बंगला के अमर कथा शिल्पी शरद चंद को आवारा मसीहा कहने वाले विष्णु प्रभाकर जी का व्यक्तित्व शरद से बिल्कुल विपरीत था। शरद का व्यक्तित्व बोहेमियन की तरह था, जबकि विष्णु प्रभाकर जी गांधीवाद से ओतप्रोत थे।
3: विष्णु प्रभाकर की परिस्थितियां हमेशा उनके लिए विषम और प्रतिकूल रहीं। वे जीवन में जो करना चाहते थे उसे नहीं कर पाए, जिसका दुख उनके साथ हमेशा बना रहा और वे अपनी रचनाओं के पात्रों के साथ संवेदनशील और करुण बने रहे। विष्णु प्रभाकर ने भ्रमण भी किया, जिससे उनका विजन व्यापक हुआ। उनके अन्वेषण व्यक्तित्व, उनकी सूक्ष्म दृष्टि, किसी विचारधारा से न बंधने की प्रतिबद्धता और उनके मानवतावादी दृष्टिकोण ने उनके साहित्य को अपने समकालीन रचनाओं से कुछ अलग ही भावभूमि से संबद्ध किया। विष्णु प्रभाकर ने भारतीय समाज, राजनीति, परंपरा, संस्कृति, इतिहास, पुराण आदि के साथ अपने युग के बदलाव का भी सूक्ष्म अवलोकन किया, जिसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न विधाओं की उनकी रचनाओं में आप देखेंगे।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। वो मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर देखते थे। उनकी रचनाओं में पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता मिली है। वो मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। इसलिए उनकी रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
3: उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे कठिन शब्दों और अलंकारों की अपेक्षा सरल अभिव्यक्ति में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि उनकी रचनाएं सामान्य पाठकों से लेकर विद्वानों तक सभी को आकर्षित करती हैं। वे शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करते थे। प्रत्येक वाक्य में भावों की गहराई दिखाई देती थी। उनकी लेखनी पाठकों के हृदय को सीधे स्पर्श करती थी।
2: श्रोताओं, विष्णु प्रभाकर जी पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इसके चलते स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया था, जो आजादी के लिए सतत संघर्षरत रही। पर वो किसी के लेबल के मोहताज नहीं थे। खुद को हर वादे से मुक्त रखते हुए उन्होंने लिखा है कि कुछ ने प्रगतिवादी कहा तो कुछ ने सामंतवादी और कुछ ने गांधीवादी। मैं अगर वादी हूँ तो विष्णुवादी।
3: वे लेने से ज्यादा कुछ समाज को देने के पक्षधर थे। वे एक ऐसे रचनाकार थे जो आंदोलन से कभी नहीं जुड़े, न किसी आलोचकों से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से वही किया व लिखा जो उनके भीतर प्रभावित होता रहा। मेरे अंधेरे बंद मकान के खुले आंगन में कैक्टस नहीं उगते, मनी प्लांट खूब फैलता है। लोग कहते हैं पौधों में चेतना नहीं होती।
2: श्रोताओं, देशभक्ति, राष्ट्रीयता और समाज के उत्थान के लिए निरंतर समर्पित उनकी लेखनी ने हिंदी को कई कालजयी कृतियां दी। उनकी लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज 8 दशकों तक निरंतर सक्रिय रहा। ये भी संयोग ही है कि उनके लेखन की शुरुआत कविता से हुई और उनकी अंतिम रचना जो उन्होंने अपने देहावसान से मात्र 25 दिन पूर्व बिस्तर पर लेटे लेटे अर्ध चैतन्य अवस्था में बोली, वो भी कविता के रूप में ही थी। संग्रह चलता चला जाऊंगा से उनकी एक चुनिंदा कविता आग का अर्थ हमारे सामने एक नए अर्थ के साथ पेश है।
3: मेरे इस और आग है, मेरे उस और आग है, मेरे भीतर आग है, मेरे बाहर आग है। इस आग का अर्थ जानते हो? क्या तपन, क्या दहन, क्या ज्योति, क्या जलन, क्या जठराग्नि, कामाग्नि? नहीं नहीं, ये अर्थ हैं कोश के, कोशकारों के जीवन की पाठशाला के नहीं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके रचनाकर्म की कुछ प्रेरक खासियत है। वे मानते हैं कि कुछ भी अंतिम या स्थायी नहीं है। उनकी भावाभिव्यक्ति से यह जाहिर है।
2: मैंने बीते हुए युग की कथा लिखी थी, वो सच नहीं हुई। तुम आने वाले क्षण की कहानी लिख रहे हो, वो भी सच नहीं होगी। काल सबको ग्रस लेगा, शेष रह जाएगा दंप, मेरा, तुम्हारा, उसका, तुम जानते हो किसका? बोलो नहीं, क्योंकि जो भी तुम बोलोगे झूठ साबित होगा।
3: भारतीय भाषाओं के हिंदी के साथ समन्वय की दिशा में विष्णु प्रभाकर ने महत्वपूर्ण कार्य किए। अनुवादों के माध्यम से हिंदी को व्यापक रूप देने में अथक मेहनत की। भारत के गैर हिंदी भाषी प्रांतों का उन्होंने भ्रमण किया और उनकी साहित्यिक गहराई को भी परखने का प्रयास किया। गैर हिंदी साहित्य को हिंदी के करीब लाने के लिए कई प्रांतों की भाषाएं सीखी।
2: गैर हिंदी भाषाइयों की परंपरा और उनसे जुड़े व्यक्तित्व को अनुवाद में पूरा स्थान देकर मौलिकता के सूत्र में पिरोने में सफलता प्राप्त की। इससे भाषाई टकराव की संभावना क्षीण हुई, आपसी सद्भाव और हिंदी के विकास के मार्ग खुले। देखा जाए तो अब विकास की विचारधारा में भारत की विभिन्न भाषाओं में रचे जा रहे साहित्य का हिंदी में अनुवाद कर साहित्य भंडार को और अधिक समृद्ध किया जा सकता है।
3: कितनी अजीब बात है कि जीवन में लेखक अपने से भिन्न व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग को पूर्णता से व्यक्त करने की चेष्टा करता है, जिसमें लेखक को अपने नायक के प्रति सहानुभूति श्रद्धा होती है पर अंधविश्वास नहीं। जीवनी में लेखक स्वेच्छा से जीवन वृतांत प्रस्तुत नहीं कर सकता और जब तक इसमें लेखक चरित्र के साथ समरस नहीं होता उसे श्रद्धेय नहीं मानता। जीवनी लिखने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होता है, वह इस भावना से भी लिखी जाती है कि उस श्रद्धेय पुरुष की जीवनी उसे अमरत्व प्रदान करे। जीवनी का सत्य उपलब्ध सामग्री पर निर्भर है, जहां पर बुद्धि साम्राज्ञी है। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। एक साहित्यकार का जीवन उसका साहित्य ही होता है। उनके जीवन के अनछुए और अनकहे पहलुओं को उनकी रचनाओं में खुशबू की तरह पाना होता है। जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी रहती है, वैसे ही कवि अपनी कविता की पंक्तियों में व्याप्त होता है।
2: अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वो समय 96 वर्ष के थे। हिंदी साहित्य के इस अमूल्य मोती के चले जाने से साहित्य के एक अद्भुत सूरज का अंत हो गया। हालांकि आज विष्णु प्रभाकर जी जीवित नहीं हैं, पर उनका साहित्य अमरता का वरदान लिए हुए हमारे सामने फैला हुआ है। सशक्त शब्दावली के प्रतिनिधित्व करके शब्द दर शब्द को अपनी लेखनी से सजीव करने वाले शब्दों के मसीहा को शत शत नमन।
3: पद्म भूषण विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के ऐसे अमर साहित्यकार हैं जिन्होंने शब्दों को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त उपकरण बनाया। उनकी रचनाओं में जीवन की सच्चाई, मानवता की करुणा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अद्भुत संगम मिलता है।
2: शब्दों की शिल्पकार कार्यक्रम का ये विशेष अंक समर्पित था हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी को। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, लेखक विनीता जैन और आज का शब्दों के शिल्पकार आपके लिए प्रस्तुत किया मनीषा
3: और वेणुबालन।
2: अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: जो लोग कालजयी महापुरुषों के जीवन काल में जन्म लेते हैं और उनके घनिष्ठ संपर्क में आते हैं, वे उनकी कृपा और स्नेह पाकर धन्य हो जाते हैं। भगिनी क्रिस्टीन भी एक ऐसी ही अमेरिकन महिला थी। सन 1930 में उनके देह त्याग के बाद स्वामी जी विषयक उनकी अविस्मरणीय स्मृतियां पहली बार सन 1931 में प्रकाशित हुई। उनके ग्रंथ का नाम रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद है।
1: भगिनी क्रिस्टीन द्वारा लिखे गए स्वामी जी के ये संस्मरण स्वामी जी के करीबी भक्तों के द्वारा उनके बारे में लिखित सभी रचनाओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। इनमें विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों का भी समावेश हो गया है। पहले उनसे परिचित हो लें।
0: भगिनी क्रिस्टीन के नाम से सुपरिचित स्वामी विवेकानंद की शिष्या कुमारी क्रिस्टीन ग्रीनस्टाइलेट का जन्म जर्मनी के नूरेबर्ग नगर में 17 अगस्त 1866 ईस्वी के दिन हुआ था। पिता फ्रेडरिक ग्रीनस्टाइलेट की 6 कन्याओं में क्रिस्टीन सबसे बड़ी थी। 3 वर्ष की आयु में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आकर डेट्रॉयड में निवास करने लगी। महान विद्वान तथा स्वाधीन विचारों वाले जर्मन पिता के घर में जन्म लेने के कारण उनका बचपन बड़े सुख में बीता। परंतु 17 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें ही अपनी माता तथा 5 छोटी बहनों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। अर्थाभाव के कारण उन्होंने डिट्रॉयट के पब्लिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार की। तब से 10 वर्षों तक उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।
1: 14 फरवरी 1894 का दिवस उनके जीवन में स्मरणीय बन गया, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के साथ यूनिटेरियन चर्च में जाकर स्वामी विवेकानंद का पहली बार दर्शन किया तथा उनका व्याख्यान सुना। स्वामी जी उस बार लगभग 1.5 महीने डिट्रॉयट में रहे। इस दौरान क्रिस्टीन ने उस नगर में स्वामी जी द्वारा दिए गए सारे व्याख्यान सुने, जिससे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया।
0: इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 6 जुलाई 1895 को उन्होंने श्रीमती फंकी के साथ सहस्त्र दीपोद्यान की यात्रा की और पुनः स्वामी जी के सानिध्य में जा पहुंची। वहां 22 जुलाई को स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा के साथ भगिनी क्रिस्टीन नाम दिया। उन दिनों स्वामी जी आध्यात्मिक उपदेशों के अतिरिक्त बीच बीच में अपने भारत संबंधी कार्य और विशेषकर भारतीय नारियों की उन्नति के विषय में भी चर्चा किया करते थे।
1: सन 1889 ईस्वी में भगिनी निवेदिता के घर में उन्हें पुनः एक सप्ताह स्वामी जी का सानिध्य मिला। अपनी माता की मृत्यु और बहनों के अपने अपने पांव पर खड़े हो जाने के बाद उन्होंने भारत में कार्य करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया।
0: 7 अप्रैल 1902 को वे पहली बार भारत आईं। कुछ दिन स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही अत्यधिक गर्मी के कारण स्वामी जी ने उन्हें मायावती यानी हिमालय भेज दिया। इसके कुछ काल बाद ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली। 1903 से उन्होंने भगिनी निवेदिता के साथ मिलकर भारतीय नारियों की शिक्षा के कार्य में आत्मनियोग किया और उनके बालिका विद्यालय में सहयोग करने लगी।
1: 12 वर्ष तक अत्याधिक परिश्रम के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और इस कारण वे अमेरिका लौट गईं। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उन्होंने अपना भारतवर्ष लौटना स्थगित कर दिया। वे वहीं रहकर भारतीय संस्कृति तथा वेदांत पर व्याख्यान देने लगी। 10 वर्ष बाद 1924 ईस्वी में फिर भारत लौटकर विद्यालय के कार्य में सहायता करने लगी।
0: 1926-27 की गर्मियों का मौसम उन्होंने अल्मोड़ा में बिताया। उसी समय उन्होंने अपनी स्वामी जी विषयक स्मृति लिपिबद्ध करनी आरंभ की। खराब स्वास्थ्य के कारण 1927 में वे एक बार पुनः अमेरिका गईं और 27 मार्च 1930 को न्यूयॉर्क में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वे अत्यंत विनम्र तथा सात्विक स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित लगभग 700 उपलब्ध पत्रों में से 71 पत्र उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। इसी से स्वामी जी के साथ उनकी घनिष्ठता का परिचय मिल जाता है।
1: आइए अब हम भगिनी क्रिस्टिन से उनके संस्मरण सुने।
2: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ एक पर्यटक होता है, जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मर्त लोक का ना होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थ यात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहाँ ठहरता है। वो अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदार बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है। परंतु इन सब के बीच वो ये कभी नहीं भूलता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अपने दायित्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती। उसे सदैव स्मरण रहता है कि वो महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उसकी वाणी सुनी है, उसके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उसी के चरणों में झुककर मैंने अपनी आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
1: पश्चिम में पली बढ़ी क्रिस्टिन स्वामी जी से बेहद प्रभावित हुई थी।
2: परंतु स्वामी विवेकानंद की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वे एक अलग ही श्रेणी के थे। वे एक ऐसा ज्योतिर्मय विभूति थे जो एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उच्चतर मंडल से इस मर्त लोक में अवतीर्ण हुए थे। काश हमें यह अनुमान होता कि वे इस पृथ्वी पर अधिक काल तक नहीं ठहरेंगे।
1: क्रिस्टिन ने स्वामी जी से पहली मुलाकात के बारे में लिखा है,
2: 1894 ईस्वी की फरवरी की एक सर्द रात को, जब लगभग अनिच्छा पूर्वक ही मैं डिट्रॉइट के यूनिटेरियन चर्च में एक व्याख्यान सुनने के लिए निकली, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की धारा को पूरी तरह बदल कर रख देगा और जिसका इतना गहरा प्रभाव होगा। मैं बड़ी अनिच्छा पूर्वक और केवल अपने मित्र श्रीमती मैरी सी फंकी के अनुरोध के कारण ही भारत से आए एक सन्यासी विवेकानंद का वो विशेष व्याख्यान सुनने गई। फंकी अपने सुंदर आशावादी स्वभाव के कारण अब भी अपनी इस भ्रांति को पाले हुए थी और विश्वास करती थी कि किसी दिन उसे कुछ मिल जाएगा। हम भारत से आगत व्यक्ति को सुनने गए। 5 मिनट सुनने के बाद ही हमारी समझ में आ गया कि हमें वो स्पर्श मणि मिल गई है जिसकी हम दीर्घ काल से तलाश कर रही थी। एक साथ ही हम दोनों के मुख से योद्गार निकल पड़ा, यदि हम इससे वंचित रह जाती तो।
0: जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बाहरी रूप के विषय में काफी कुछ सुन रखा है, उन्हें यह जानकर विचित्र लगेगा कि जो पहली चीज लोगों पर अमिट छाप छोड़ती थी वो उनका बाहरी रूप नहीं था। पश्चिम देशों में बहुधा कृशकाय तपस्वी जैसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाता है, पर मंच पर कदम रखने वाला वो सशक्त ओजस्वी व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी ना था। एक दुबला पतला संत वहां सबकी समझ में आता है, परंतु एक शक्तिशाली संत के बारे में भला किसने सुना था। इस रहस्यमय व्यक्ति से निस्तृत होने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष मानो सभी सहमे हुए थे। उनकी शक्ति अभिभूत कर देने वाली थी, सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने वाली थी। उन प्रारंभिक अविस्मरणीय क्षणों में इसका बोध हो गया। बाद में हमने इस शक्ति को सक्रिय रूप में भी देखा।
1: युवा दिव्य कांति भारतीय संत ने अमेरिका में जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में शब्दों का ताना बाना, स्वरों की संगीतमयता ने सबको मोह लिया।
2: सुदूर भारत से आए ये धर्म प्रचारक मुश्किल से 30 वर्ष के रहे होंगे। कालातीत यौवन के प्रतीक होकर भी मानो वे प्राचीन काल के एक ज्ञान रथ थे। जीवन में पहली बार हमें भारत का युगों पुराना संदेश, आत्मतत्व की बातें सुनने को मिली। वे मानो एक सुंदर कश्मीरी शॉल का निर्माण करते हुए चमकीले तथा रंग बिरंगे ताने बाने बुनते रहे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। बीच में कहीं वे उपहास का धागा डाल देते तो कहीं त्रासदी का, और उसमें बहुत से धागे गहन चिंतन, आकांक्षाओं, उद्दात आदर्शवाद तथा परम ज्ञान के भी हुआ करते। पर इन सभी तानों के बीच भारत की परम पवित्र शिक्षा मानव का दिव्यत्व और उसमें अंतर्निहित शाश्वत पूर्णता का बाना विद्यमान रहता।
0: स्वामी जी ने लोगों को आत्म सम्मान से जीने का पाठ पढ़ाया। उनके उदाहरण बड़े सटीक होते थे।

0: बोध हो गया और वो भी जोरों से गर्जन करने लगा।
1: भारत की शाश्वत वाणी को उन्होंने नई दुनिया के समक्ष रखा। ऐसे उद्गारों ने उनके लिए एक नया द्वार खोल दिया।
0: उन्हें सुनने वाले हम में से भला कौन उन्हें कभी भूल सकेगा। जब हमने भारत का ये प्राचीन संदेश सुना तो हमारे मनों में आत्मा की कैसी सुप्त स्मृतियां जाग उठी थी। हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासियों तुम लोग भी सुनो। मैंने उन अनादि पुरुष को जान लिया है जिन्हें जानकर ही मृत्यु के चक्र से छूटना संभव है।
2: स्वामी जी जब बोलते थे तो उनकी सम्मोहिनी वाचन शैली मानो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी।
0: उस प्रथम अविस्मरणीय एक घंटे के दौरान हमें कुछ कुछ ऐसा ही बोध हुआ और हमारे मन उनकी अपनी बोधमय चेतना में उन्नत हो गए। बाद में कालांतर में और कभी कभी कष्टपूर्वक काफी प्रयास तथा साधना के बाद हम में से कुछ को पता चला कि हमारे मन प्राण ही रूपांतरित हो चुके हैं। अपार होती है गुरु की महिमा।
1: उनके भाषणों में अपार भीड़ होती। लोग रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे।
0: यूनिटेरियन चर्च में उनका पहला व्याख्यान सुनने वाले उनका दूसरा और तीसरा व्याख्यान भी सुनने आए और वे लोग अपने साथ दूसरों को भी कहकर लाए, चलो उस अद्भुत व्यक्ति की बातें सुनो। वे पहले सुने हुए किसी भी व्यक्ति के समान नहीं है और वे तब तक आते रहे जब तक कि बैठने की जगह ही नहीं बची। वे लोग कमरे में भर गए, गलियारों में खड़े रहे, खिड़कियों से झांकते रहे। स्वामी जी ने बारंबार अपना संदेश दिया, कभी एक रूप में तो कभी अन्य रूप में। कभी उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कहानियों के माध्यम से समझाया तो कभी पुराणों तथा दंत कथाओं के माध्यम से, उपनिषदों से, तो वे निरंतर उद्धरण देते रहते थे।
1: उनकी आवाज में जादुई शक्ति थी। भारत के बारे में वे पूरे आवेग के साथ बोलते थे।
0: पहले वे मूल पाठ की आवृत्ति करते और उसके बाद मुक्त काव्य में उसका अनुवाद करते। उनके कथित शब्दों का विलक्षण प्रभाव होता और श्लोकावृत्ति तो और भी अधिक प्रभाव उत्पादक होती। अतल गहराइयां आलोकित होती और जब उसकी लय कानों में पड़ती तो श्रोतागण सांस रोके मुक्त बैठे रह जाते। मुझे लगता है कि जब हमने पहली बार उनकी उस अद्भुत आवाज से भारतवर्ष शब्द सुना तभी से हमारे हृदय में भारत के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे पांच अक्षरों के इस छोटे से शब्द में इतना कुछ समा सकता है। उसमें प्रेम था, आवेग था, गर्व था, आकुलता थी, श्रद्धा थी, विषाद था, वीरता थी, ग्रह विरह था तथा सर्वोपरि था गहन प्रेम। कोई भी ग्रंथ किसी में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। उनके शब्दों में श्रोताओं के मन में प्रेम संचरित करने की जादुई शक्ति थी।
2: कुछ व्यवसायी स्वामी जी को भाषण देने के लिए अनुबंधित करते थे, वे उनका शोषण करने लगे।
0: स्वामी जी छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो उठे। धर्म महासभा के बाद स्वामी जी ने पॉन्स लेक्चर ब्यूरो नामक कंपनी की व्यवस्था में पूरे अमेरिका का दौरा करते हुए व्याख्यान देने का अनुबंध किया। प्रत्येक नए स्थान की समिति को चयन हेतु व्याख्यान के कई विषय दे दिए जाते, यथा मनुष्य की दिव्यता, भारत की रीति रिवाज, भारतीय नारियां, हमारी विरासत आदि। जब कभी ऐसा नगर होता जो बौद्धिक गतिविधियों से कटा हुआ है या खनन उद्योग से जुड़ा हुआ हो तो बिना किसी अपवाद के वहां सबसे दुर्बोध्य विषय चुने जाते। उन्होंने ऐसे श्रोताओं के समक्ष बोलने की कठिनाई बताई जिनके चेहरे पर समझ की कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती थी। कुछ सप्ताहों तक इस प्रकार हर शाम व्याख्यान देने और हर रात यात्रा करने के बाद ये कष्टकर बंधन उनके लिए असह्य हो उठा। डिट्रॉयट में स्वामी जी के प्रति स्नेह रखने वाले लोगों से स्वामी जी ने अनुरोध किया कि मुझे इनसे छुड़ाओ। वे लोग प्रभावशाली थे अतः उन्हें उस अनुबंध से छुटकारा दिलाने में सफल हुए। तथापि इससे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन्हें अनुचित लगी।
1: स्वामी जी का एकमात्र उद्देश्य था धन एकत्रित कर भारत का कल्याण करना। इस कार्य को वे पूजा समझकर करते थे।
0: उन्होंने आशा की थी कि इस प्रकार अर्जित धन से वे भारत में अपना कार्य आरंभ कर सकेंगे, परंतु उनके लिए इस सार्वजनिक कार्य में उतरने का यही एकमात्र कारण न था जो भाव उन्हें निरंतर आगे की ओर प्रेरित कर रहा था और जो कभी उनके मानस पटल से अदृश्य नहीं हुआ था। वो था अपने गुरुदेव द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्यभार। उन्हें एक कार्य संपन्न करना था, एक संदेश था जो लोगों तक पहुंचाना था, एक पवित्र संदेश।
2: स्वामी जी आगे और कार्य करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें अमेरिका में कुछ अनुयायियों की जरूरत थी। वे उन्हें तैयार करने में जुटे थे।
0: डिट्रॉयट पहुंचते पहुंचते उनकी समझ में आ गया कि इस प्रकार दौरे करते हुए व्याख्यान देना वो पद्धति नहीं है और जो कार्य उन्हें उनके उद्देश्य की ओर अग्रसर कराने वाला नहीं था उसके लिए वे एक क्षण भी बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। डिट्रॉयट में उन्होंने 6 सप्ताह बिताए। उनका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर था और समय समय पर वे व्याख्यान देते। हमने उनके व्याख्यान सुनने का कोई भी अवसर नहीं खोया। हमने बारंबार आत्मा का वो अद्भुत सुसमाचार सुना। हमने बारंबार और विभिन्न दृष्टिकोणों से भारत की कथाएं सुनी। हम समझ गए थे कि हमें अपने आचार्य मिल गए हैं। गुरु शब्द से उस समय हम परिचित नहीं थी और ना ही व्यक्तिगत रूप से हमारी उनसे कभी भेंट हुई थी, परंतु उससे क्या होता है। हमने जो कुछ सीखा था उसी को आत्मसात करने में वर्षों लगेंगे और हमें विश्वास था तब आचार्य देव हमें पुनः किसी प्रकार कहीं ना कहीं आगे की सीख देंगे।
1: सहस्त्र द्वीपों ध्यान में रहकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। कुछ शिष्य मिल गए।
0: हमने जैसी आशा की थी उसके पूर्व ही ऐसा हो गया, क्योंकि इसके 1 साल से थोड़े ही अधिक काल बाद हमें सहस्त्र द्वीपों उद्यान के एक ही मकान में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद के अद्भुत सप्ताहों के बारे में लिख पाना बड़ा कठिन है। उन दिनों हम चेतना की जिस अवस्था में निवास करती थी, यदि कोई उसी अवस्था में अपने मन को ले जा सके तभी वो हमारी उस अनुभूति को समझने की आशा कर सकता है। हम आनंद से परिपूर्ण थे। उस समय हम नहीं जानती थी कि हम उनके आलोक की परिधि में निवास कर रही हैं। प्रेरणा के पंखों के सहारे वे हमें उन ऊंचाइयों पर ले गए थे जहां उनका सहज आवास था। बाद में तो उन्हें संदेश को प्रचारित करने तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने का पथ मिल गया था, क्योंकि आचार्य देव को अपने शिष्य मिल गए थे।
2: वे बहुत अच्छे वक्ता थे और चाहते थे कि उनके शिष्य भी उनकी तरह भाषण देने में सक्षम हो। वे उन्हें सिखाते भी थे।
0: हम लोगों को मुक्ति का पथ दिखा देना, हमें मुक्त कर देना, यही उनकी पहली प्रबल आकांक्षा थी। उन्होंने बड़े ही मार्मिक भाव के साथ कहा, आहा, यदि मैं तुम लोगों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर पाता, उनकी दूसरी आकांक्षा थी जो इतनी प्रत्यक्ष ना होकर भी फल्गुन धारा के समान भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रहती थी। इस टोली को अपने अमेरिका के कार्य हेतु गढ़ लेना, वे कहते, यह संदेश भारत में भारतवासियों तथा अमेरिका में अमरीकियों द्वारा प्रचारित होना चाहिए। अपने उस छोटे से बरामदे में जहाँ से पेड़ों की चोटियाँ तथा सुंदर सेंट लॉरेंस नदी दिख पड़ती थी, वे प्रायः हमसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया करते थे। उन्होंने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इससे हम स्वयं ही चिंतन करना सीख जाएंगे। शायद वे जानते थे कि विश्व के श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक माने जाने वाले स्वयं उन्हीं की उपस्थिति में यदि हम अपनी मंच भीति को जीत सकें तो फिर दुनिया का कोई भी मंच हमें भयभीत नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी कठिन परीक्षा हुआ करती थी। वे एक एक कर सबसे प्रयास करने को कहते। बचने का कोई उपाय नहीं था। शायद इसी कारण कोई कोई तो इस घनिष्ठ शांति गोष्ठी में उपस्थित ही नहीं होते थे।
2: स्वामी जी के शिष्यों के मन में हजारों प्रश्न आते थे और स्वामी जी भी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करते, उनकी झिझक मिटाते थे।
0: ऊपर के बरामदे में होने वाले इस निशा सम्मेलन की कोई बनी बनाई व्यवस्था ना थी। वे एक किनारे द्वार के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठते। कभी कभी वे गहरे ध्यान में डूब जाते। उस समय हम लोग भी ध्यान करते, अथवा निशब्द बैठे रहते। कभी कभी ये भाव घंटों चलता और धीरे धीरे हम सभी उठकर चले जाते, क्योंकि हमें पता था कि ऐसी अवस्था के बाद उनमें बोलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, या फिर थोड़े समय बाद ही उनका ध्यान भंग हो जाता और उसके बाद वे हमें प्रश्न पूछने को उत्साहित करते तथा बहुधा हम ही में से किसी एक को उसका उत्तर देने को कहते। हमारा उत्तर चाहे कितना भी गलत हो, वे हमें उसी में भटकने देते जब तक वे समस्या सत्य के निकट न पहुंच जाते, और तब कुछ ही शब्दों में वो समस्या का समाधान कर देते। यही उनके शिक्षा दान की निश्चित प्रणाली, और इस प्रकार उन्होंने हमें बड़े धैर्य और सौम्यता के साथ प्रशिक्षित किया। यह एक आशीर्वाद के समान था। बाद में भारत लौटने के बाद उन्होंने आशा की थी कि वे हिमालय में कोई स्थान लेकर अपने प्राच्य तथा पाश्चात्य शिष्यों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे।
1: सहस्र द्वीपोद्यान में उन्हें कुछ अनुयायी मिले जिनके अवदान को हम भुला नहीं सकते।
0: उस ग्रीष्मकाल में सहस्र द्वीपोद्यान में उनके आकर्षण से खींचे चले आए लोगों का वो दल बड़ा विचित्र था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सर्वप्रथम वहां पहुंचने पर हम जिस दुकानदार से रास्ता पूछने गई थी उसने कहा था, हाँ कुछ विचित्र से लोग उस पहाड़ी पर रहते हैं और उनमें एक विदेशी से दिखने वाले सज्जन भी हैं। उनमें कुमारी एस ई वॉल्डो, कुमारी रूथ एलिस और डॉक्टर वाइट थे। दीर्घ काल तक व्याख्यानों को सुनने के कारण कुमारी वॉल्डो में पूरे व्याख्यान को कुछ ही वाक्यों में संक्षेपित करने की क्षमता आ गई थी। देववाणी ग्रंथ उसी का अवदान है। उसी वर्ष इंग्लैंड जाते समय स्वामी जी ने कुछ कक्षाएं चलाने का उत्तरदायित्व कुमारी वॉल्डो को ही सौंपा था, और लौट आने के बाद भी उनकी सहायता उनके लिए बहुमूल्य हो गई थी। स्वामी जी ने पतंजलि योग सूत्रों पर अपनी व्याख्या को बोलकर ही उनसे लिखवाया था। फिर उन्होंने ही कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ग्रंथों की प्रकाशन में भी सहायता की थी। उसकी सुलझी हुई प्रशिक्षण बुद्धि तथा अटल निष्ठा ने उन्हें स्वामी जी का एक आदर्श सहकारी बना दिया था। वे जानते थे कि किस प्रकार शिक्षार्थी के मन को उद्दीप्त करके स्वाधीन चिंतन में लगाया जाए। यदि कभी हम अपना कोई विचार या दृष्टिगोचर लेकर उनके पास अनुमोदन के लिए जाकर कहते, मुझे ये इस प्रकार और ऐसा प्रतीत होता है, तो वे एक ऐसे सुर में हाँ कहते कि हमें उस विषय पर और भी सोचने का उत्साह मिलता। कुछ और भी सुलझे हुए विचार लेकर जब हम दोबारा उनके पास जाते तो पुनः वही हाँ हमें और भी अधिक सोचने को प्रेरित करता। संभवतः तीसरी बार जब हमारी चिंतन की शक्ति उस पथ पर और अग्रसर होने में असमर्थ हो जाती, तब वे हमारी भूल की ओर इंगित कर देते, और वो भूल होती हमारी पाश्चात्य चिंतन प्रणाली के फलस्वरूप।
1: आपने भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण सुने। आगे हम उनसे स्वामी जी के बारे में कुछ और अनजानी बातें सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।